घुस गया। ट्रेन कुर्ला स्टेशन के पास पहुंची रही थी कि उसकी नजर एक बूढ़े आदमी पर पड़ी। लगभग 70 साल के बुजुर्ग, हाथ कांप रहे थे, सांस तेज चल रही थी, लोग उन्हें इग्नोर कर रहे थे। एक आदमी बोला, अरे अंकल थोड़ा साइड हो जाओ ना। दूसरा बोला, रोज ड्रामा करते हैं लोग। लेकिन अमन को कुछ अलग लगा, वो तुरंत उनके पास गया। अंकल आप ठीक हो ना? बुजुर्ग आदमी ने धीरे से बोला, पापा पानी। अमन ने बिना सोचे अपनी बोतल निकाल दी। बोतल में आधा ही पानी बचा था। खुद इंटरव्यू के लिए जा रहा था अमन, फिर भी उसने पूरा पानी अंकल को पिला दिया। थोड़ी देर बाद अंकल नॉर्मल होने लगे। अमन ने पूछा, हॉस्पिटल चलना है क्या? अंकल मुस्कुरा दिए, नहीं बेटा, शुगर लो हो गई थी ना, तभी स्टेशन आ गया। अमन उतरने लगा। अंकल ने उसका हाथ पकड़ा, बेटा तुम्हारा नाम? अमन। फोन नंबर? अमन मुस्कुरा दिया, अंकल उसकी जरूरत नहीं है। और वो भीड़ में खो गया। कट टू इंटरव्यू हॉल। रिसेप्शनिस्ट बोली, सॉरी सर, इंटरव्यू ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, आप 12 मिनट लेट हो। अमन ने बहुत रिक्वेस्ट किया, लेकिन रिसेप्शनिस्ट ने एंट्री नहीं दी। वो बाहर बेंच पर बैठ गया, आंखों में आंसू आ गए। उसने सोचा, काश मैं ट्रेन में नहीं रुकता। उसने घर फोन नहीं किया, सीधे मरीन ड्राइव चला गया, हताश मायूस होकर। समंदर के सामने बैठकर बस ये सोचता रहा, एक छोटी सी मदद और बदले में इंटरव्यू भी चला गया। उसे लगा, अच्छा इंसान बनना शायद प्रैक्टिकल दुनिया में लॉस की डील है। उस रात घर जाकर माँ ने पूछा, इंटरव्यू कैसा गया बेटा? अमन ने झूठ बोल दिया, अच्छा था माँ। पापा बोले, जॉब मिल गई। लेकिन अमन जानता था आज उसने एक मौका खो दिया है। 2 दिन बाद उसके फोन पर एक अननोन नंबर से कॉल आया। हेलो, क्या मैं अमन से बात कर रहा हूँ? जी, कल सुबह 11 बजे इस एड्रेस पर आ सकते हो? पर क्यों? सर ने बुलाया है। कौन सर? बस आ जाइए। फोन कट। अमन को लगा कोई फ्रॉड होगा, लेकिन एड्रेस देखकर वो हैरान रह गया। मुंबई की एक बहुत बड़ी कंपनी का हेड ऑफिस। अगली सुबह वो वहां पहुंच गया। रिसेप्शनिस्ट उसका नाम सुनते ही बोली, सर आपका ही वेट कर रहे थे। अमन कंफ्यूज हो गया। कॉन्फ्रेंस रूम का डोर खुला और सामने वही ट्रेन वाले बुजुर्ग अंकल बैठे थे, लेकिन इस बार सूट पहने हुए, साथ में कंपनी के डायरेक्टर्स। अमन शॉक हो गया। अंकल आप? अंकल मुस्कुराए, बेटा मैं इस कंपनी का फाउंडर हूं। अमन की सांसें रुक गई। अंकल बोले, उस दिन ट्रेन में किसी को नहीं पता था मैं कौन हूं, सबने मुझे इग्नोर किया, सिर्फ तुम रुक गए। मैं तुम्हें रिवॉर्ड देने के लिए नहीं बुलाया हूं यहां पर, मैं देखना चाहता था क्या तुम वैसे ही इंसान हो जैसे उस दिन थे। और यहीं से अमन की जिंदगी पर एक नया मोड़ आया। वो नया मोड़ क्या है तो सुनते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले दोस्तों एक बात ये जरूर समझिए कि आपकी की हुई छोटी सी मदद, छोटे से भी मदद, यानी किसी को पानी पिलाना हो या किसी बच्चे को बिस्किट्स देना हो या किसी भूखे को एक वड़ा पाव खिलाना हो, कोई भी छोटी से छोटी हेल्प, बहुत छोटी हेल्प कभी वेस्ट नहीं होती, कभी जाया नहीं जाती। व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, जिसे कहते हैं ना कर्मा हर जगह होता है। तो आपके कर्म जितने अच्छे होंगे वो आपको आपकी जिंदगी में अच्छाई की ओर ही लेके जाएंगे। तो हमेशा याद रखिए, अगर आपसे आप छोटी सी भी हेल्प कर सकते हो किसी के लिए तो जरूर कीजिएगा। और हाँ,
एक अच्छा काम आप और कर सकते हैं। इस ब्रेक पर सुनते रहिए गाने और ब्रेक के बाद फिर से आइए, क्योंकि इस कहानी में आगे क्या होने वाला है वो बहुत मजेदार है। तो जाइएगा नहीं, सुनते रहिए आचार्य 90 FM। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त, मिलता हूँ एक छोटे से ब्रेक के बाद। बाय।

हेलो एंड वेलकम टू आचार्य 90 FM। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त आरजे शब्बीर स्वागत करता हूँ आपका कहानियों की गुल्लक में। इतनी सारी कहानियां कहां कहां से खोजनी पड़ती है क्या बताओ, पर ठीक है। फिलहाल हम थे अमन की कहानी पर। अमन ने कैसे एक बुजुर्ग इंसान को ट्रेन से रुककर हेल्प की और बाद में उसका इंटरव्यू चला गया। वो बेचारा हताश होकर मरीन लाइन पे बैठा, फिर घर आया, घर पे झूठा जवाब दिया। हाँ, मैं क्यों रिकैप बता रहा हूँ, आप तो सुन चुके थे ना कहानी। तो चलिए सुनते हैं कहानी का अगला हिस्सा। कॉन्फ्रेंस रूम में पूरी खामोशी थी। अमन अब भी यकीन नहीं कर रहा था कि लोकल ट्रेन में जिस बुजुर्ग को उसने पानी पिलाया था वो मुंबई की एक बहुत बड़ी कंपनी के फाउंडर थे। उनका नाम था राजेंद्र मेहता। राजेंद्र जी मुस्कुराकर बोले, बेटा तुम्हें पता है उस दिन तुमने मेरी सिर्फ जान नहीं बचाई थी, तुमने मेरा इंसानियत पर भरोसा भी वापस लौटा दिया। अमन ने धीरे से कहा, सर मैं तो सिर्फ वही कर रहा था उस दिन जो हर इंसान को करना चाहिए था। राजेंद्र जी की आंखों में एक अलग सी चमक आ गई। बेटा बस उसी कार्य की वजह से, उसी मदद की वजह से आज आप यहां हमारे सामने बैठे। इस बार इंटरव्यू में अमन से टेक्निकल क्वेश्चंस कम और जिंदगी के सवाल ज्यादा पूछे गए। एक सवाल पूछा गया उससे, कल अगर तुम्हारे पास सिर्फ 100 रुपए बचे हो और किसी भूखे बच्चे को खाना चाहिए तो क्या करोगे? अमन ने एक गहरी सांस ली और बिना सोचे बोला, पहले उसका पेट भरूंगा, पैसे दोबारा आ जाएंगे, भूखा बचपन दोबारा नहीं आएगा। रूम में बैठे हुए सारे डायरेक्टर्स एक दूसरे की तरफ देखने लगे। इंटरव्यू खत्म हुआ। राजेंद्र जी खड़े हुए और अमन के कंधे पर हाथ रखकर बोले, वेलकम टू आवर फैमिली। अमन को जॉब मिल गई लेकिन उसने कभी किसी को ट्रेन वाली बात नहीं बताई। उसके लिए वो मदद कोई इन्वेस्टमेंट नहीं थी, बस एक अच्छी आदत थी जो शायद वो हमेशा हर जो जिसको मदद की जरूरत हो उस इंसान को हमेशा वो मदद करता, वो उसकी एक अच्छी आदतों में से थी। अब अमन को जॉब मिल गई, अमन नौकरी करने लगा। एक दिन गुजरा, एक महीना गुजरा, दो महीना गुजरा, गुजरते गुजरते 6 महीने गुजर गए और एक नए सफर का अब हो गया आगाज। अमन कंपनी का सबसे मेहनती एम्प्लॉय बन चुका था। ऑफिस में सब उसकी रिस्पेक्ट करते थे। एक दिन राजेंद्र जी ने उसे अपने कैबिन में बुलाया। अमन मेरी एक विश है। जी सर बोलिए ना। हर फ्राइडे हम लोग किसी न किसी की मदद करेंगे। अमन हैरान हुआ, सर कंपनी? राजेंद्र जी बोले, नहीं हम। उस फ्राइडे दोनों बिना किसी मीडिया बिना किसी कैमरा के एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल गए, किसी पेशेंट की मेडिसिन भर दी, किसी बच्चे की स्कूल फीस भर दी, किसी बुजुर्ग के लिए हियरिंग मशीन खरीद ली और हर बार एक ही शर्त होती, कभी किसी को मत बताना किसने मदद की। और यहां से शुरू हुआ एक ऐसा सिलसिला जिसकी शायद कभी राजेंद्र जी ने कल्पना भी नहीं की थी कि कभी जिंदगी में वो अपने एक नॉर्मल से एम्प्लॉय के साथ जाकर ऐसी मदद लोगों की करेंगे। एक दिन ऑफिस की पैंट्री में पियून रमेश उदास बैठा था। अमन ने पूछा, क्या हुआ? रमेश बोला, मेरी बेटी का कॉलेज एडमिशन है, फीस नहीं भर पा रहा। उस रात अमन ने अपनी सेविंग से उसकी आधी फीस भर दी। बाकी इम्प्लॉयज को पता चला, सबने मिलकर बाकी की अमाउंट अरेंज कर दी। किसी ने 500 रुपए दिए, किसी ने 1000 रुपए दिए,
किसी ने बुक स्पॉन्सर्स कर दी, दो दिन में पूरी फीस जमा हो गई। रमेश रो पड़ा। उसकी बेटी ने कॉलेज ज्वाइन कर लिया और उस दिन ऑफिस में एक नया इनिशिएटिव शुरू हुआ, लिटिल हेल्प क्लब। रूल सिर्फ एक था, हर एम्प्लॉय महीने का सिर्फ 100 रुपया कंट्रीब्यूट करेगा, जो दे सकता है वो ज्यादा भी दे सकता है, कोई फोर्स नहीं है। पहले महीने सिर्फ 23 लोग जुड़े, लेकिन दूसरे महीने में 81 लोग जुड़ गए। एक साल के अंदर पूरी कंपनी जुड़ गई। उस फंड से 42 बच्चों की स्कूल की फीस भरी गई, 18 पेशेंट्स का ऑपरेशन हुआ, 70 सीनियर स्टूडेंट्स को राशन दिया गया, फ्लड अफेक्टेड फैमिलीज तक रिलीफ पहुंचाई गई। और सबसे खास बात, किसी भी न्यूज़पेपर में फोटो नहीं छिपी, किसी सोशल मीडिया में पोस्ट नाम नहीं डाला गया, सिर्फ लोगों की दुआएं मिली। और क्या, एक बार अमन ऑफिस से घर जा रहा था, सिग्नल पर एक छोटा सा लड़का पेन बेच रहा था, लोग उसे डांट रहे थे। अमन ने उससे पूछा, स्कूल जाते हो? लड़का बोला, पापा का एक्सीडेंट हो गया और उसके बाद से मैंने स्कूल छोड़ दिया। अमन ने उस बच्चे से सारे पेन खरीद लिए, लेकिन पेन लेने के बाद वो बोला, कल से पेन नहीं बेचना, स्कूल जाना। उसने उस लड़के का एडमिशन एक एनजीओ के थ्रू करवा दिया, उसका नाम था इमरान। उस दिन अमन को नहीं पता था ये छोटी सी मदद आगे चलकर उसकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव लाने वाली है। तो दोस्तों, अमन की जो आदत थी हर इंसान को मदद करने की, चाहे वो इंसान छोटा हो बड़ा हो, किसी भी धर्म किसी भी जाति का हो, उससे फर्क नहीं पड़ता था। उसके अंदर एक सबसे बड़ी चीज थी, वो थी इंसानियत, और वो उस इंसानियत को अपने अंदर जिंदा रखे हुए था। इसीलिए हर किसी व्यक्ति जिसे मदद की जरूरत होती थी तो अमन उसके लिए हमेशा खड़ा होता, चाहे वो जिस प्रकार उसे हेल्प कर पाए। जैसे पीयून की बच्ची की आधी फीस भर दी, उसके पास शायद पूरे फीस भरने के पैसे ना हो, इसलिए उसने आधी फीस भरी, बच्चे के पूरे पेन खरीद लिए। वो हर तरह की मुमकिन कोशिश करता जिससे जो भी परेशान है, जिसे भी हेल्प की जरूरत है, उसे वो करे और इंसानियत का पैगाम और आगे पहुंचाए। तो आगे इमरान को मदद करने के बाद इमरान क्या स्कूल पढ़ पाएगा, क्या इमरान स्कूल जाएगा, या फिर इमरान फिर से उस सिग्नल पर आके पेन बेचेगा, क्या होगा कहानी में, मैं भी नहीं जानता, आप भी नहीं जानता। पर इतना जरूर जानता हूं कि कहानी के खत्म होने होने तक आप इस कहानी से एक ऐसी सीख जरूर लेंगे जिससे आपकी जिंदगी में बदलाव जरूर आएगा। तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक के लिए सुनते रहिए आचार्य 90 FM पर बहुत मजेदार गाने।

हेलो एंड वेलकम टू आचार्य 90 FM। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त स्वागत करता हूं आपका आचार्य 90 FM पर। आप सुन रहे हैं कहानियों गुल्लक, कहानियों की गुल्लक आरजे शब्बीर के साथ। जैसे हम जान रहे हैं कि इमरान की मदद कर दी, पेन खरीद कर उसे एनजीओ के द्वारा एक एडमिशन करवा दिया उसका स्कूल में। इमरान स्कूल जाने लगा, धीरे धीरे ऑफिस का जो लिटिल हेल्प क्लब शुरू हुआ था वो भी अब और ज्यादा लोगों की मदद करने लगा। सारे काम अच्छे से हो रहे थे, दिन बदले, महीने बदले और पूरे 2 साल बीत गए। राजेंद्र जी रिटायरमेंट अनाउंस करते हैं, एनुअल फंक्शन में हजारों एम्प्लॉयज बैठे हैं, सब सोच रहे थे कि स्पीच बिजनेस के बारे में होगी। लेकिन राजेंद्र जी ने स्टेज पर आते ही एक बोतल पानी उठाई और बोले, मेरी कंपनी को आज जो असली लीडर मिला है उसने मुझे किसी बोर्ड रूम में इंप्रेस नहीं किया था, उसने मुझे मुंबई की लोकल ट्रेन में एक बोतल पानी देकर जीत लिया था। पूरा हॉल खामोश था, सबकी नजर अमन पर थी। उस दिन पहली बार कंपनी को पता चला कि एक छोटी सी मदद ने सिर्फ एक इंसान की जान नहीं बचाई थी, उसने पूरी कंपनी की कल्चर बदल दी थी। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि कुछ साल बाद वही छोटा लड़का इमरान फिर से अमन की जिंदगी में लौटने वाला था और इस बार मदद का असली मतलब दुनिया देखने वाली थी। 3 साल बीत चुके थे, अमन को अब कंपनी में सीनियर मैनेजर की पोस्ट मिल गई थी, सैलरी अच्छी थी, घर की फाइनेंशियल कंडीशन भी सुधर गई थी। पापा ने अब काम से रेजिग्नेशन दे दिया था, मां अब अपने जो शौकिया तौर पर गाने गाती थी वो पूरे करने में लगी थी। लेकिन चीज नहीं बदली, और वो एक चीज थी, हर फ्राइडे अमन किसी ना किसी की बिना नाम बताए मदद करता था। उसका मानना था मदद का असली मजा तो तब है जब सामने वाले को सिर्फ इंसानियत याद रहे, मदद करने वाले का नाम नहीं। एक शाम अमन ऑफिस से घर लौट रहा था, हाईवे पर उसने देखा कि एक बाइक और ट्रक की टक्कर हो गई है। डजन्स लोग मोबाइल निकालकर वीडियो बना रहे थे, कोई इंजर्ड आदमी के पास नहीं जा रहा था। अमन तुरंत अपनी कार रोककर भागा, उसने एम्बुलेंस को कॉल किया, अपनी शर्ट फाड़कर ब्लीडिंग रोकने की कोशिश की और इंजर्ड को हॉस्पिटल ले गया। डॉक्टर्स ने तुरंत ऑपरेशन शुरू किया। डॉक्टर्स बाहर आ गए और बोले, अगर पेशेंट 10 मिनट और लेट आता तो बचना मुश्किल था। अमन चुपचाप वहां से निकल गया, उसने अपना नाम भी रजिस्टर में नहीं लिखवाया। कुछ महीने बाद कंपनी के एनुअल CSR इवेंट हुआ, चीफ गेस्ट का नाम अनाउंस हुआ, डॉक्टर इमरान शेख। अमन ने नाम सुना और हैरान रह गया। स्टेज पर एक कॉन्फिडेंट यंग लड़का आया, स्पीच शुरू हुई, आज जो मैं हूं उसका क्रेडिट मेरी मेहनत को कम और 2 अननोन हीरोज को ज्यादा जाता है। सब ध्यान से सुनने लगे। पहला हीरो, एक इंसान जिसने बचपन में मेरे सारे पेन खरीदने के बाद मुझे स्कूल वापस भेजा। अमन की आंखों में आंसू आ गए। डॉक्टर इमरान ने स्टेज से अमन की तरफ देखा और कहा, मुझे आज भी याद है उस भैया ने कहा था, जिंदगी पेन बेचने के लिए नहीं सपने लिखने के लिए होती है। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। और दूसरा हीरो, डॉक्टर इमरान ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, दूसरा हीरो मुझे कुछ महीने पहले मिला था, या शायद मिला भी नहीं, सब कंफ्यूज हो गए। एक रोड एक्सीडेंट हुआ था, मैं ही वो पेशेंट था। हॉल में सन्नाटा छा गया, किसी अननोन इंसान ने मेरी जान बचाई, हॉस्पिटल पहुंचाया, नाम तक नहीं बताया। डॉक्टर ने कहा, आज भी मैं उस हीरो को ढूंढ रहा हूं। अमन चुप था। राजेंद्र मेहता जो ऑडियंस में बैठे थे सब समझ चुके थे। उन्होंने धीरे से अमन का हाथ पकड़कर कहा, बेटा कुछ मदद
अप्लॉज के लिए नहीं होती। अमन सिर्फ मुस्कुराया। फिर क्या, उसी शाम राजेंद्र जी ने एक अनाउंसमेंट की, आज से हम कंपनी के लिटिल हेल्प क्लब को एक रजिस्टर्ड ट्रस्ट बना रहे हैं। नाम रखा गया लिटिल हेल्प फाउंडेशन। फाउंडेशन का मिशन बहुत सिंपल था, हर इंसान रोज सिर्फ एक छोटी मदद करे, ना करोड़ों का डोनेशन ना बड़े प्रोमिसेस, सिर्फ एक छोटा सा काम, किसी को रोड क्रॉस करवाना, किसी स्टूडेंट्स की फीस भरना, किसी को ब्लड डोनेट करना, किसी को जॉब रेफर करना, किसी भूखे को खाना खिलाना, किसी उदास इंसान की बात सुन लेना। धीरे धीरे करके 5 साल बीत गए, फाउंडेशन पूरे इंडिया के कई शहरों में काम करने लगी, हजारों वॉलंटियर्स जुड़ गए, लाखों लोगों तक मदद पहुंचने लगी। मीडिया ने राजेंद्र जी से पूछा, सर इतनी बड़ी मूवमेंट की शुरुआत कैसे हुई? राजेंद्र जी ने टेबल पर रखी एक पुरानी प्लास्टिक की पानी की बोतल उठाई और बोले, इस बोतल से। रिपोर्टर हैरान रह गए। राजेंद्र जी मुस्कुराकर बोले, एक दिन मुंबई की लोकल ट्रेन में एक लड़के ने अपना आधा पानी एक अनजान बुजुर्ग को दे दिया था। उस लड़के को नहीं पता था कि उसकी वजह से एक बोतल पानी आज हजारों लोगों की जिंदगी बदल देगा। आज कई साल बीत चुके हैं, अमन के बाल सफेद होने लगे हैं। एक दिन वो पार्क में बेंच पर बैठा था, तभी एक छोटी सी बच्ची दौड़ती आई, दादू आपकी स्टिक गिर गई। उसने स्टिक उठाकर अमन को दे दी। अमन ने मुस्कुराकर पूछा, थैंक यू बेटा, तुमने मदद क्यों की? बच्ची बोली, मम्मी कहती है छोटी सी मदद कभी छोटी नहीं होती, पता नहीं वो किसकी पूरी दुनिया बदल गई। अमन की आंखें भर आई, उसने आसमान की तरफ देखा, जैसे राजेंद्र जी बात फिर से सुन रहे हो। इंसान अपनी कमाई से अमीर नहीं बनता, अपनी मदद से बनता है। और उस पल अमन को समझ आया, एक बोतल पानी से शुरू हुआ सफर एक सोच बन चुका था, एक आदत, एक मूवमेंट, एक मिसाल बन चुका था। कभी भी किसी छोटी मदद को कम मत समझना। एक मुस्कान, एक ग्लास पानी, एक हौसला, एक रेफरल, एक सही वक्त पर दिया गया सहारा किसी की पूरी जिंदगी डायरेक्शन बदल देता है, क्योंकि अच्छाई कभी वेस्ट नहीं जाती, वो हमेशा किसी ना किसी रूप में लौट कर जरूर आती है। तो दोस्तों, जैसे कि एक आधी पानी की बोतल से शुरू हुआ सफर आज इतनी बड़ी मूवमेंट क्रिएट कर चुका था कि जिसकी कोई मतलब कंपैरिजन ही नहीं कर सकते। तो इसीलिए मैं आप सभी से गुजारिश करता हूं, जो इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं, चाहे जैसे भी हो, जितनी भी हो, लोगों की मदद करिए और सुनते रहिए आचार्य 90 FM। बहुत मजेदार गाने, बहुत मजेदार कहानियां, और मिलते हैं हम अगले हफ्ते एक नई कहानी के साथ। तब तक सुनते रहिए कहानियों के गुल्लक, सिर्फ आचार्य 90 FM।

आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूँ आरजे भारतीय सीमा। क्या आप जानते हैं कि चॉकलेट का इन्वेंशन अप्रोक्सीमेटली 4000 साल पहले यूएस के मेक्सिको में हुआ था। उस वक्त कुछ लोगों ने कोको सीड्स को यूज करके एक ड्रिंक बनाया था और इंटरेस्टिंग बात ये है कि कोको बीन्स से बने उस ड्रिंक को देवताओं का भोजन माना जाता था। 16th सेंचुरी में कुछ स्पैनिश लोग कोको बीन्स को मेक्सिको से यूरोप में ले आए और यूरोपियन लोगों ने उसमें शक्कर मिलाकर उसे मीठा बनाया। ईयर 1876 में मिल्क ऐड करके फर्स्ट टाइम एक सॉलिड चॉकलेट बार बनाया गया जो आज भी फेमस है। मैं आपको एक और मजे की बात बताऊं, तो सुनिए। इनिशियली आई मीन टू से शुरुआती दिनों में चॉकलेट सिर्फ अमीर लोग और सरकारी खाते वाले लोगों का ड्रिंक हुआ करता था। उस टाइम चॉकलेट को एज अ करेंसी भी यूज किया जाता था और अब हम करेंसी देकर चॉकलेट्स खरीदते हैं। वैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद चॉकलेट ज्यादा फेमस हुआ। एक्चुअली हुआ यूं कि कुछ बंदर खुश होकर कोको बीन्स खा रहे थे। कोको बीन्स खाकर वो बंदर एकदम एक्साइटेड हो रहे थे। इस घटना को वहाँ मौजूद लोगों ने देखा। उन्होंने पता लगाने की कोशिश की ये सब हो क्या रहा है। इस तरह से चॉकलेट का फाउंडेशन बना। वैसे इस चॉकलेट से फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस होने वाले लोग कौन थे ये आप जानते हैं? चॉकलेट से इंट्रोड्यूस होने वाले लोगों में सबसे ऊपर नाम आता है क्रिस्टोफर कोलंबस के लोगों का। कोलंबस कोलंबस छुट्टी है आई, हाँ वही वाला कोलंबस। ये वही इंसान है जिसने अमेरिका की खोज की थी। वैसे हमें तो चॉकलेट की खोज में ही ज्यादा खुशी लग रही है। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूँ आरजे भारतीय सीमा। ईयर 1798 में ब्रिटिश लोग चॉकलेट को भारत के दक्षिण इलाके में मींस साउथ इंडिया में लेकर आए। इस तरह चॉकलेट में भारत देश में एंट्री मारी। चॉकलेट इस शब्द को सुनते ही हमारे मुंह में स्वाद का सैलाब उमड़ पड़ता है। वैसे 9 फरवरी को हम सब चॉकलेट डे सेलिब्रेट करते ही हैं। इस फेमस चॉकलेट के टाइप्स के बारे में आप जानते हैं? डार्क चॉकलेट, मिल्क चॉकलेट, व्हाइट चॉकलेट। अब डार्क चॉकलेट की टेस्ट थोड़ी कड़वी टाइप होती है, मिल्क चॉकलेट दूध वाली होती है और व्हाइट चॉकलेट को बिना कोको सीड्स बनाते हैं। वैसे एक और भी है, रूबी चॉकलेट। इसे रूबी कोको बीन्स से बनाते हैं और ये एक नेचुरल पिंक कलर वाली चॉकलेट है। और एक टाइप की चॉकलेट भी है जिसे कवरचूर चॉकलेट कहते हैं। इसे पेस्ट्री और चॉकलेट मेकिंग में यूज करते हैं। और आखिर में बिटर स्वीट चॉकलेट, इसमें शक्कर कम और कोको ज्यादा होता है। वैसे अगर देखा जाए तो 70% से ज्यादा कोको अगर किसी चॉकलेट में है तो हेल्थ वाइज उस डार्क चॉकलेट को अच्छा माना जाता है। डार्क चॉकलेट खाने से हमारा मूड अच्छा बनता है और हमारे हार्ट और ब्रेन के लिए भी ये फायदेमंद होता है। चॉकलेट आइसक्रीम, केक, ब्राउनी, बिस्किट्स, मिल्क शेक, बर्फी, लड्डू या चॉकलेट फज, आपका फेवरेट चॉकलेट आइटम क्या है? आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूँ आरजे भारतीय सीमा। यहाँ पर हम ले रहे हैं एक स्मॉल ब्रेक। ब्रेक के बाद आपसे फिर मुलाकात होगी। स्टे ट्यून्ड।

0: वेलकम बैक टू स्वाद का जायका। वैसे हमारे भारत देश में अनोखे फ्लेवर्स की चॉकलेट भी मिलती है, फॉर एग्जाम्पल इलायची चॉकलेट, केसर चॉकलेट, पान चॉकलेट, सॉफ्ट चॉकलेट। दिवाली, रक्षाबंधन और बाकी त्योहारों में ट्रेडिशनल मिठाई के डब्बे के बदले चॉकलेट्स को एज अ गिफ्ट देना, ये सब लेटेस्ट ट्रेंड है। देखा जाए तो चॉकलेट सिर्फ खाने की ही नहीं बल्कि एक्सपीरियंस करने की चीज है। वैसे लेटेस्ट ट्रेंड्स में हरी मिर्ची और काली मिर्ची के फ्लेवर वाले भी चॉकलेट्स फेमस हो रही है। इंडियन करी और जिंजर मींस अदरक के स्वाद वाली चॉकलेट्स भी इंट्रोड्यूस हुई है। कैरमलाइज्ड ऑनियन फ्लेवर वाली 77% डार्क चॉकलेट में कैरमलाइज्ड ऑनियन फ्लेवर वाली 77% डार्क चॉकलेट ने ईयर 2025 का इंटरनेशनल चॉकलेट अवार्ड जीतकर गोल्ड मेडल हासिल किया है। कैन यू इमेजिन कांदा के टेस्ट वाली चॉकलेट। वैसे भारत की सबसे महंगी वाली चॉकलेट ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम मेंशन कराया है और उस एक्सपेंसिव चॉकलेट का नाम है ITC फेबल ट्रिनिटी ट्रफल्स एक्स्ट्राऑर्डिनेयर चॉकलेट। और इस खास चॉकलेट की कीमत है 4,30,000 पर किलो। I mean 15 ट्रफल्स के बॉक्स की प्राइस होगी अप्रोक्सीमेटली 15 लाख। और इन ट्रफल चॉकलेट्स को सिर्फ प्रायर ऑर्डर देकर ही बनाया जाता है। ये एक लिमिटेड एडिशन वाली चॉकलेट है। वैसे क्या आपने चॉकलेट पानी पूरी के बारे में सुना है? चॉकलेट पानी पूरी एक फ्यूजन डिजर्ट है। कुरकुरी पानी पूरी को चॉकलेट में डुबोकर उसके अंदर मीठी बूंदी, चॉप्ड ड्राई फ्रूट्स, कस्टर्ड भरकर चॉकलेट सॉस के साथ सर्व किया जाता है। वैसे पानी पूरी के अंदर पहले वैनिला आइसक्रीम भरकर या चॉकलेट मूस भरकर आप आइसक्रीम पानी पूरी कॉम्बिनेशन ट्राई कर सकते हैं। क्या आपने कभी चॉकलेट डोसा ट्राई किया है? जनरली अपने रेगुलर वाले डोसा बैटर को तवे पर फैलाकर उस पर न्यूटेला या चॉकलेट क्यूब्स का या चॉकलेट फज फैलाकर मक्खन के साथ पकाया जाता है। फिर सर्व करते समय तैयार डोसा पर चॉकलेट सिरप और ड्राई फ्रूट से गार्निश किया जाता है। वैसे एक बार मैंने फ्राइड आइसक्रीम ट्राई की थी। जी हाँ, ठीक सुना आपने, तली हुई आइसक्रीम। इस रेसिपी में एकदम कड़क आइसक्रीम बॉल्स को मैदे की रोटी या ब्रेड के साथ कोट करके गर्मा गर्म तेल में एकदम तेज आंच पर 10-15 सेकेंड्स के लिए तला जाता है। मीन्स अंदर डाला तेल में और झट से बाहर निकाला। वैसे हमारे भारत देश में टैलेंट भरा पड़ा है, जरूरत है तो उसे प्रदर्शित करने की। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूँ आरजे भारतीय सीमा। अब बात हो रही है टैलेंट की, तो भाई हम सब में कोई ना कोई टैलेंट तो होता ही है। सिंगिंग, डांसिंग या फिर मेरा फेवरेट कुकिंग। वैसे हर बार मैं करके किचन में काम करना मुझसे नहीं होता, औरों को भी अपना टैलेंट दिखाने का चांस मैं हमेशा नहीं देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल किचन में तवे पर गर्मा गर्म रोटियाँ जब बनती है तब उसमें से 2 रोटियाँ मैं जरूर लेती हूँ। I mean to say तवे से सीधे अपनी प्लेट में। ऐसा करने से मुझे ताजा और गर्म खाना खाने को मिलता है और साथ ही खाना बनाने वाले की तारीफ करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त होता है। मीन्स एक तीर से 2 शिकार मैं कर ही लेती हूँ। और इस बात से चिढ़कर हमारी आदरणीय मम्मी जी मुझे डांटती है। फिर इस डांट से सबक सीखकर हम किचन में कुछ अनोखे टाइप के एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। जैसे ही मैं किचन के बर्तनों से राशन वगैरह ढूंढने लगती हूँ हमारी आदरणीय मम्मी जी जोरदार भाषण शुरू करती हैं। इतना सा कुछ बनाते समय किचन के डब्बे और बर्तनों में हाहाकार मच जाता है। कभी कभी तो धुआंधार परफॉर्मेंस से किचन भर जाता है। तो कभी छई छप छई छप्पा छई स्टाइल वाली रेसिपी बनती है। एक बार मैंने मंगलवार स्पेशल मोदक बनाए। वो मोदक तोड़ने के लिए मेरे घर वाले हथौड़ी मांग रहे थे। इन सारी बातों को मैं कविता के रूप में पेश करती हूँ। कविता का नाम है किचन क्वीन के कारनामे। जब किचन क्वीन बनने का मुझे होता है साक्षात्कार तब सारे बर्तनों में मचता है जोरदार हाहाकार। दूर से ही देखकर मम्मी जी की आंखें, नन्हा सा दिल मेरा थरथर थरथर कांपे। भूल जाती हूँ सब कुछ जब घूरते हैं चश्मे से वो नैन। फिर ना दिमाग चले मेरा और ना दिल को मिले चैन। सोचा था मैंने कि खाना बनाकर मनाएंगे जश्न, लेकिन बिगड़ा खाना देखकर मेरी मम्मी जी पूछे प्रश्न। अपने अनोखे सवालों से रही मुझे पुकार, मेरी क्लास लेने मम्मी जी ने भरी हुंकार। अलग अलग डब्बों में भरा हुआ था राशन, मेरी प्रयोगशाला को देख मम्मी जी दे रही जोरदार भाषण। किचन प्लेटफॉर्म पर फैल गया पानी, तो मम्मी जी के गुस्से से याद आई नानी। किचन में दिखाती हूँ जब कोई कारनामा, तब मम्मी जी के गुस्से से मचे जोरदार हंगामा। भाई कर लो आप गुस्सा, लेकिन बात है ये सच्ची, रोशन करूंगी मम्मी जी का नाम, कसम खाती है आप।
1: नमस्कार, हार्टबीट्स विद साक्षी या सेगमेंट मध्ये मी आजचे साक्षी तुमच्या सर्वांचं अगदी मनापासून स्वागत करते। मित्रांनो, हो मित्रांनोच म्हणेन, कारण जिथे मैत्र जुळतं ना तिथे भावनांना व्यक्त होण्याची मोकळीकता मिळते। मी तुमच्याशी अनेक भावनिक, आपल्या जवळच्या आणि आपल्या हृदयाच्या विविध कप्प्यांमध्ये असणाऱ्या नात्यांविषयी, मग त्यात प्रेम, कुटुंब, मैत्री अशा विविध विषयावरती गप्पा मारणार आहे। ज्याने आपल्या मनात काही भावनांनी जो घोळ घातला असेल, काही गोष्टी विचार आपले अस्पष्ट असतील, किंवा नात्यांच्या गुंतागुंतीत आपण असे काही अडकले असू की पुढचा मार्गच दिसत नसेल, मग अशा वेळी नक्की काय करावं? नात्यातले विविध रंग, छटा, बदलत्या काळानुसार बदलणारी नात्यांची व्याख्या, या सगळ्या गोष्टींवर अगदी मनापासून मी तुमच्याशी संवाद साधणार आहे। आज आपण परफेक्ट जोडीदार या विषयावरती बोलणार आहोत। चला तर मग या विषयाला सुरुवात करण्याआधी आपण एक छान गाणं ऐकूया।

आचार्य 90 FM के ऑडियंस को मेरा प्यार भरा नमस्कार और जय हिंद। स्वाद का जायका इस शो पर मैं आरजे भारतीय सीमा आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। पिछली बार हमने आपसे दोबारा मिलने का वादा किया था, भाई अपना वादा निभाने के लिए हमें तो आना ही पड़ा। कैसे हैं आप सब लोग? ऑल गुड ना? अर्ज किया है आज का ये पल आपके नाम, इस शो का हर लम्हा भी आप ही के नाम है। इस पल के इंतजार में न जाने कब से हम बेकरार थे, आपके आने से ऑडियंस जी इस बेचैनी को मिला कुछ करार है। सोमवार की दोपहर में आप, शुक्रवार की शाम में भी आप, हर खाने के स्वाद में आप और हर स्वाद के जायके में भी आप। खाना बनाने की सोचूं तो ख्यालों में आप, गाना गुनगुनाने लगूं तो हर सुर में आप, सुरों की महफिल में आप और महफिल की रौनक भी आप, महफिल की शमा भी आप और उस शमा के परवाने भी आप। स्वागत है आपका इस जायकेदार महफिल में, आपके आने से तसल्ली पाई इस साहिल ने, आपके आने से बदले हमारे अंदाज और इस खुशी से खुश हुए सारे अल्फाज। हमारी आज की फर्स्ट रेसिपी एक स्वीट डिश है। इसे बनाने के लिए जो मेन इंग्रेडिएंट यूज होने वाला है वो एक फेमस सब्जी और आयुर्वेदिक औषधि भी है। इस सब्जी से पेठा भी बनता है। इसमें कैलोरी कम और पानी की मात्रा ज्यादा होती है। मेंटल स्ट्रेस को कम करने के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता है। हमारी इम्यूनिटी का स्ट्रॉन्ग बनाने की शक्ति इस सब्जी में है। इस अनोखी सब्जी को कुष्मांड के नाम से भी जाना जाता है। वैसे नवरात्रि के चौथे दिन माता कुष्मांडा की पूजा की जाती है। यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ सफेद पेठा मींस एश गॉड की। मराठी में इसे कोहड़ा के नाम से जाना जाता है। सफेद पेठा दिखने में गोलाकार और भारी वजन वाला होता है। इसका बाहरी हिस्सा कड़क और अंदरूनी हिस्सा जूसी होता है। पूरी तरह से पकने के बाद इस पर सफेद पाउडर टाइप परख दिखाई देती है। इस हेल्दी पेठा की सब्जी से आज हम बनाने वाले हैं पेठे का हलवा। इसे काशी हलवा नाम से भी जाना जाता है। कद्दूकस किया हुआ पेठा, देसी घी, चीनी और खोया का परफेक्ट कॉम्बिनेशन करके हम बनाने जा रहे हैं पेठे का हलवा। पेठे का हलवा बनाने के लिए हमें चाहिए इंग्रेडिएंट्स: सफेद पेठा अप्रोक्सीमेटली 1 किलो, चीनी अप्रोक्सीमेटली 1 कप या स्वाद के अनुसार, देसी घी 5-6 चम्मच, हरी इलायची 4-5, केसर के धागे 7 या 8, मावा या खोया 1/2 कप, मिल्क मसाला 2 चम्मच, मिक्स ड्राई फ्रूट्स जैसे काजू, बादाम, अखरोट और पिस्ता सब 2-2, मुनक्का 10-12, और हमें चाहिए ढेर सारा प्यार, क्योंकि आपके मन की भावनाएं इस रेसिपी में उतरने वाली हैं। सबसे पहले पेठा को अच्छे से धो लीजिए, फिर हमें उसका छिलका और बीज हटाना है। छिलका और बीज हटाने के बाद उसे कद्दूकस करना है। कद्दूकस करना है मींस उसके बारीक टुकड़े कर लीजिए या तो फिर उसे ग्रेट कर लीजिए। अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। हरी इलायची का छिलका हटाकर उसका फाइन पाउडर बनाना है। यहाँ पर मैं आपको एक टिप देती हूँ, साबुत इलायची को 1 या 2 चम्मच शक्कर के साथ मिक्सर में घुमाने से इलायची का पाउडर एकदम आसानी से बनता है। है ना इंटरेस्टिंग जानकारी? फिर हम केसर के धागों को 1 चम्मच गर्म दूध में भिगोकर साइड में रख देंगे अप्रोक्सीमेटली 10 मिनट के लिए। ऐसा करने से केसर उस दूध में अच्छे से घुल जाएगा और इस केसरिया रंग के दूध से पेठा हलवा बनाने की खूबसूरती में गजब का निखार आ जाएगा। अब आगे सुनते हैं। सारे ड्राई फ्रूट्स को लगभग 15 मिनट के लिए गर्म पानी में सोक करने रख दीजिए। 15 मिनट के बाद
हमें छुरी की मदद से उन ड्राई फ्रूट्स के पतले टुकड़े करने हैं। माय गॉड, इतनी सारी तैयारी करके मैं तो थक गई भाई साहब। आई नीड अ ब्रेक।

आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। अब हम पेठा हलवा बनाने की रेसिपी को सुनते हैं। सबसे पहले मोटे बेस वाली एक कढ़ाई लीजिए। उस कढ़ाई में थोड़ा सा घी डालकर गैस को ऑन कीजिए। फिर उसमें डालिए कद्दूकस किया हुआ या बारीक टुकड़े किया हुआ पेठा। हमें इसे लो फ्लेम पर पकाना है। लगभग 10 मिनट तक इसे चलाते रहिए, अदरवाइज ये एक तरफ से ही पक जाएगा। 10-15 मिनट के बाद उस पेठे का कच्चापन दूर होगा। तब हम उसमें डालेंगे चीनी, केसर और ढेर सारा प्यार। फिर इस मिश्रण को मिक्स करते हुए अच्छे से पकाएं। चीनी पिघलने के बाद ये मिश्रण थोड़ा ढीला हो जाएगा। पेठा का मॉइस्चर और चीनी का गीलापन सूखना चाहिए और ये मिश्रण गाढ़ा बनना चाहिए। इस स्टेज तक पहुंचने के लिए हमें इसे लगातार चलाते हुए पकाना है। लगभग 8 से 10 मिनट के बाद ये मिश्रण सूख जाएगा। फिर हम इसमें ऐड करेंगे खोया यानी मावा और थोड़ी इलायची पाउडर। फिर सारे ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कीजिए। इसे अच्छे से मिक्स कीजिए। लगभग 3-4 मिनट के बाद आप गैस को बंद कर दीजिए। अब हमें इसे डेकोरेट करना है। इसके लिए हम लेंगे एक सुंदर सा बर्तन और उस बर्तन में इस गर्मा गर्म पेठा के हलवा को ट्रांसफर करेंगे। आप चाहे तो रोज पेटल्स से इसे डेकोरेट कर सकते हैं या फिर काजू और बादाम के पतले टुकड़ों से फूलों वाला डिजाइन भी बना सकते हैं। फिर सबसे पहले भगवान को इस पेठा के हलवा का भोग लगा ही दीजिए। ऐसा करने से इसकी सात्विकता बढ़ेगी। यहाँ पर हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के उस पार आपसे और भी बातें होंगी।

वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। इस पेठा हलवा की तारीफ में पेश है एक छोटी सी कविता। कविता का नाम है ट्रेडिशनल पेठा का हलवा। सुनहरी सी एक रेसिपी जो है एकदम ट्रेडिशनल। पेठे का हलवा मींस यमी और न्यूट्रिशनल। ऑडियंस जी, किचन में कीजिए एंट्री और दिखाइए अपना जलवा। ऐसा करने के लिए आप जरूर बनाइए पेठे का हलवा। पेठे को कहते हैं आयुर्वेद में औषधि। इलायची पाउडर डालकर इसे बनाया सुगंधी। पेठा घी और शक्कर का सुनहरा ये मिलाप। और साथ में सुनिए नए पुराने कुछ म्यूजिकल आलाप। खाने और गाने का ये मेल, मतलब सेहत और मनोरंजन का सुंदर सा खेल। खाना और गाना यही है हमारे इस शो की जान। पारंपरिक खाना खाकर बढ़ाइए अपने देश का मान। सोमवार और शुक्रवार को रहूंगी मैं हाजिर, क्योंकि स्वाद का जायका शो के हम सब है मुसाफिर। मैं हूँ आरजे भारतीय सीमा और आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM योर ओन रेडियो। भाई, पेठे का हलवा हमने बना लिया है, अब बारी आती है हमारी अगली रेसिपी की। एक खट्टा मीठा फल है जिसका आकार लगभग बेर जितना या उससे थोड़ा सा छोटा होता है। इसका पौधा कांटेदार और झाड़ियों वाला होता है। जब ये फल कच्चा होता है तब हरे रंग का दिखता है, पूरी तरह से पकने के बाद ये काले रंग का दिखता है। विटामिन सी से भरा ये फल एंटीऑक्सीडेंट माना जाता है। हमारे किसान भाई इसे अक्सर अपने खेतों की मेंढों पर एज अ फेंस लगाते हैं। ऐसा करने से जंगली जानवर खेतों में नहीं घुसते। यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ करौंदे की। मराठी में इसे करवंद के नाम से जाना जाता है। इस करवंद से अचार, चटनी, जैम और जेली बनाई जाती है। आज के शो में हमारे प्यारे ऑडियंस के लिए इस करौंदा मींस करवंद की चटनी को हम बनाने वाले हैं और इसका टेस्ट एकदम चटपटा है। इस चटनी को आप सिंपल दाल चावल या सीधे रोटी पर लगाकर एज अ कंफर्ट फूड एंजॉय कर सकते हैं। करौंदे की चटनी बनाने के लिए हमें चाहिए इंग्रेडिएंट्स: हरा करौंदा या करवंद पाव किलो, हरी मिर्ची के टुकड़े 3-4, अगर आपको तीखा पसंद है तो आप इसकी मात्रा बढ़ा दीजिए, ब्राउन गुड़ या चीनी 1 कटोरी, हल्दी 1 चम्मच, धनिया पाउडर 1 चम्मच, बड़ी सौफ पाउडर 1 चम्मच, जीरा 1/2 चम्मच, राई मींस सरसों 1/2 चम्मच, हींग 1 चुटकी, कटा हुआ हरा धनिया 2 चम्मच, मेथी दाना पाउडर 1/2 चम्मच, तेल 4 चम्मच अप्रोक्सीमेटली, नमक स्वाद के अनुसार, यहाँ पर मैं लगभग 1 चम्मच नमक ले रही हूँ। सबसे पहले आप एक साफ बर्तन में पानी लीजिए, उसे अप्रोक्सीमेटली 2 चम्मच नमक को मिक्स करके साइड में रखिए। जब नमक घुल जाए तब उस सॉल्टी वाटर में सारे करौंदे लगभग 15 मिनट तक भिगोकर रख दीजिए। वैसे ये मेथड आप बाकी फल और सब्जियों के लिए भी यूज कर सकते हैं। ऐसा करने से उन फल या सब्जियों में से कीड़े वगैरह निकल जाएंगे। अब हम आगे की रेसिपी को सुनते हैं। फिर उन करौंदा मींस करवंद को एक कपड़े से पोंछ लीजिए। उसके बाद हरे करौंदे के हम 4 टुकड़े करने वाले हैं और अंदर का बीज हटाने वाले हैं। उसके बाद आप लीजिए एक मोटे बेस वाली कढ़ाई, उस कढ़ाई में डालिए थोड़ा सा तेल। इस तेल को हम धीमी आंच पर गरम करेंगे। अगर आप नारियल का तेल यूज करें तो इसका फ्लेवर एनहांस होगा। फिर उसमें वघार या तड़का लगाना है। उसके लिए सबसे पहले उस तेल में डालिए सरसों। सरसों के बाद हम डालेंगे जीरा।
ये सीक्वेंस आप फॉलो करते रहिए, पहले सरसों फिर जीरा। सरसों और जीरा को चटकने दीजिए। यहाँ पर हम ले रहे हैं एक ब्रेक, ब्रेक के उस पार आपसे और बातें होंगी।

वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। अब तड़के में डालिए खुशबूदार हींग। हींग डालने के बाद नंबर आता है मेथी पाउडर और हरी मिर्ची का। हरी मिर्ची को अच्छे से फ्राई कीजिए। आप अपनी पसंद के मुताबिक हरी मिर्ची की मात्रा को बढ़ा सकते हैं या फिर घटा भी सकते हैं। अब बारी आती है हल्दी पाउडर और नमक की। फिर हम उस मिश्रण में ऐड करेंगे सौंफ पाउडर और धनिया पाउडर। उसके बाद हम डालेंगे करौंदे मींस करवंद के टुकड़े। इस मिश्रण को एक चम्मच की मदद से आप अच्छे से मिक्स कीजिए। अब बारी आती है थोड़ी सी मिठास की मींस अब हम शक्कर को ऐड करेंगे। यहाँ पर मैं आपको एक टिप देना चाहती हूँ, अगर आप चाहे तो शक्कर के बदले ब्राउन गुड को यूज कर सकते हैं। ऐसा करने से ये चटनी ज्यादा पौष्टिक बनेगी। फिर इस मिश्रण पर एक ढक्कन रखिए। इसे लो फ्लेम पर हम लगभग 5 मिनट के लिए पकाएंगे। ऐसा करने से गुड़ या शक्कर अच्छे से मेल्ट होगा। 5 मिनट होने के बाद इसमें लगभग 1 या 1.5 कप पानी ऐड कीजिए। फिर उस पर ढक्कन लगाकर लगभग 15 मिनट के लिए उसे धीमी आंच पर पकाना है। 15 मिनट के बाद आप गैस को बंद कर दीजिए और पकी हुई चटनी को उसी तरह ढक्कन लगाकर छोड़ दीजिए। ऐसा करने से चटनी का टेक्सचर और गाढ़ा होगा। जब ये चटनी पूरी तरह से ठंडी हो जाए तब इसे कांच के बर्तन में ट्रांसफर कीजिए। उसका रीजन तो आपको पता ही है, खट्टी चीजों को धातु के बर्तन में रखने से उस धातु की मींस मेटल की क्वालिटी खराब हो जाती है, इसलिए बी केयरफुल। अब हम इसे थोड़ा डेकोरेट करते हैं। इस करौंदा मींस करवंद की चटनी को डेकोरेट करने आप इस पर छिड़किए बारीक कटा हुआ हरा धनिया। और अगर आपको तीखा खाना कुछ ज्यादा ही अच्छा लगता है तो उस पर मींस उस चटनी के मिश्रण पर आप रखिए एक हरी मिर्ची।

है। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM योर ओन रेडियो और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। वैसे करौंदा चटनी इतनी टेस्टी होती है कि एकदम फटाफट बनती है और गटागट खाकर खत्म भी हो जाती है। इस करौंदा चटनी की तारीफ में पेश है एक छोटी सी कविता। कविता का नाम है अपनी सी करौंदा की चटनी। खेतों की मेंढों पर पंछियों का घरौंदा, खट्टी मीठी चटनी बनाने आप लाए करौंदा। झाड़ियों में मिलने वाला अनोखा सा ये फल, इसके सेवन से मिलेगा स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी का हल। करौंदे से बनाई मजेदार चटनी, खट्टे मीठे टेस्ट से लगती बिल्कुल अपनी। खट्टे और मीठे स्वाद का ये संगम, मुश्किल से रखा मैंने अपने मन पर संयम। करौंदा का मतलब मराठी में करवंद, खाओ देसी खाना और सेहत बनाओ बुलंद। पारंपरिक खाने को क्यों करे नजरअंदाज, इसे खाकर करे नए ट्रेंड का आगाज। खट्टे मीठे फल में डाला मिर्ची मसाला, एक बार खाकर तो देखिए आधी टेंशन का शला। संस्कृति और स्वाद का स्वादिष्ट मेल मींस सेहत और मनोरंजन का सुपर हिट खेल। मिलती रहूंगी आपसे हर सोमवार और शुक्रवार, आपसे होने वाली हर मुलाकात करती मुझे बेकरार। आचार्य 90 FM है योर ओन रेडियो, बातें होंगी आपसे फ्रॉम अवर स्टूडियो। स्टूडियो से रेडियो तक होने वाला सफर, मतलब सेहत और म्यूजिक का जुगलबंदी ऑफर। दिल से करती हूँ आपका धन्यवाद, अच्छा लगता है मुझे आपसे करना संवाद। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM योर ओन रेडियो और मैं हूँ आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। अब हम सुनते हैं एक क्विक रिकैप। स्वाद का जायका इस शो के आज के एपिसोड में हमने बनाया पेठे का हलवा, शुरुआत में ही मीठा बना दिया। कुष्मांड के नाम से भी जाने जाने वाली इस सुपर कुल सब्जी में शक्कर, देसी घी और ड्राई फ्रूट्स डालकर हमने ये स्वीट डिश बनाई। इस काशी हलवा के नाम से भी फेमस रेसिपी को हमने एकदम शिद्दत से पकाया। इस प्रकार हमने एकदम मधुर अंदाज में अपने प्यारे ऑडियंस से दोस्ती निभाई। फिर बारी आई करौंदे की चटनी की। ये खट्टी मीठी चटनी है, मराठी में इसे करवंदाची चटनी के नाम से जाना जाता है। कच्चा करौंदा, चीनी और कुछ मसालों को इस्तेमाल करके हमने ये ट्रेडिशनल रेसिपी बनाई। सिंपल दाल चावल या फिर गरम रोटी के साथ इसे खाना मींस कंफर्ट फूड वाला मूड निभाने जैसा है। अगर आपके पास भी कुछ इंटरेस्टिंग रेसिपीज है तो हमें जरूर बताइए, और अगर आपको अपनी पसंद का कोई नगमा सुनना है तो वो भी हमें बताइए। अच्छा खाना खाइए और आचार्य 90 FM के गीत गुनगुनाइए। लेकिन लेकिन लेकिन उसके पहले आचार्य 90 FM को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ऐसा करने से हमारी दोस्ती एकदम पक्की हो जाएगी, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ही दीजिए, क्योंकि जल्दी ही रिमझिम बारिश का मौसम आएगा और लजीज खाने के साथ सुहाने गाने गुनगुनाने का आपका मन जरूर करेगा। इसलिए आचार्य 90 FM से जुड़े रहना बेहद जरूरी है। अर्ज किया है, एक खत लिखा था बादलों को, भीगा भीगा जवाब आया अभी। ठंडी छाव लेकर आए बादल, लेकिन आपकी याद ने ऑडियंस जी हमें भिगो दिया तभी। सोमवार और शुक्रवार का मनचाहा इंतजार, मतलब धूप में आए जैसे बारिश से बहार। आप ही हो ऑडियंस जी आचार्य 90 FM का परिवार, खुश नसीब है वो जिसे मिले आपका इकरार। टेस्टी व्यंजनों के साथ सुरीली सी तान मींस अपनापन जताने का मिल गया मान। अब कर ही दीजिए आचार्य 90 FM को सब्सक्राइब और दोस्ती की व्याख्या को जरूर कीजिए डिस्क्राइब।
ज्यादा बातें करने का अब

नहीं है टाइम, दोबारा मिलने आऊंगी और करूंगी रेसिपीज और सॉन्ग्स को कंबाइन। आपकी मौजूदगी से ये शो बना ब्राइट, दुनिया में रोशन हो हमारी संस्कृति की लाइट। अब समय हो गया है आप सबसे विदा लेने का, वापस मिलने का ये मेरा वादा, सिर्फ वादा नहीं एकदम पक्का वादा। आरजे भारतीय सीमा की ओर से आप सबको सी यू सून वाला मेरा बाय बाय।

हेलो एंड वेलकम टू आचार्य 90 एफएम। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त आज शब्बीर स्वागत करता हूँ आपका कहानियों के गुल्लक में। लेके आया हूँ कुछ ऐसी कहानी आप लोगों के लिए जो शायद आपके दिल में एक ऐसी दस्तक दे दे जिसके बारे में आपने कभी सोचा ही नहीं। आज की कहानी ऐसी है, बहुत सारे थ्रिलर से भरपूर और बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न से भरपूर। तो कहानी का नाम है एजेंट जीरो। अब ये पाई की कहानी है पर इसका नाम जीरो क्यों है, इसमें भी एक रोचक तथ्य है। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी। और उसके पहले एक जरूरी बात आपसे कि कहानियां जो होती है वो बहुत ज्यादा दिल के करीब होती है, तो यदि आपको कोई कहानी अच्छी लगी हो तो जरूर हमें बताइएगा। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी को। मुंबई सुबह के 8 बजे मरीन ड्राइव के पास एक छोटी सी चाय की टपरी पर एक 30 साल का लड़का चाय पी रहा था। नाम आरव मेहता। देखने में बिल्कुल नॉर्मल, सिंपल सा शर्ट, जीन्स, बैकपैक और आंखों पर एक नॉर्मल सा चश्मा। जो भी उसे देखता बस इतना ही सोचता कॉर्पोरेट एम्प्लॉय होगा और क्या ज्यादा से ज्यादा। लेकिन किसी को नहीं पता था कि यही आदमी इंडिया की सबसे सीक्रेट इंटेलिजेंस का एक सोल्जर है, एक एजेंट है। शैडो डिवीजन का सबसे डेंजरस फील्ड एजेंट था आरव। उसका कोड नेम था एजेंट जीरो, यानी ऐसा स्पाई जिसका नाम गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स में भी ऑफिशियली एग्जिस्ट नहीं करता था। अगर मिशन सक्सेसफुल हो तो देश बच जाता और अगर मिशन फेल हो तो गवर्नमेंट उसे पहचानने से भी मना कर देती, इसीलिए उसका नाम था एजेंट जीरो। आरव अपनी चाय फिनिश कर ही रहा था तभी उसका स्मार्ट वॉच में वाइब्रेशन हुआ। स्क्रीन पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, कबूतर उड़ चुका है। ये नॉर्मल मैसेज नहीं था, ये एक इनक्रिप्टेड कोड था, मतलब इमरजेंसी मिशन। आरव ने बिना रिएक्शन दिए कप डस्टबिन में डाला और सीधे चर्चगेट स्टेशन की तरफ चल दिया। जो लोग उसके पास से गुजर रहे थे उन्हें लग रहा था ये बस ऑफिस जा रहा है, लेकिन हर दूसरे सेकेंड उसकी आंखें आसपास के हर इंसान को स्कैन कर रही थी। एक आदमी न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, एक औरत फोन पर बात कर रही थी, एक डिलीवरी बॉय बाइक लेकर खड़ा था और एक छोटा सा बच्चा बलून बेच रहा था। आरव के दिमाग में एक सेकंड में सब का रिस्क प्रोफाइल बन गया। स्पाई की ट्रेनिंग ही ऐसी होती है कि कभी आप किसी पे भरोसा ही नहीं कर सकते। चर्च गेट स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर एक ओल्ड मैन बेंच पर बैठा था, वाइट बियर्ड, वॉकिंग स्टिक और हाथ में भगवत गीता। जैसे ही आरव उसके पास से निकला, ओल्ड मैन ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, दिल्ली का मौसम कैसा है? आरव रुक गया। आरव ने जवाब दिया, जब तक हिमालय खड़ा है मौसम बदल नहीं सकता। और क्या, ये थी उनकी कोड लैंग्वेज और कोड मैच हो गया। ओल्ड मैन ने अपनी वॉकिंग स्टिक आरव को दे दी, बस इतना ही, ना हैंडशेक ना इंट्रोडक्शन। आरव ट्रेन में चढ़ गया वॉकिंग स्टिक के अंदर के एक हिडन कंपार्टमेंट में। वॉकिंग स्टिक के अंदर एक हिडन कंपार्टमेंट था, उसमें एक माइक्रोचिप थी और एक फोटो। फोटो देखते ही आरव की सांसें एक सेकंड के लिए रुक गई। फोटो में था रॉ चीफ और फोटो के ऊपर लाल रंग से लिखा था टारगेट। आरव धीरे से बोला फोटो देखने के बाद, इम्पॉसिबल, इंडिया के रॉ चीफ, टारगेट, कौन कर सकता है ये? और सबसे बड़ा सवाल, मिशन फाइल में लिखा था एनिमी इज इनसाइड, मतलब गद्दार बाहर नहीं, सिस्टम के अंदर था। इसी वक्त दिल्ली साउथ ब्लॉक रॉ हेडक्वार्टर्स एक हाई लेवल मीटिंग चल रही थी। रॉ चीफ, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और डिफेंस इंटेलिजेंस के ऑफिसर्स सब डिस्कस कर रहे थे कि पिछले 2 महीनों में इंडिया के 3 अंडरकवर एजेंट्स एक एक करके एक्सपोज कैसे हो गए, हर मिशन लीक कैसे हो रहा है, हर ऑपरेशन फेल कैसे हो रहा है, किसने फाइल्स बेच दी। लेकिन क्या, कौन ये सब कर रहा है? किसी के पास कोई जवाब नहीं था। तभी मीटिंग रूम की लाइट्स एक सेकंड के लिए ब्लिंक हुई, बस एक सेकंड, और उसी एक सेकंड में कॉन्फ्रेंस टेबल के नीचे एक मैग्नेटिक डिवाइस चिपक गया। किसी ने नोटिस ही नहीं किया। मीटिंग खत्म हुई, सब बाहर गए और एग्जैक्टली
45 सेकेंड बाद बूम, पूरी कॉन्फ्रेंस रूम में जबरदस्त एक्सप्लोजन हुआ। ग्लास, स्टील, कंक्रीट सब हवा में उड़ गए। पूरा साउथ ब्लॉक इमरजेंसी मोड में चला गया। टीवी चैनल्स चिल्लाने लगे, दिल्ली में बड़ा ब्लास्ट, नेशनल सिक्योरिटी अलर्ट, रॉ हेडक्वार्टर्स पर अटैक। पूरा देश शॉक में था। मुंबई, आरव का फोन वाइब्रेट हुआ। स्क्रीन पर सिर्फ एक ही लाइन लिखी थी, फीनिक्स हैज फॉलन। ये कोड सिर्फ एक चीज का सिग्नल देता था, मिशन अब लेवल ब्लैक बन चुका था। अब रूल्स खत्म थे, अब सिर्फ सर्वाइवल था, सिर्फ सर्वाइवल। धीरे धीरे धीरे टाइम बीतने लगा। 2 घंटे बाद आरव सीक्रेटली दिल्ली पहुंचा। उसे एक अबॉन्डेड मेट्रो स्टेशन में बुलाया गया। वहां उसे मिली नैना कपूर, फॉर्मर आईबी ऑफिसर, बेस्ट साइबर इंटेलिजेंस एक्सपर्ट और आरव की एक्स पार्टनर। नैना मुस्कुराकर बोली, तुम अब भी लेट आते हो। आरव हंसा नहीं, उसने सीधा पूछा, रॉ चीफ? नैना ने धीरे से कहा, डेड। 1 सेकंड की खामोशी थी। आरव की आंखों में पहली बार गुस्सा दिखा। नैना ने एक टैबलेट उसके सामने रखा। स्क्रीन पर सीसीटीवी फुटेज चल रही थी। ब्लास्ट के 20 मिनट पहले एक अननोन आदमी बिल्डिंग के अंदर गया। फेस क्लियर नहीं था, लेकिन उसके हाथ पर एक टैटू था, ब्लैक कोबरा। आरव का चेहरा बदल गया। ये लोग वापस आ गए। नैना हैरान हो गई, तुम जानते हो इन्हें? आरव धीरे से बोला, 3 साल पहले मैंने इनका पूरा नेटवर्क डिस्ट्रॉय किया था। लीडर को मैंने अपनी आंखों के सामने मरते देखा था। नैना ने सिर हिलाया, तो फिर अगर लीडर मर गया था तो यह ऑपरेशन कौन चला रहा है? और उसी वक्त रशिया का एक सीक्रेट बंकर में एक आदमी अंधेरे में बैठा था। उसका चेहरा दिख नहीं रहा था, बस उसकी आवाज सुनाई देती थी, एजेंट 0 एक्टिवेट हो चुका है। दूसरा आदमी बोला, सर क्या उसे एलिमिनेट कर दें? अंधेरे में बैठा आदमी हंसा, नहीं, उसे जिंदा रहने दो, क्योंकि गेम तभी इंटरेस्टिंग होता है जब शिकार को लगता है कि वो शिकारी है। कैमरा धीरे धीरे उस आदमी के हाथ पर जूम करता है और उसकी उंगली में वही रिंग थी जो 3 साल पहले ब्लैक कोबरा में मारे गए लीडर के हाथ में थी। आरव जिस आदमी को मरा हुआ समझ रहा था, शायद वो कभी मरा ही नहीं। तो दोस्तों, जैसे हम देख रहे हैं एक स्पाई की कहानी जिसका नाम है आरव मेहता और उसका नाम है एजेंट 0। अब एजेंट 0 क्यों है ये भी आपको पता चल गया। और 3 साल पहले उसने जिस खुफिया गैंगस्टर्स को मारा था और आरव को लग रहा था कि वो जो है उनका लीडर वो मर चुका है, लेकिन वो असल में मरा नहीं था, वो अब भी जिंदा था। तो क्या वो जो लीडर था उनका गैंगस्टर्स का, क्या वो अब आरव के पीछे कैसे हाथ धो के पड़ जाएगा या फिर आरव उस लीडर को मार गिराएगा? जानते हैं, सुनते हैं, देखते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक के लिए सुनते रहिए आचार्य 90 FM। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।

हेलो एंड वेलकम टू आचार्य 90 एफएम। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त आज शब्बीर स्वागत करता हूं आपका कहानियों के गुल्लक में। हम सुन रहे थे एजेंट जीरो की कहानी। अब आरव दिल्ली पहुंच चुका है, रॉ चीफ डेड हो चुके हैं, रॉ के ऑफिस में एक ब्लास्ट हो चुका है, अब आगे क्या होगा तो चलिए सुनते हैं। दिल्ली, रात के 2:15 बज रहे थे। पुरानी दिल्ली के एक अंडरग्राउंड सेफ हाउस में सिर्फ एक टेबल पर लैंप जल रहा था। लैंप के बीच में एक डिजिटल मैप प्रोजेक्ट हो रहा था। इंडिया, दुबई, तुर्की और रशिया को जोड़ने वाली रेड लाइन स्क्रीन पर ब्लिंक कर रही थी। आरव और नैना उस मैप को घूर रहे थे। नैना ने धीरे से कहा, रॉ हेडक्वार्टर्स के ब्लास्ट के बाद हमारे पास सिर्फ एक क्लू बचा है और वो क्लू है ब्लैक कोबरा। आरव ने टैबलेट उठाया। ये सिर्फ एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये एक प्राइवेट स्पाई नेटवर्क है। ये गवर्नमेंट्स के लिए नहीं, सबसे ज्यादा पैसे देने वालों के लिए काम करते हैं। उनके एजेंट्स पॉलिटिशियंस भी होते हैं, साइंटिस्ट भी होते हैं, आर्मी ऑफिसर्स भी होते हैं और कभी कभी जर्नलिस्ट भी। नैना हैरान रह गई। मतलब कोई भी उनका आदमी हो सकता है? हाँ, कोई भी उनका आदमी हो सकता है। इसी वक्त सेफ हाउस की इलेक्ट्रिसिटी अचानक चली गई, पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। आरव की ट्रेनिंग एक्टिवेट हो गई। उसने बिना एक सेकंड वेस्ट किए नैना का हाथ पकड़ा और दोनों फ्लोर पर गिर गए। अगले ही पल टट टट टट साइलेंस बुलेट्स दीवार को चीरते हुए अंदर घुस गई। विंडो का ग्लास टूट गया। 3 मास शूटर्स बिल्डिंग के सामने वाली छत पर खड़े थे। आरव ने पॉकेट से एक स्मोक कैप्सूल निकाली और रूम धुएं से भर गया। शूटर्स को कुछ भी दिखना बंद हो गया। इसी कंफ्यूजन का फायदा उठाकर आरव और नैना बेसमेंट के सीक्रेट टनल से बाहर निकल गए। लेकिन जैसे ही वो गली में पहुंचे, एक ब्लैक एसयूवी के सामने आकर रुक गई। डोर खुला और अंदर से आवाज आई, एजेंट जीरो, अगर जिंदा रहना है तो गाड़ी में बैठ जाओ। आरव ने पिस्तौल निकाली, लेकिन गाड़ी के अंदर बैठा आदमी बोला, कोड α7। ये कोड सिर्फ शैडो डिवीजन के एजेंट्स जानते थे। आरव गाड़ी में बैठ गया। ड्राइवर ने अपना मास्क उतारा, मेजर कबीर सिंह, शैडो डिवीजन का सीनियर ऑपरेटिव। कबीर ने बिना पीछे देखे हुए कहा, तुम दोनों एक्सपोज हो चुके हो, दिल्ली में हर सीसीटीवी पर तुम्हारी फोटो सर्कुलेट हो रही है, गवर्नमेंट को भी लग रहा है कि रॉ ब्लास्ट के जिम्मेदार तुम हो। नैना शॉक में थी। क्या? कबीर ने टैबलेट दिया, न्यूज चैनल पर फ्लैश हो रहा था, फॉर्मर रॉ लिंक्ड ऑफिसर आरव मेहता सस्पेक्टेड इन सिक्योरिटी ब्रीच। ये न्यूज सुनकर आरव चुप हो गया। ये किसी भी बहुत पावरफुल इंसान का काम था, कोई पूरे सिस्टम को मैनिपुलेट कर रहा था। आरव चुप हो गया। ये किसी बहुत पावरफुल इंसान का काम था, कोई पूरे सिस्टम को मैनिपुलेट कर रहा था। लेकिन आरव जो है वो शांत बैठने वाला नहीं था। अब उसका नाम इस ब्लास्ट में आ तो गया था, अब उसे खुद को निर्दोष साबित करना था। तो वो धीरे धीरे अपना प्लान बनाने लगा और 3 दिन बाद दुबई में वो जा पहुंचा। बुर्ज खलीफा के सामने लग्जरी बिजनेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी। 100 से ज्यादा बिजनेसमैन सामने थे, मीडिया थी, सिक्योरिटी, और उन्हीं के बीच आरव एक बिलियनियर बैंकर कॉन्फ्रेंस में एंटर हुआ। नैना उसकी असिस्टेंट बनी, कबीर सिक्योरिटी कंसल्टेंट। टारगेट था एक इंटरनेशनल आर्म्स डीलर, विक्टर रोमानुआ। इन्फॉर्मेशन थी कि ब्लैक कोबरा का नेक्स्ट ऑपरेशन उसके थ्रू फाइनेंस हो रहा है। कॉन्फ्रेंस के बीच विक्टर वॉशरूम की तरफ गया। आरव उसके पीछे पीछे पीछे चला गया। वॉशरूम बिल्कुल खाली था। विक्टर मिरर के सामने खड़ा था। उसने बीने पीछे देखे, वेलकम एजेंट जीरो कहा। आरव एक सेकंड के लिए रुक गया। विक्टर मुस्कुराया, तुम सोच रहे होंगे ना मैं तुम्हें पहचाना कैसे। सिंपल, हमें तुम्हारे आने की इन्फॉर्मेशन 2 दिन पहले ही मिल गई थी। आरव का दिल जोर से धड़का। फिर से मिशन लीक, मतलब गद्दार अभी भी शैडो डिवीजन के अंदर था। विक्टर ने पॉकेट से रिमोट निकाला, कैच मी इफ यू कैन बोला और उसने बटन दबा दिया। कॉन्फ्रेंस हॉल में अचानक एक्सप्लोजन हुआ। लोग पैनिक में भागने लगे, फायर अलार्म से बजने लगे, स्मोक हर तरफ फैल गई। विक्टर भीड़ में गायब हो गया। आरव उसके पीछे भाग रहा था, लेकिन आरव को थोड़ी देर बाद कुछ नजर ही नहीं आया।
दुबई के रोड्स पर हाई स्पीड चेस शुरू हो गई थी। विक्टर सुपर बाइक पर था, आरव स्पोर्ट्स कार में था, नैना ड्रोन से ट्रैकिंग कर रही थी। लेफ्ट लो, अब ब्रिज क्रॉस करो, टारगेट सिर्फ 300 मीटर आगे है। विक्टर ने अचानक से बाइक से एक मैग्नेटिक माइन रोड पर गिरा दी। बूम, आरव की कार हवा में उछल गई। कार 3 बार पलटी खाकर डिवाइडर से टकरा गई, ग्लास टूट गया, खून उसके माथे से बहने लगा। नैना चीख उठी, आरव, लेकिन अगले ही सेकंड कार का डोर

धीरे से खुला और आरव खुद बाहर निकला। चोट लगी थी लेकिन आंखों में वही डिटर्मिनेशन था। उसे विक्टर की तरफ देखा जो हेलीकॉप्टर में बैठकर उड़ चुका था और फिर से मिशन फेल हो गया। लेकिन उस रात दुबई के होटल में कबीर सिक्योरिटी किसी से इनक्रिप्टेड कॉल कर रहा था। स्क्रीन पर सिर्फ एक शैडो नजर आ रही थी। कबीर बोला, एजेंट जीरो बच गया। शैडो की आवाज आई, कोई बात नहीं, उसे इंडिया वापस आने दो, वही उसकी कब्र बनेगी। कबीर ने कॉल डिस्कनेक्ट की और धीरे से मुस्कुराया। रीडर को पहली बार शक हुआ, क्या कबीर ही गद्दार है? एक इनक्रिप्टेड हार्ड ड्राइव से नैना को लोकेशन मिली। लोकेशन थी कश्मीर के पहाड़ों में एक अबॉन्डेड मिलिट्री बंकर में। तीनों वहां पहुंच गए। अंदर कंप्यूटर्स चल रहे थे। वॉल्स पर इंडिया का स्ट्रेटेजिक मैप बना हुआ था। मिसाइल्स, एयरबेस, नवल रूट्स, सबकी इन्फॉर्मेशन, सारी सारी सारी इन्फॉर्मेशन। एक स्क्रीन पर सिर्फ एक लाइन ब्लिंक कर रही थी, वेलकम एजेंट जीरो। अचानक पूरे बंकर के स्पीकर ऑन हो गए। एक मास्क पहना आदमी की आवाज गूंजी, तुम हमेशा एक स्टेप पीछे ही रहे। तुम जिस गद्दार को ढूंढ रहे हो वो तुम्हारे साथ ही खड़ा है। आरव ने तुरंत नैना और कबीर की तरफ देखा। तभी धड़ाम, कबीर ने आरव पर गन तान दी। नैना शॉक में जम गई। कबीर हंसने लगा, मुझे माफ करना दोस्त, पैसे देश से बड़े निकले। आरव ने धीरे से कहा, तो तुम ही हो ब्लैक कोबरा का आदमी? कबीर मुस्कुराया, नहीं, मैं तो सिर्फ एक प्यादा हूँ। असली किंग तो अभी तक तुमने देखा ही नहीं है। और उसने ट्रिगर दबा दिया। बैंग, गोली सीधा आरव के सीने की तरफ चली। और क्या हुआ देखेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए गाने सुनते रहिए और सोचते रहिए कि अब आखिरी एपिसोड में क्या होगा। तब तक मैं भी आता हूँ कोई अच्छे गाने प्ले करके आपके लिए। बाय बाय।

0: हेलो एंड वेलकम टू आचार्य 90 FM। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त स्वागत करता हूँ आपका आचार्य 90 FM पर कहानियों की गुल्लक में। हम सुन रहे थे एजेंट जीरो की कहानी। कबीर जो फंस चुका है जिस मिशन को वो सॉल्व करने आया था उसमें, अब उसके सामने उसका ही कलीग जो गद्दार निकला, उसने गोली चला दी और गोली चली सीधे कबीर के सीने की तरफ। देखो क्या होता है। बर्फ से ढके हुए पहाड़, अंडरग्राउंड बंकर और कबीर ने गन से निकाली गोली सीधा आरव की तरफ बढ़ रही थी और बैंग, नैना की चीख पूरे बंकर में गूंज उठी, आरव। लेकिन अगले ही पल सब कुछ बदल गया। आरव दो कदम पीछे हुआ और फिर सीधा खड़ा हो गया। कबीर की आंखें खुली की खुली रह गई। तुम जिंदा कैसे? आरव ने अपनी जैकेट खोली, अंदर एक अल्ट्रा लाइट बुलेट प्रूफ टैक्टिकल वेस्ट था। उसने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, स्पाई कभी भी बिना बैकअप प्लान के मिशन पर नहीं जाता। कबीर गुस्से से दोबारा ट्रिगर दबाने ही वाला था कि आरव ने अपनी स्लीव के अंदर छुपा माइक्रो ब्लेड निकाला और एक ही सेकंड में ब्लेड हवा में घूमा और कबीर के हाथ से गन दूर जाके गिरी। दोनों के बीच हैंड टू हैंड कॉम्बैट शुरू हो गया। पंच, किक, काउंटर अटैक, पूरा बंकर जंग का मैदान बन गया था। कबीर भी शैडो डिवीजन का ट्रेंड ऑपरेटिव था, हर मूव का जवाब उसके पास था। एक जोर का पंच आरव के चेहरे पर लगा, उसके होठों से खून निकलने लगा। कबीर हंसने लगा, गेम ओवर जीरो। लेकिन आरव चुप था। उसने धीरे से अपनी घड़ी का बटन दबाया। कबीर को कुछ समझ नहीं आया और अचानक बंकर की सारी लाइट्स बंद हो गई। इमरजेंसी रेड लाइट्स जल उठी, कंप्यूटर स्क्रीन फ्लिकर करने लगे। नैना ने तुरंत समझ लिया कि ईएमपी पल्स। आरव ने पूरे बंकर के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिसेबल कर दिए थे। अपना कैमरास, न ऑटोमेटिक लॉक्स, न सिक्योरिटी सेंसर्स, सब के सब बंद। अंधेरे का फायदा उठाकर आरव ने कबीर को नीचे गिराया और उसके हाथ बांध दिए। कबीर जोर जोर से हंसने लगा, तुम जीत गए? नहीं आरव, अभी असली गेम शुरू हुआ है। और उसने धीरे से बंकर की दीवार की तरफ देखा, वहां एक हिडन डोर खुल गई। अंदर से धीमी तालियों की आवाज सुनाई देने लगी। एक लंबा आदमी अंदर से बाहर निकला, ब्लैक सूट, ग्रे बाल, शांत चेहरा और आंखों में अजीब सी ठंडक। नैना उसे देखते ही सन्न रह गई। इम्पॉसिबल! आरव की सांसें रुक गई कि खन्ना सर? ये वही आदमी था जिसने सालों पहले आरव को शैडो डिवीजन में रिक्रूट किया था। राघव खन्ना, शैडो डिवीजन के फाउंडर, इंडिया का लेजेंडरी स्पाई और आरव का गुरु। आरव धीरे से बोला, ये सब आप? खन्ना मुस्कुराया, हाँ आरव, ब्लैक कोबरा का असली मास्टरमाइंड मैं ही हूं। नैना को यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन क्यों सर? खन्ना ने गहरी सांस ली, 25 साल तक मैंने देश के लिए जान दी, हर मिशन कंप्लीट किया, लेकिन रिटायरमेंट के बाद एक मेडल तक नहीं मिला। गवर्नमेंट नए हीरोज बना रही थी, पुराने स्पाइस को भूल गई और उसी दिन मैंने फैसला किया, अब दुनिया मुझे इग्नोर नहीं करेगी, मैं दुनिया को कंट्रोल करूंगा। उसने एक रिमोट निकाला, स्क्रीन पर इंडिया का डिजिटल मैप आ गया। खन्ना बोला, हर मेट्रो सिटी का पावर ग्रिड मैं मलवेयर इंस्टॉल कर चुका हूं। एक बटन दबाते ही पूरे इंडिया की इलेक्ट्रिसिटी, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, एयर ट्रैफिकिंग सब बंद हो जाएगा, सब के सब, जो सिर्फ 10 मिनट में सारे देश को घुटने पर ला सकता था। नैना ने धीरे से पूछा, पासवर्ड? खन्ना सर मुस्कुरा दिए, तुम लोग के मरने के बाद बताऊंगा मैं पासवर्ड क्या है। उसने रिमोट एक्टिव कर दिया, स्क्रीन पर काउंटडाउन शुरू हुआ, 10 मिनट। 10 मिनट पे जो खन्ना पूरे देश को घुटने पर लाने वाला था, अब उसका काउंटडाउन शुरू हो चुका था। आरव ने बंकर का लेआउट देखा, एक तरफ सर्वर रूम था, दूसरी तरफ खन्ना और बीच में कबीर और काउंटडाउन। उसने नैना की तरफ देखा, सिर्फ एक नजर, दोनों एक दूसरे को समझ गए। नैना सर्वर रूम की तरफ
1: भागी आरव सीधा खन्ना की तरफ। खन्ना की फाइटिंग स्किल आज भी कमाल की थी, हर अटैक प्रिसाइज, हर मूव कैलकुलेटेड। एक एक किक आरव के दीवार से टकरा गई। काउंट डाउन, अब बचे थे 7 मिनट 48 सेकेंड। नैना सर्वर हैक कर रही थी, लेकिन सिस्टम क्वांटम इंक्रिप्शन से प्रोटेक्टेड था, पासवर्ड के बिना कुछ नहीं होगा। आरव जोर से बोला, नैना वायरस अपलोड करो, मैं पासवर्ड लाता हूँ। फाइटर और भी डेंजरस हो गई, फाइट अब और भी डेंजरस हो गई। खन्ना ने पिस्तौल निकाली, 3 गोलियां चलाई, एक आरव के कंधे को छू गई, दूसरी दीवार में लगी, तीसरी गोली नैना की तरफ जा रही थी। आरव बिना सोचे उसके सामने आ गया, गोली उसके बाजू में घुस गई, खून बहने लगा। नैना ने आरव की तरफ देखा तो नैना की आंखों में आंसू आ गए, वो जोर से चिल्लाई, आरव। लेकिन आरव सिर्फ एक बात बोला, मिशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है नैना, तुम अपना काम करो। अब 10 मिनट से समय घटकर 3 मिनट 11 सेकंड बच चुके थे। खन्ना ने रिमोट उठाया, बस एक बटन दबाया और सब खत्म। आरव ने अपनी बेल्ट से एक छोटा मैग्नेटिक डिस्क निकाला, उसने रिमोट पर चिपकाया, रिमोट फ्रीज हो गया। खन्ना गुस्से में चिल्लाया, तुमने। आरव ने उसके हाथ पकड़कर जोर से घुमा दिए, रिमोट नीचे गिर गया, स्क्रीन पर पासवर्ड फ्लैश हुआ, इंडिया 1947। नैना ने तुरंत पासवर्ड एंटर किया, वायरस अपलोड शुरू हुआ, 25%। खन्ना ने कबीर की तरफ देखा, उसे रोको। कबीर ने भागने की कोशिश की, लेकिन बंकर के बाहर से हेलीकॉप्टर्स की आवाज आने लगी, शैडो डिवीजन के कमांडोज पहुंच चुके थे। कबीर के भागने की कोशिश की, लेकिन कमांडोज ने उसे तुरंत अरेस्ट कर लिया। अंदर अपलोडिंग अब ज्यादा बढ़के 52% हो चुकी थी, अपलोडिंग अभी बढ़कर 52% हो चुकी थी। खन्ना ने आखिरी बार आरव पर हमला किया, दोनों बंकर के किनारे तक लड़ते लड़ते पहुंच गए। नीचे 100 फुट गहरी खाई थी। खन्ना हंसने लगा, या तो मैं बचूंगा या तो हम दोनों मरेंगे। उसने आरव को धक्का दिया, दोनों खाई की तरफ गिरने लगे। आखिरी पल में आरव ने स्टील केबल पकड़ ली, खन्ना का हाथ भी उसके हाथ में था। खन्ना नीचे लटक रहा था, एक पल के लिए सब शांत हो गया। खन्ना धीरे से बोला, मुझे बचा लो। आरव की आंखों के सामने सारी ट्रेनिंग, सारी यादें और गुरु की शक्ल घूम रही थी। उसने पूरी ताकत से खन्ना को ऊपर खींचने की कोशिश की, लेकिन खन्ना ने खुद उसका हाथ छोड़ दिया। तुम सच में मेरे सबसे बेहतरीन स्टूडेंट थे, और वो अंधेरी खाई में गिर गया। उसी वक्त सर्वर अपलोड हुआ 100% कंप्लीट, काउंटडाउन रुक गई, पावर ग्रिड बच गई, पूरा देश एक बहुत बड़े साइबर अटैक से बच गया। 3 महीने बाद मुंबई की वही पुरानी चाय की टपरी, सुबह के 8 बजे आरव फिर एक आम आदमी की तरह चाय पी रहा था। न्यूज चैनल पर चल रहा था, अननोन इंटेलिजेंस टीम फॉइल्स मैसिव अटैक ऑन इंडिया। किसी को नाम नहीं पता था, किसी को चेहरा नहीं पता था, ना कोई अवार्ड, ना कोई स्पीच, ना कोई सेलिब्रेशन। तभी उसकी स्मार्ट वॉच पर एक नोटिफिकेशन आया, स्क्रीन पर एक नया मैसेज आया, मिशन ओमेगा इनिशिएटेड। आरव हल्का सा मुस्कुराया, उसने चाय की आखिरी सिप ली, बैकपैक उठाया और भीड़ में कहीं गुम हो गया, क्योंकि कुछ हीरोज हिस्ट्री बुक्स में नहीं मिलते, वो सिर्फ देश की हिफाजत करते रहते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। थैंक यू। तो दोस्तों, ये थी कहानी आरव मेहता, एक स्पाई एजेंट की, जो अपने देश को बचाने के लिए हर एक कीमत चुकाने के लिए तैयार था। उसने अपने गुरु से तक फाइट की, अपने दोस्त, अपने कलीग सबसे, क्योंकि देश सबसे पहले आता है और देश के बाद सब कुछ। तो दोस्तों, सुनते रहिए आचार्य 90 FM पर। मैं मिलूंगा आपसे फिर अगले हफ्ते एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अच्छे अच्छे गाने सुनिए और मजा कीजिए।

आज कॉलेज का आखिरी दिन है और आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। नो रियली आई मीन इट। और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है,

आचार्य 90 FM के ऑडियंस को मेरा प्यार भरा नमस्कार और जय हिंद। स्वाद का जायका इस शो पर मैं आरजे भारतीय सीमा आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हैं हमारे प्यारे ऑडियंस? अरे भाई, बारिश के मौसम में इंद्रधनुष को देखा कि नहीं? वैसे आप सबकी मौजूदगी से हमारे स्वाद का जायका शो पर सतरंगी खुशियों का माहौल सा ऑलरेडी छा चुका है। अर्ज किया है बारिश का मौसम और ऑडियंस का साथ, मतलब जैसे आसमान में इंद्रधनुष और अपनेपन की बात। खुशियों का पैगाम लेकर आया अगस्त। मनोरंजन के लिए आचार्य 90 FM का परिवार मींस आप ही हो समस्त। स्वाद का जायका की होस्ट भारतीय सीमा टेंशन की स्पीड को कर देगी धीमा। अच्छा खाना खाकर हो जाइए खुश, बेकार वाले टेंशन को दूर कीजिए पुश। भारत की तरक्की से खुश हुआ आसमान, आचार्य 90 FM मतलब दोस्ती की पहचान। हाल ही में मारा हमने शानदार फोर, हर कोई मांगे आचार्य 90 FM मोर। अब ना होगा मुमकिन हमें करना इग्नोर, नाउ वी आर बेटर देन नेवर बिफोर। आचार्य 90 FM मतलब परफेक्ट एंटरटेनमेंट, खाने और गाने की यहाँ पर एंजॉयमेंट। पहली रेसिपी का नाम है शीर खुरमा, खाकर इसे अब खुश होंगे हमारे सूरमा। ईद की बधाई का लेकर संदेश, पधारे हैं और भी त्योहार लेकर खुशियों का आदेश। आचार्य 90 FM के आप संग है खास ताल्लुकात, टेस्टी शीर खुरमा से होगी इस शो की शुरुआत। तो जनाब, हमारी आज की फर्स्ट रेसिपी का नाम है शीर खुरमा। भाई, ईद को मनाने के लिए शीर खुरमा बनाया जाता है। हैदराबादी और लखनवी खाद्य संस्कृति में शीर खुरमा का एक अलग और खास स्थान है। ये एक ट्रेडिशनल और बेहद टेस्टी मिठाई है। इसे मेनली दूध, सेवई और खजूर इस्तेमाल करके बनाया जाता है। शीर मींस दूध और खुरमा मींस खजूर होता है, और इन दोनों को मिलाकर बनता है शीर खुरमा। है ना इंटरेस्टिंग जानकारी? आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूँ आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। चलिए अब हम इस ट्रेडिशनल शीर खुरमा को बनाने की रेसिपी को सुनते हैं। शीर खुरमा बनाने के लिए हमें चाहिए इंग्रेडिएंट्स: फुल क्रीम दूध 1.5 लीटर, बारीक सेवई 50 से 60 ग्राम, इसे हाथ से तोड़कर छोटा करना है, खजूर 5 या 6, इसे रात भर पानी में भिगोकर पतला और लंबा काटना है, बादाम 10-12, इसे भी रात भर पानी में भिगोकर छिलका हटाना है, फिर लंबे टुकड़ों में काटना है, काजू 10-12 बारीक कटे हुए, फिर हमें चाहिए पिस्ता 10-12 बारीक कटे हुए, चिरौंजी मींस चारोली 2 बड़े चम्मच, किशमिश 1 बड़ा चम्मच, चीनी 1/2 कप या स्वाद के अनुसार, देसी घी 3-4 बड़े चम्मच, हरी इलायची पाउडर 1/2 छोटा चम्मच, केसर के धागे 10 से 12, इन्हें लगभग 1 चम्मच गरम दूध में भिगोकर रखना है, केवड़ा जल या गुलाब जल 1 छोटा चम्मच, ये ऑप्शनल है, और मेन इंग्रेडिएंट ढेर सारा प्यार, क्योंकि आपकी मन की भावनाएं इस रेसिपी में उतरने वाली है। अब हम शीर खुरमा बनाने की रेसिपी की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले हमें दूध को उबाल

गाढ़ा करना है। इसके लिए हमें चाहिए मोटे बेस वाली एक कढ़ाई। उस कढ़ाई में हमें दूध को गर्म करना है। जैसे ही उस दूध में उबाल आए, आप गैस की आंच को धीमा कर देंगे। इसे घटाकर हमें एक तिहाई करना है। लगभग आधे घंटे तक हमें दूध को पकाना है। इस दौरान करछी की मदद से हम दूध को चलाते रहेंगे। ऐसा करने से मलाई उस बर्तन के किनारों पर जमा नहीं होगी। उफ, इतना सारा काम करके मैं तो थक गई भाई साहब। आई नीड अ ब्रेक। तब तक आप एक गाना सुन लीजिए।

आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। अब हम शीर खुरमा बनाने की रेसिपी को सुनते हैं। सबसे पहले हम लेंगे मोटे बेस वाला एक पैन। उस पैन में लगभग 1 चम्मच घी डालकर हमें उसे गर्म करना है। फिर उसमें कटे हुए बादाम, काजू, पिस्ता, चारोली और किशमिश डालकर हमें भूनना है। लगभग 2-3 मिनट तक हम इसे लो फ्लेम पर भून लेंगे। जब ये हल्के सुनहरे रंग के हो जाए तब हम इन्हें एक प्लेट में निकाल कर रखेंगे। फिर उसी पैन में बचा हुआ घी डालकर हम भूनेंगे बारीक सेवई। इसे भी लगभग 2-3 मिनट तक हमें भून लेना है, मींस धीमी आंच पर जब इसकी खुशबू आए तब तक। अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। हमने दूध को उबालकर गाढ़ा कर लिया था, अब हम उसमें भुनी हुई सेवइयां और खजूर ऐड करेंगे। इसे लगभग 5-7 मिनट तक पकाना है। फिर हम इसमें ऐड करेंगे चीनी, ड्राई फ्रूट्स के टुकड़े और खुशबूदार इलायची पाउडर। भाई वाह, इसे लगभग 5 मिनट तक चलाते हुए धीमी आंच पर पकाना है। अब गैस को बंद कर दीजिए। इस प्रकार हमारा स्वादिष्ट शीर खुरमा अब हो गया है तैयार और इसे टेस्ट करने हम हो रहे हैं एकदम बेकरार। तो भाई अब हमें चाहिए कांच की एक सुंदर सी कटोरी। उस कटोरी में बड़ी नजाकत से हम डालेंगे शीर खुरमा। क्या बात, दूध में से झलकती हुई सेवइयां और साथ में ढेर सारे ड्राई फ्रूट्स, जैसे कि सावन के मौसम में खिली खिली सी धूप। अब अपनों के साथ मिल बांट कर इस शीर खुरमा का लुफ्त एकदम तसल्ली से उठाइए। ऐसा करने से इस शीर खुरमा का टेस्ट और ज्यादा अच्छा लगता है। यकीन ना आए तो एक बार आप इसे ट्राई तो कीजिए जनाब। और इसके साथ आप सुनिए हमारे आचार्य 90 FM का अगला वाला गाना।

वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 एफएम और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। इस लजीज शीर खुरमा की खिदमत में पेश है एक कविता। कविता का नाम है उम्मीदों वाली ईद। शीर खुरमा खाकर मनाइए ईद, अपनापन जताने की हमें है उम्मीद। ईद पर घर पे बनी मीठी सेवैया, हम ही हैं खुद अपने लाइफ के खेवैया। सेवैया में मिलाइए ढेर सारे ड्राई फ्रूट्स, त्योहारों में छिपे हैं अपने पन के रूट्स। केसर से पाया इस रेसिपी ने रंग सुनहरा, केसर से पाया इस रेसिपी ने रंग सुनहरा। खिलाकर शीर खुरमा दोस्ती को कीजिए गहरा। खाना खिलाकर जब गहरी होगी दोस्ती, तब कभी कभी होगी हल्की फुल्की मस्ती। अपनापन दिखाने का त्योहार वाला टाइम। सब्सक्राइब कीजिए आचार्य 90 एफएम, वंस इन अ लाइफ टाइम। भाई त्योहारों को मनाना और लजीज खाना खाकर अपनापन जताना

सुरक्षित तरीके से मछली पकड़ने के लिए नए सत्र की शुरुआत करता है। समुद्र देवता को शांत रहने और आपदाओं से रक्षा करने की प्रार्थना इस दौरान की जाती है। रक्षाबंधन के साथ ही मनाया जाने वाला ये पर्व भाई बहन के प्रेम को भी दर्शाता है। इस दौरान पारंपरिक गीत, नृत्य और पकवानों का आनंद लिया जाता है। इन पकवानों में विशेषकर नारियल वाले चावल को बनाया और खिलाया जाता है। श्रावण पूर्णिमा के दिन बनने वाला ये नारियली भात मींस नारियल वाले मीठे चावल, ताजा नारियल, गुड़, चीनी और सुगंधित मसालों से बनता है। इसे बनाना बेहद सरल और आसान है। भाई जरूरी नहीं कि आप इसे सिर्फ नारियल पूर्णिमा के दिन ही बनाएं। किसी और जश्न के दौरान भी आप इस ट्रेडिशनल नारियल के चावल की यमी रेसिपी को जरूर बना सकते हैं। ये रेसिपी खास तौर पर अपनी बनावट और स्वाद के लिए जानी जाती है। तो भाई शुभ काम में देरी क्यों? हमारे आज के इस त्योहार स्पेशल एपिसोड में हम नारियल के चावल मींस नारियली भात को बना ही देते हैं। नारियली भात बनाने के लिए हमें चाहिए इंग्रेडिएंट्स: बासमती चावल एक कटोरी, ताजा नारियल एक, नमक आधा चम्मच या स्वाद के अनुसार, ब्राउन गुड़ पौना कटोरी, केसर के धागे 10-12, लौंग 9 या 10, देसी घी 4 बड़े चम्मच, पानी 2 कटोरी, मिक्स ड्राई फ्रूट्स 1/2 कटोरी। मिक्स ड्राई फ्रूट्स मींस काजू, बादाम, किशमिश, चिरौंजी मींस चारोड़ी वगैरह। यहाँ पर मैं आपको एक टिप देना चाहती हूँ। यहाँ मिक्स ड्राई फ्रूट्स के बदले मिल्क मसाला को इस्तेमाल मत कीजिए, अदरवाइज इस नारियली भात का लुक्स थोड़ा सा बदल जाएगा। इस बात का आप खास ध्यान रखिए। रेसिपी को शुरू करने से पहले हमें ताजा नारियल को कद्दूकस कर लेना है। हमें लगभग 1/2 कटोरी भर के ये नारियल चाहिए। फिर चावल को अच्छे से धो लेना है। चावल को पानी से धोने के बाद उसका पानी हमें हटाना है। उसके बाद लगभग 45 मिनट के लिए इसे अलग से रख दीजिए। इस तरह से भिगोकर रखे हुए चावल पकने के बाद बड़े और खिले खिले से दिखते हैं और इस वजह से हमारा प्रेजेंटेशन थोड़ा प्रोफेशनल टाइप हो जाएगा। यहाँ पर हम ले रहे हैं एक क्विक ब्रेक। ब्रेक के उस पार आपसे और बातें होंगी। स्टे ट्यून्ड।

वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूं आपकी दोस्त RJ भारतीय सीमा। ब्रेक पर जाने से पहले हम नारळी भात बनाने की तैयारी कर रहे थे। अब हमें ब्राउन गुड़ को भी कद्दूकस कर लेना है। फिर एक पैन में हम गरम करेंगे देसी घी। उस देसी घी को हमें लो फ्लेम पर गरम करना है। अब हम उसमें सारे ड्राई फ्रूट्स को भून लेंगे। लगभग 3-4 मिनट तक हम इसे भूनेंगे। फिर इन ड्राई फ्रूट्स को हम एक प्लेट में निकाल देंगे। उसके बाद हम लेंगे मोटे बेस वाली एक कढ़ाई। उसमें धीमी आंच पर हम गरम करेंगे 3 बड़े चम्मच देसी घी। जब वो घी गरम हो जाए तब हम उसमें लौंग डालेंगे। इसे 3-4 मिनट तक लो फ्लेम पर हमें भूनना है। जब लौंग फूल जाएगी तब उसमें से खुशबू आने लगेगी। फिर हम उसमें ऐड करेंगे भिगोकर रखे हुए बासमती चावल और थोड़ा सा नमक भी। इसे एक बड़े चम्मच की मदद से हमें मिक्स करना है। उसके बाद उन चावलों में हम डालेंगे गुनगुना पानी और केसर के धागे। फिर हम गैस की फ्लेम को तेज करेंगे। जैसे ही चावल में तेज उबाल आएगा तब हम गैस की फ्लेम को धीमा करेंगे। थोड़ी देर के लिए उन चावलों के ऊपर हम ढक्कन रखकर इसे पकाएंगे। थोड़ी देर के बाद चावल सारा पानी सोख कर पूरी तरह से पक जाएंगे। इस बीच एक छोटे पैन में गुड़ और नारियल डालकर उसे मिक्स कीजिए। हमें इसे धीमी आंच पर पकाना है। थोड़ी देर बाद गुड़ पिघलना शुरू होगा। आहा, क्या बात! नारियल और गुड़ के पकने की खुशबू से सारा घर महक उठेगा और घर के लोगों के टेस्ट बर्ड्स अब एक्टिव मोड की तरफ प्रस्थान करने लगेंगे। मींस सबको उत्सुकता होगी कि भाई हो क्या रहा है। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूँ आपकी दोस्त RJ भारतीय सीमा। अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। तो भाई, पके हुए गुड़ और नारियल के इस मिश्रण को हम चावल में मिक्स करेंगे। इस दौरान आप ध्यान रखें कि चावल के दाने टूटे नहीं। एकदम हल्के हाथों से इसे मिक्स करना है। आप चाहे तो इसे मिक्स करने के लिए काटा चम्मच को यूज कर सकते हैं। हम इस मिश्रण को ढककर धीमी आंच पर लगभग 4-5 मिनट तक पकाएंगे। जनाब जरा रुकिए तो, मेरी बात को सुनिए तो, इतनी भी क्या बेकरारी भाई। अभी डेकोरेशन वाला पार्ट बाकी है। अब हम लेंगे एक सुंदर सी प्लेट। उस प्लेट में हम डालेंगे तैयार नारियल का मीठा चावल। इसे सजाने के लिए उसके ऊपर हम भुने हुए ड्राई फ्रूट्स को फैला देंगे। हमारे महाराष्ट्र का नारियल चावल मींस नारळी भात त्योहारों के व्यंजन के रूप में अब हो गया है तैयार और इसे टेस्ट करने हमारे प्यारे ऑडियंस जी हैं एकदम बेकरार। तो भाई, देर किस बात की? आप नीचे जमीन पर बैठ जाइए। अपने साफ और धुले हाथों से इस गर्मा गर्म नारियल वाले चावल का एक निवाला उठाइए। अपनी उंगलियों से उस चावल के टेम्परेचर और टेक्सचर को फील कीजिए। फिर एकदम नजाकत से, एकदम आराम से उस निवाले को अपने मुंह में डालिए। उस चावल का अरोमा और उसका टेस्ट आपके चेहरे पर मिलियन डॉलर वाली स्माइल को जरूर लाएगा। यकीन ना आए तो इस नारळी भात को आप एक बार बनाकर तो देखिए। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि इसे बनाकर और अपनों के साथ मिल बांट कर खाने से आप एकदम खुश हो जाएंगे। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूँ आपकी दोस्त RJ भारतीय सीमा। इस नारळी भात की तारीफ में पेश है एक छोटी सी कविता। कविता का नाम है नारियल वाले मीठे चावल। रक्षाबंधन के त्योहार पर मिठाई में डाला नारियल,
त्योहार को जरूर मनाएंगे, शैतान भाई और बहन अड़ियल। आया पूर्णिमा का पर्व ये पावन, खुशियों को मनाने बनाया हमने मीठा नारियल चावल। नारियल का साथ देने हमने डाला गुड़, इसकी मिठास ऐसी कि सुधार देगा आपका मूड। स्वाद का जायका ऐड करने डाली हमने लौंग। आचार्य 90 FM पर आप जरूर सुनिए सॉन्ग। मीठा नारियल चावल मींस स्वाद के संग सेहत। सिर्फ हेल्दी खाना खाने की अब डाल ही लीजिए आदत। सावन का महीना लेकर आया खुशियों की आहट। स्वाद का जायका शो मतलब लजीज खाने की चाहत। अब हम सुनते हैं एक क्विक रीकैप। आज के इस एपिसोड में सबसे पहले हमने बनाई एक खास रेसिपी, शीर खुरमा नाम की। इस रेसिपी में बारीक सेवई, दूध, खजूर और मिठास भरी शक्कर को देसी घी के साथ मिलाकर हमने ईद को सेलिब्रेट किया। किया के नहीं ऑडियंस जी? जी बिल्कुल किया। इस प्यारी सी रेसिपी में ड्राई फ्रूट्स मिलाकर हमने थोड़ी सी सजावट भी की। उसके बाद हमने नारियल पूर्णिमा का पावन पर्व भी शानदार तरीके से सेलिब्रेट किया। ताजा नारियल, बासमती चावल, गुड़ और लौंग को घी का तड़का लगाकर हमने एक खास महाराष्ट्रीयन रेसिपी बनाई। नारळी भात नाम से फेमस रेसिपी को रक्षाबंधन स्पेशल सेलिब्रेशन के तौर पर हमने आचार्य 90 FM के हमारे खास ऑडियंस के लिए बनाया। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की रेसिपीज जरूर पसंद आई होंगी। अगर आपके पास भी कुछ इंटरेस्टिंग रेसिपीज है तो हमें बताइए, और अगर आपको अपनी पसंद का कोई नगमा सुनना हो तो वो भी हमें जरूर बताइए। अच्छा खाना खाइए और आचार्य 90 FM के गीत गुनगुनाइए। लेकिन पहले हमारे आचार्य 90 FM चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अब समय हो गया है आप सबसे विदा लेने का, वापस मिलने का ये मेरा वादा। सिर्फ वादा नहीं, एकदम पक्का वादा। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। आरजे भारतीय सीमा की ओर से आप सबको सी यू सून वाला मेरा बाय बाय।

0: Hello everyone, you are listening to Acharya 90FM, your own radio. Today we have with us Ms. Achal Singh and guest with us Ms. Smita Mishra. And also we have our own intern Pranav Nair. And we are going to talk about suicide prevention. Let me introduce our guest. So Smita is mental health professional visiting faculty at NMIMS College, actively doing awareness session around teen mental health, and a trauma-informed psychologist. So I would like to ask a question to our guest, Smita ma'am. Let's tell our audience the basic care. What is mental health?
1: Okay. मेंटल हेल्थ अगेन हमें आइसोलेशन में आई फील डिस्कस नहीं करना चाहिए. जब हम हेल्थ की बात करते हैं, हेल्थ में हेल्थ की अगर WHO की डेफिनेशन को हम देखें तो इट टॉक्स अबाउट कि अ हेल्दी पर्सन में सिर्फ ऐसा नहीं है कि डिजीज़ का एब्सेंस है. इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट एब्सेंस ऑफ एनी डिजीज़, इट इज़ ऑल्सो अबाउट कम्प्लीट स्टेट ऑफ वेलबींग, जहाँ पर हमारा साइकोलॉजिकल हेल्थ, हमारा फिजिकल हेल्थ सब काम करता है. तो मेंटल हेल्थ अगेन, मोस्ट ऑफ द टाइम व्हेन वी टॉक अबाउट मेंटल हेल्थ, लोग जो है उसे कंफ्यूज करते हैं मेंटल इलनेस के साथ. सो नॉट एवरीवन इज मेंटली इल, बट एवरीवन हैज़ अ मेंटल हेल्थ दैट दे नीड टू टेक केयर ऑफ, जस्ट लाइक दे टेक केयर ऑफ देयर फिजिकल हेल्थ. इट्स अबाउट देयर इमोशंस, देयर फीलिंग्स, देयर पर्सनैलिटी.
0: सो आजकल हम देख रहे हैं कि स्पेसिफिकली अगर बात करें तो यंग एडल्ट्स के बारे में, व्हाट वुड बी योर एडवाइस mental health, how they can prevent themselves from the suicidal thoughts and everything?
1: How they can prevent themselves from suicidal thoughts? Okay, I think again hume basic se start karna padega ki what do we mean by suicidal thoughts, uske roots kya hai and kya hum ise prevent kar sakte hai would be the first question. Then how can we prevent it? So first let's understand what do we mean by suicidal thoughts. जब एक व्यक्ति को, जब एक व्यक्ति इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर एज, भले वो बच्चा हो, टीनेजर हो या ओल्डर कोई हो, जब उन्हें ऐसा फील होने लगता है कि देयर इज़ नो पॉइंट इन स्टेइंग हियर, देयर इज़ नथिंग फॉर मी टू लुक फॉरवर्ड टू, और काफ़ी ज़्यादा पेन है, तो इस पेन को ख़त्म करने का जो एकमात्र तरीका है दिस लाइफ, तो अगर ये लाइफ ही नहीं होगी तो ऐसा कोई पेन भी नहीं होगा. दिस इज हाउ सुसाइड इज. एंड देन हाउ दे कैन प्रिवेंट इट इज, देर आर डिफरेंट लाइक मेथड्स टू डू दैट. बट जब हम सुसाइड प्रिवेंशन के बारे में बात करते हैं, आई जस्ट वॉन्ट टू टेक अ मोमेंट एंड हाई लाइट की जो सुसाइड प्रिवेंशन का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये अकेले एक बच्चे के ऊपर या अकेले एक इंडिविजुअल के ऊपर नहीं आना चाहिए, जो यूजुअली आता है. क्योंकि हम सुसाइड प्रिवेंशन के बारे में जब हम बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि इट इज़ अप टू दैट इंडिविजुअल और देयर थेरेपिस्ट. बट आई फील दैट प्रिवेंशन इज़ अ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी. एंड व्हेन आई सी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई मीन कि एवरीवन हैज़ अ रोल. अ टीचर हैज़ अ रोल, अ पेरेंट हैज़ अ रोल, क्लासमेट्स ऑफ पीयर हैज़ अ रोल. लार्जर स्केल में देखें तो स्कूल एज एन इंस्टीट्यूशन या ऑफिस एज एन इंस्टीट्यूशन हैज़ अ रोल. मीडिया हैज़ अ रोल कि वो कैसे डिपेक्ट कर रही है, कैसे प्रेजेंट कर रही है सुसाइडल केसेस, क्या उसको वो सेंसेशन बना रही है या सेंसिटिवली हैंडल कर रही है. देन अ वेरी बिग रोल ऑफ पॉलिसी मेकर्स, गवर्नमेंट, स्टेट. डू दे हैव दैट इनफ रिसोर्सेज जहाँ पे प्रिवेंशन के लिए, मतलब वो कंडीशन है जहाँ पे वो लास्ट स्टेज पर पहुँचे ही ना, तो प्रिवेंशन के लिए अकेले एक बच्चे पे वो नहीं आना चाहिए कि हाउ दे शुड डू इट. इट शुड बी अ कलेक्टिव एफर्ट बिकॉज इट्स अ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी.
2: सो आई वांटेड टू आस्क कि व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज द वेरी जनरल प्रॉब्लम दैट एवरी टीनेजर गो थ्रू might lead to take this big step in their life. It can be anything, but what do you think with your experience is the general problem a student or a teenager go through?
1: Okay, since you're asking about just general problems, again a disclaimer, that whatever I will share here right now is based on my readings, my personal experience and my discussion with teenagers. So whatever I will share, वो ज़रूरी नहीं कि सबको equally वैसा apply हो, सबके cases अलग अलग हो सकते हैं, but जो recurrent चीज़ें हैं I might even miss out on few, but जो data भी हमें बार बार बताती है, that is, A would be loneliness. A lot of teenagers, a lot of young adults today feel lonely despite having a lot of people around them, and it's not like they are not trying to do anything to feel less lonely. Agar 2023 mein WHO ne to declare kar diya tha ki it's a public threat, loneliness is a public threat, but aisa nahi hai ki nahi try kar rahi hai. Uska jo contradiction, हम आयरनी देखें तो यही जनरेशन है जो एक्सट्रीमली ट्राई कर रही है टू फील लेस लोनली. देर इज प्रेशर टू एंजॉय, देर इज प्रेशर टू हैव फन, प्रेशर टू मेक कनेक्शंस. इट्स द सेम थिंग, लाइक इफ वी वांट टू टेक एन एग्जांपल, वी कैन टेक एन एग्जांपल ऑफ डेटिंग एप्स. अ लॉट ऑफ यंग अडल्ट्स, अ लॉट ऑफ टीनएजर्स, अ लॉट ऑफ कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स आर यूजिंग डेटिंग एप्स, एंड आई एम इन नो पोजिशन टू से कि वो यूज करना गलत है या नहीं है. इट्स अ पर्सनल चॉइस, इट इज हेल्पिंग पीपल फाइंड कनेक्शन, देन why not. But then there's something called as dating burnout, jo log feel kar rahe hain, which is very similar to workplace burnout. Aur workplace burnout mein bhi wahi emotional exhaustion hota hai, sab kuch like everything is same, is just that the difference is yahan pe hum jo swipe karte hain dating app mein, the job here is to find connection. So there's a lot of exhaustion that these people not this generation feel, sorry for the term, our generation feel to make a meaningful connection. So there's a lot of sense of loneliness, and then apart from this, there's also constant conflict in relationships. And when I say relationship, it is beyond two partners who are dating, it goes to the families as well. A lot of the time a teenager simply feels ki why are they not listening to me, yeah, why is it so difficult for them to understand what I'm telling them. On the other hand, parents are like, we are trying to protect our children, and whatever we are saying is because of their own betterment. So there's a lot of conflict, there's a lot of communication gap, and this communication gap is also, there's also emotional gap ki hum nahi samajh pa rahe ki what the other person is feeling. So that is B. I think I pointed out loneliness and then family conflict, and there's also external pressure, like societal pressure about performance, about marks. Marks से रिलेटेड काफ़ी

0: result of so many other stressors that a person is facing.
1: So ma'am, I do have a question about, like, आपने बोले करके family के bond की वजह से भी जो person है वो suffer करता है. So I do wanna know करके अगर family के साथ bond अच्छा नहीं है. On a personal note, I think either the person choose another character to live, like वो उन्हें high पे भी लेके जा सकता है, and on a negative note, वो person extreme depression में जा सकता है. I do wanna know your thoughts on it.
0: Help me understand the question better. You said that the conflict between parents.
1: Should I repeat, ma'am?
0: Yeah.
1: Like, ma'am, अगर एक बच्चे का अपने डैड के साथ में अच्छा बॉन्ड नहीं है, सो वो पर्सपेक्टिव से वो बच्चा आइदर एक अनदर पर्सनालिटी चूज करके एक हाई पे जा सकता है.
0: अनदर पर्सनालिटी वुड बी
1: अनदर पर्सनालिटी मैम लाइक गिव ऑन द इमोशन, लाइक इमोशंस को पीछे छोड़ के.
0: ओके,
1: सो ये इफेक्ट करता है क्या मेंटल हेल्थ को?
0: यस, इफेक्ट करता है, बट आई थिंक आप दो चीज कुछ कंपेयर कर रहे थे. आई वुड वांट यू टू कंप्लीट.
1: इफेक्ट करना इन द सेंस, अभी जैसे बच्चा अगर अपने मॉम डैड से थोड़ा दूर रह रहा है, सो लाइक वो एक इमोशनल अवेलेबिलिटी कम हो रहा है उसके पास. सो ही इज जस्ट ट्राइंग टू रिप्लेस द थिंग्स विद सम अदर. स्पोर्ट्स हो गया, लाइक उनके उसकी पर्सनल लाइफ हो गई. सो डज इट हेल्प?
0: ओके, नाउ देयर इज समथिंग कॉल्ड एज कोपिंग मैकेनिज्म, जो हर इंडिविजुअल का अलग अलग होता है. नाउ इन दिस सिचुएशन कहीं पे सपोज अगर हम बात कर रहे हैं कि फैमिली के साथ कॉन्फ्लिक्ट है, अगर फैमिली इन जनरल टॉक्सिक है कि वहाँ पर रह के हमारा एनर्जी और ड्रेन हो रहा है, हम खुद से और एक्सप्लोर चीज़ें नहीं कर पा रहे, खुद को और एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, देन फॉर समवन इफ दे हैव गुड कोपिंग मैकेनिज्म, लाइक इफ दे आर एज यू सेड कि स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, किसी आर्ट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इट डज हेल्प.
2: Another question would be, if being a teacher, so there are a lot of students where I see that, you know, all of a sudden changes in behavior, and suddenly वो एकदम शांत हो जाते हैं, suddenly behavior change हो जाता है. So that I am noticing, but at the same time I also wanted to understand कि क्या as a teacher or let's say as a older people than the younger ones, कैसे हम वो पैटर्न को समझें एंड व्हाट वी कैन डू फॉर देम.
0: ओके,
2: एंड हाउ विल वी यू नो कंफर्ट देम और यू नो मेक देम.
0: थैंक यू सो मच फॉर दिस क्वेश्चन मैम. कमिंग फ्रॉम अ टीचर, जैसे मैं स्टार्टिंग में कहा था कि कलेक्टिव एफर्ट है, सबका रोल है, सो आई एम वेरी ग्लैड दैट दिस क्वेश्चन इज कमिंग फ्रॉम अ टीचर्स पर्सपेक्टिव. कि अगर स्टूडेंट या इरेस्पेक्टिव लाइक द रिलेशनशिप कोई हमसे छोटा किसी डिस्ट्रेस में है, तो पहले हम वो साइंस को कैसे रिकॉग्नाइज करें. आपने करेक्टली कहा कि जैसे अगर बच्चा, तो हमें थोड़ा नोटिस करना है कि सडन चेंज क्या आ रहा है पर्सनालिटी में. अगर आउट गोइंग बच्चा सडनली शांत हो जा रहा है, तो एक वो क्लियर कट साइन है. बट देन इसके अलावा भी कुछ साइंस है जो हम मिस कर देते हैं, जैसे कि अगर बच्चा हमें पता है कि किसी डिस्ट्रेस से गुजर रहा था, उसके बारे में बात कर रहा था, लेकिन सडनली अब काम हो गया है, एकदम ही शांत हो गया है, या फिर एकदम ही पॉजिटिव वे में सब चीज़ें ले रहा है, तो काफ़ी बार लोगों को लगता है कि नाउ थिंग्स आर बेटर, बट एक्चुअली थिंग्स आर द थिंग इज मेंटली उसने गिव अप कर दिया. मेंटली उसने एक डिसीजन बना लिया है कि अब तो टेंशन लेके भी कोई फायदा नहीं है, अब रो के भी कोई फायदा नहीं है, दिस इज समथिंग आई एम गोइंग टू डू. नाउ व्हाट एज अ टीचर वी कैन डू टू प्रिवेंट दिस इज, फर्स्ट जब आप चेंजेस ये सब देख रहे हैं, एक्नॉलेज दैम, सिट विद दैट चाइल्ड एंड बी वर्बल अबाउट वॉट यू सॉ और वॉट यू नोटिस्ड, एंड विदाउट बीटिंग अराउंड द बुशेस डायरेक्टली आस्क, आर यू थिंकिंग अबाउट किलिंग योर सेल्फ, आर यू थिंकिंग अबाउट सुसाइड. नाउ ये बोलने में बहुत डिसकम्फर्टिंग लगता है कि ये डायरेक्टली कैसे बोले, मतलब इससे तो फिर हो जाएगा कि हम आइडियाज़ दे रहे हैं. लेकिन अगर आपने देखा कि कहीं कहीं साइंस है, बच्चा बोल रहा है कि देर इज़ नो पॉइंट इन लिविंग, या मेरा बस हो गया है, या देख रहे हो आपके बच्चा कहीं, पेरेंट्स अगर ये सुन रहे हैं तो अच्छा सडनली अपने पासवर्ड सब

0: लिख रहा है, या सडनली रैंडमली किसी फ्रेंड को टेक्स्ट कर रहा है थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग. ऑल ऑफ दीज आर इम्पॉर्टेंट साइंस टू पिक अप एंड देन डायरेक्टली आस्क कि इज देर एनीथिंग यू वॉन्ट टू टेल मी एंड आई एम हियर टू लिसन टू यू. और डायरेक्टली वो टॉपिक निकालो, क्योंकि हो सकता है कि आपके अलावा एज ए मतलब टीचर ने उनको पूछा है, शायद उसके अलावा पहले किसी ने नोटिस नहीं किया हो, पहले कभी किसी ने ये शायद ये थॉट के बारे में उन्होंने भी खुद से कभी बोला ना हो. तो वो जब आप सामने से डायरेक्टली पूछेंगे तो उन्हें एक स्पेस मिलेगा कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करने के लिए. आई टोल्ड यू कि पिकअप ऑन दैट. एंड सो इसी को अगर कंटिन्यू करें हम, तो एक गेट कीपर ट्रेनिंग होती है जहाँ पे हम ट्रेनिंग देते हैं लोगों को कि सुसाइड प्रिवेंट कैसे करें, क्या नेक्स्ट स्टेप करें. तो एक मॉडल होता है विच इज़ कॉल्ड एज QPR मॉडल. तो क्यू में यू आस्क क्वेश्चंस एंड देन यहाँ पे जो मैंने आपको बताया कि डायरेक्टली पूछो. देन पी में इट इज़ नॉट लाइक कि आपको सडनली उसको परसुएड करना है कि डोंट डू इट. सडनली वो होगा भी नहीं और वो शायद उस स्टेट पे है भी नहीं कि सारी लॉजिकल रीजनिंग वो एक्सेप्ट कर पाए. तो उस टाइम पे ज़रूरी है कि आप डिले करें जितना उनके मतलब असेस करें क्वेश्चनिंग के टाइम पे कि रिस्क कितना है. अभी असेस कैसे करेंगे, चेक करना कि सिर्फ आइडिया है या प्लान भी है, तो सुसाइडल आइडिएशन है या सुसाइडल प्लान भी है. अगर उन्होंने प्लान भी करके रखा है कि आसपास ये है तो आई कैन डू दिस या आई कैन जंप फ्रॉम दैट, सो इट द रिस्क इज मच हायर एट दैट टाइम. तो वो रिस्क असेसमेंट करने के बाद पर्सुएशन में यू जस्ट हैव टू सिट देयर विद देम, पर्सुएड देम दैट दिस इज नॉट द टाइम टू टेक एनी एक्शन एंड आई एम हियर विद यू. इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली गिविंग देम सोल्यूशन, जस्ट टेल देम दैट दे आर हियर विद यू. तो वो लोनलीनेस का जो मैंने कहा था वो भी थोड़े उन्हें फील होगा कि यस समवन इज देयर एंड दे डू नॉट हैव टू कैरी दिस मच पेन ऑन देयर ओन, समवन इज देयर फॉर देम टू शेयर इट विद. बोलो कि हम साथ में ये चीज़ हैंडल करेंगे. And then R is to refer it to people who are experts. For example, social workers, counselors, psychiatrists, emergency care centers. अगर ये सब immediately available नहीं है तो आपको काफ़ी कुछ helpline numbers है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं. या तो आप उनके साथ बैठो और बोलो कि let's together call them and let's talk to them. तो telemanus एक helpline number है. iCall है जिसको हम use कर सकते. तो ये आप हेल्पलाइन नंबर उसे दो, देन उनको इमिडिएटली छोड़कर ये सब देख के चले ना जाए. इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि अगर आपने रिस्क असेसमेंट किया है, लग रहा है हायर है, तो बी अराउंड देम एंड सी कि आसपास उन्होंने कोई भी ऐसे लीथल मटेरियल नहीं है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिससे सेल्फ हार्म हो सके, जैसे कि शार्प ऑब्जेक्ट या कोई ऐसा एरिया जहाँ से वो जंप कर सके. सो इट्स वेरी नेसेसरी दैट यू स्टे अराउंड देम, इवन इफ दे पुश यू कि नहीं आई डोंट वॉन्ट टू टॉक टू यू, आई डोंट वॉन्ट टू सी यू, तभी भी इट इज इम्पॉर्टेंट दैट यू स्टे विद दैट पर्सन. वहाँ पे
1: वेरी इंसाइटफुल इंफॉर्मेशन एंड डेफिनेटली ये सभी के काम आने वाला है, नॉट जस्ट एज अ टीचर बट एज अ एडल्ट हु इज अ ग्रोन पर्सन एंड नॉट ओनली ग्रोन पर्सन बट हूएवर इट इज लिसनिंग, वो सबके काम आने वाला है. एंड इसके साथ हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे एंड वी विल कम बैक.

0: welcome back. And we were talking about suicide prevention. And we have a guest with us, Ms. Smita Mishra. And we will continue the topic. Yeah.
1: So, ma'am, as a mental health professional, I have heard that there are so many myths and so many stereotypes around someone who's struggling through mental health or someone who has reached to a point where they are getting suicidal ideation. And the common myth that I have seen or heard about is that if you talk about suicide, it can make things more worse. Mm-hmm. So I want to ask that, is that true?
2: No. A single word answer, no. Talking about it helps us open the channel for conversation. The problem is not talking about it.
1: Mm.
2: And that exactly what leads to myth and stigma around mental health. Because we can't talk about it. क्यों अगर सपोज जो आपने बोला ना लास्ट मोमेंट तक पहुंच जाता है तो यही है ना कि हम वेट करने लगते हैं. अगर सपोज कोई फिजिकल प्रॉब्लम हो, अगर चेस्ट में कोई बर्निंग सेंसेशन है तो हम तुरंत जाते हैं डॉक्टर के पास. डॉक्टर एक्सरे वगैरह करा लेते, सब टेस्ट कराते हैं, सब नॉर्मल भी आता है तो डॉक्टर बोलते हैं कि इट वॉज जस्ट एन एसिडिटी. बट हम टाइम नहीं वेस्ट करते हैं जस्ट टू गेट चेक्ड. हम वो हेल्प लेने में टाइम वेस्ट नहीं करते हैं. बट व्हेन इट कम्स टू टेकिंग हेल्प फॉर योर मेंटल हेल्थ, हम डिले कर देते हैं. और वो डिले के वजह से बात फिर इतनी आगे बढ़ जाती है कि दैट सुसाइडल आइडिएशन इज नाउ हैज रीच टू द पॉइंट जहाँ पे अ पर्सन इज एक्चुअली थिंकिंग अबाउट एंडिंग देयर लाइफ.
1: दैट इज कम्प्लीटली ट्रू, दैट इज करेक्ट. Can you tell me certain myths or stereotypes that you think that are very common among everyone regarding suicide?
2: Yeah, myths like talking about it will give out the impression that you are weak or you're not strong enough, or talking about it is not normal. So yehi jo not normal wala phenomena hai, yeah. लोगों को कंफर्टेबल इसलिए भी नहीं फील होता है बात करने में, नॉट जस्ट बिकॉज कि आसपास लोग नहीं है ट्रस्ट करने वाले. हो सकता है कि ट्रस्टफुल लोग हैं, हो सकता है फैमिली सपोर्टिव है, टीचर सपोर्टिव है, बट उन्हें वो बोलना नहीं आ रहा है क्योंकि कभी उन्होंने देखा नहीं है वो. कोई मॉडल करने वाला कभी कोई एडल्ट था नहीं. सो व्हाई मोस्ट ऑफ द यंगर पीपल आर स्ट्रगलिंग टू स्पीक अबाउट इट इज ऑल्सो बिकॉज अ लॉट ऑफ ओल्डर पीपल आर स्टिल स्ट्रगलिंग टू टॉक अबाउट इट. They have never experienced a grown-up be vulnerable. या उन्होंने नहीं देखा है लोगों को express करते हुए उनकी weaknesses या अपने emotions के बारे में बात करते हुए उन्होंने नहीं देखा. तो when a child is growing up या थोड़े वो teenage या adult इसमें पहुँचते तो वो धीरे धीरे accept करने लगते हैं कि I think यही reality है. मुझे अगर mature रहना है then I need to be tough या I should not share it with anyone and I should deal with it on my own. And there are again me, as I said, ki media also has a role in it. So there's a lot of content on Instagram that sort of glorifies this whole thing of doing it all alone. And I'm not against of doing things alone, but it is normalized in such a way, it is glorified or romanticized in such a way that it is limiting people to take help. Why in India people who have never read, who were never interested in reading, why are they interested in reading self-help books? It is because the idea of helping themselves, yeah, taking care of their mental health is only up to them, their own responsibility. तो बाकी लोगों को इस पर इन्वॉल्व करने का कोई ज़रूरत है नहीं. ये ऑल दिस थिंग्स आर सॉर्ट ऑफ लिमिटिंग देम इन आस्किंग फॉर हेल्प. या आस्किंग फॉर हेल्प वुड बी अ सेकेंडरी, सिंपली टॉकिंग अबाउट इट इज डिफिकल्ट. इट्स बिकॉज उन्होंने नहीं देखा है कि कोई बड़ा उसके बारे में बात कर रहा हो वो कभी.
1: करेक्ट.
3: Exactly. I would give opinion about this कि हम generational gap होता है. When you talk about parents and when you talk about children, there is a lot of generational gap and understanding gap. जहाँ पे if we see आजकल के generation में mental health is very much important. And older generation को आप देखोगे जब, तो वहाँ पे I think physical health was much more important. And awareness नहीं थी,
2: राइट.
3: आज की जनरेशन में वो अवेयरनेस है. अगेन मीडिया कम्स इन द प्लेस
2: वेयर इट हैज हेल्प्ड इन अ पॉजिटिव वे.
3: एंड थ्रू द मीडिया हम बता रहे हैं कि मेंटल हेल्थ कितना इम्पोर्टेंट है.
2: एब्सोल्युटली.
3: एंड छोटी से छोटी बातें रिपोर्ट करना कितना इम्पोर्टेंट है. करेक्ट.
2: एंड राइटली रिपोर्ट करना, सेंसिटिवली रिपोर्ट करना कितना इम्पोर्टेंट है.
3: सो आज मैं ये बोल सकती हूँ कि मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं जो छोटे से छोटी चीजों को लेके डिस्टर्ब होते हैं. कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि कभी कुछ शेयर ही नहीं किया, बट दे आर इन टू वेरी मेजर, आई वॉन्ट नॉट यूज वर्ड डिप्रेशन, बट उनकी लाइफ में बहुत सारी चीजें हुई होती है, वो शेयर नहीं कर पाते. दे बिहेव वेरी नॉर्मल. एंड कुछ बच्चे ऐसे हैं कि छोटी से छोटी बातें होती तो दे आर एक्सप्रेसिव. सो दे आर नेचर इज
2: यस या हर स्टूडेंट का तरीका अलग होता है एक्सप्रेस करने का. कई लोग कंफर्टेबल है शेयर करने के लिए कर पाते, कई लोग कंफर्टेबल होके भी उन्हें शायद नहीं वोकैबुलरी मिल रही है कि कैसे कर पाए. और मैम आपने एक चीज बोली कि कई बार बच्चे जो है डिप्रेशन से गुजर रहे होते हैं बट कभी वो दिखाते नहीं है. दैट इज ऑल्सो अ वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग टू नोटिस बिकॉज इट्स अ वेरी रियल थिंग. कई बार अगर जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं जिनके घर पर किसी ने सुसाइड किया होता है तो लोग बोलते हैं कि हमने कभी देखा ही नहीं कि ऐसा कुछ हो सकता है या कभी लगा ही नहीं कि ये इंसान अपनी जान दे सकते हैं. तो बाकी सारे जो चेंजेस हैं बिहेवियर में इमोशन में जो दिख रहे हैं ठीक है हम वहाँ से हेल्प कर सकते हैं, बट काफ़ी बार साइंस ऐसे हो जाए जो नहीं दिखाई देते या जो काफ़ी नॉर्मल हो गई है कि हमेशा हंसते रहना एक दूसरे की हेल्प करते रहना, तो लोग जो है यहाँ पर फिर बात नहीं करते, उनको लगता है सब ठीक है. तो अगेन इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन, अगर सब ठीक है तो भी टाइमली चेकिंग करना और कम्युनिकेट करना, चैनल देना फॉर ओपन कम्युनिकेशन कि अगर कुछ है तो आप आके मुझसे बात कर सकते हो इज वेरी इंपॉर्टेंट. इंस्टेड ऑफ सिंपली अज्यूमिंग कि ये इंसान तो सब अच्छे से कर रहे हैं, एकेडमिक्स में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर में बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो दैट मीन्स एवरीथिंग इज ओके. लेट्स नॉट अज्यूम दैट.
3: एंड आई वुड लाइक टू आस्क अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन सोशल मीडिया वेयर people have lot of you know, मैं ये बोल सकती हूँ कि एग्जाम्पल बता सकती हूँ कि फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट है दूसरे स्टूडेंट्स को हरास कर रहा है. देर विल बी हरासमेंट, देर विल बी अ डिप्रेसिंग थॉट्स वेयर स्टूडेंट इज शेयरिंग दोज काइंड ऑफ अ थॉट्स. ठीक है, इट्स नॉट जस्ट अ स्टूडेंट्स, एनी वन.
2: ओके,
3: तो वो पैटर्न ऑब्जर्व करना इज दैट ऑल्सो वेरी इम्पोर्टेंट.
2: वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट. सो यहाँ पे दो टॉपिक है, पहला एक हरासमेंट का है एंड दूसरा साइंस जो हमें सोशल मीडिया पोस्ट में दिखता है रिलेटेड टू सुसाइड. हरासमेंट इज अ वेरी इज अ थिंग दैट वी नीड टू रिपोर्ट. अगर हमें पता चल रहा है कि किसी बच्चे का पिक्चर किसी ने गलत तरीके से यूज किया हो या उन्हें कोई ऐसा कॉन्टेंट शेयर किया हो गया हो विच इज एक्सप्लिसिट या that made a person feel unsafe, that is very, then it is very important that we report that case and cyber security ka wahan pe help le. Second, about someone posting things which is very closely related to feeling of hopelessness ya koi aisi poetry likhna jahan pe thoda sa sadness jo hai wo chalak raha hai ya sad status lagana, to kai baar log bolte ki ye to har mahine ka hai iska, ye attention seeking activity hai, ye karte hain. To I just want to say ki pick up that sign, even though if it's an attention seeking activity they are telling you that they need attention, so it is very important that you do not ignore them. And what ho sakta hai ki unki artistic personality hi ho ki wo sad sab kuch post kare, fir bhi unse baat karo, timely check up karo, shayad wo dismiss kare is cheez ko, theek hai shayad nahi hai wo cheez, but it is very important to ask because it's better to be safe than sorry, right? वॉट इफ एवरीथिंग वॉज राइट इन फ्रंट ऑफ देम एंड हमने अज्यूम कर लिया कि इट्स जस्ट अ पर्सनैलिटी और दैट्स हाउ द आर्टिस्ट माइंड वर्क. ये सब चीज़ें सोच के हमें रुकना नहीं है. अगर हमें लग भी रहा है कि वो अटेंशन सीकिंग एक्टिविटी है देन इट्स अ क्लियर बिग साइन, गिव देम अटेंशन, टॉक टू देम.
4: मैम डू यू थिंक लाइक सोशल मीडिया रीच आउट टू यू फर्स्ट वॉट एवर लाइक आपका जो भी थॉट्स या फिर फीलिंग्स आपके जो चल रहे हैं ना सिर्फ थॉट्स, सबसे पहले जो आपके पास रीच आउट करता है वो है सोशल मीडिया. बिकॉज जो भी आपका फीड रहता है एंड वो टोटली वर्क करता है आपके मेंटल स्टेट के ऊपर. Like if you are dreaming about something and the next moment you open the social media, you see them. Like,
2: okay, now about algorithm, आप मीडिया के स्टूडेंट्स हो, आप मुझसे ज़्यादा जानते हो यहाँ पे, तो फिर correct me if I'm wrong, do you think अभी कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आई है जहाँ पे कोड जो है पढ़ रहा है हमारे ड्रीम्स?
4: Yeah, I do think.
2: आई है?
3: I think moreover, पढ़ने से ज़्यादा whatever we are talking or whatever we are searching.
1: Exactly.
2: Yes, absolutely. That is being recorded and that's how your algorithm picks it up and then constantly आपको उसी चीज़ पे content बार बार दिखाया जाएगा और जब constantly उसी चीज़ को exposure आ रहा है तो unconsciously जब आप फिर आप सोओगे तो आपको वो dream में भी आएगा. तो इट इज़ ट्रू दैट कॉन्स्टेंटली आपका फोन भी आपको रिमाइंडर दे रहा है कितनी सारी चीज़ के. एंड सुसाइड प्रिवेंशन के अराउंड जितना कॉन्टेंट है ऑनलाइन उतना ही लाइक इट इज़ शॉकिंग एंड बट इट इज़ सो रियल कि सुसाइड के अराउंड भी ऐसा कंटेंट है जो प्रमोट कर रहा है सुसाइड. मतलब आई रिमेंबर सीइंग अ पोस्ट दैट टॉक्स अबाउट कि पीपल हैव सो मैनी गुड थिंग्स टू टॉक अबाउट यू बट फॉर दैट यू नीड टू एंड योर लाइफ.
4: Yeah, that's my point. Like, social media presents both positive and negative
2: perspective. Yeah, the extremes are there, right? So, like, अगर आप social media handle कर रहे हो या manage कर रहे हो, media को represent कर रहे हो, तो it is very important that you be sensitive and responsible while you are representing it. Now, media जैसे काफी help किया है media ने to गिव अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे लोग ओपनली डिस्कस कर पा रहे हैं या एजुकेशनल कॉन्टेंट अराउंड मेंटल हेल्थ कंज्यूम कर पा रहे हैं. काफ़ी सारे साइकोलॉजिस्ट हैं, साइकेट्रिस्ट हैं जो कॉन्टेंट बना रहे हैं एक्टिवली. बट ऑन दी अदर हैंड उस सेम एल्गोरिदम में, उस सेम मीडिया में हमारे पास एक्सट्रीम कंटेंट है जहाँ पे जो, क्योंकि अब साइकोलॉजिकल वर्ड्स काफ़ी अवेलेबल है. अगेन आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट यू कि आपने नॉर्मली डिप्रेशन वर्ड यूज नहीं किया, आपने थोड़ा हेजिटेट किया वहाँ पे. तो वी नीड सच लाइक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन इफ यू आर ऑन मीडिया, बिकॉज इफ माई स्टूडेंट्स आर लाइक लिसनिंग टू मी, दे नो कि मैंने कितनी बार उनको बोला है डू नॉट कैजुअली यूज दीज वर्ड्स, दे आर रियल मेंटल हेल्थ कंडीशन, डू नॉट यूज इट इन योर बायो दैट आई एम अ साइकोटिक person, yeah, like do not make fun of these things.
3: Yes.
2: Do not make it cool ki autistic something something bio mein likha hoga. So treat mental health conditions as a condition. Hum kisi dusre physical condition ko is tarah se bio mein likh ke mazak nahi udate. So this words ka use karna is not helping us in any way. It is sort of dismissing the actual value or sort of making it difficult for the person who is actually going through it,
3: exactly.
2: Talk about it openly because उनको लग रहा है कि ये तो मजाक की तरह लिया जा रहा है. So there are two extremes that we need to keep in mind and as a professional media representative we need to be mindful of how we are presenting the content.
4: Like ma'am, जब हम media के around revolve कर ही रहे हैं, so do you also think कि जो PR works होते हैं, like Instagram पे comment sections होते हैं, that also like affect the audience. The person, कोई एक particular person को वो चीज affect करती है, like comments हो गए और response हो गए.
2: Right. एक reel पे किसी ने अगर समझो खुद का ही कोई photo post किया हो, like it was a very happy moment for them, but then someone will call it cringe. कोई बोलेगा कि ये कैसा दिखावा कर रहे हैं या this is so cringe. So yeah, people are out there to make comments जहाँ पे they will constantly compare you no matter what you post, they will

0: criticize you. So yeah, that also that impacts a lot. उसका भी काफी ज्यादा फर्क पड़ता है.
1: Referring to this, I remember one of the interview kind of ऋचा चड्ढा का, जहाँ पे वो इंटरव्यू के टाइम पे एक क्वेश्चन आता है उसके पास कि डज इट इम्पैक्ट आपके कमेंट सेक्शन में जो ये नेगेटिव कमेंट्स आते हैं, डज दैट इम्पैक्ट्स यू. सो शी कमेंट ऑन दैट कि दिल्ली में बैठ के चिंटू मेरे बारे में क्या बोलता है, व्हाई डज इट इम्पैक्ट
0: मी.
1: सो दैट इज अ पॉजिटिवली शी हैज टेकन
0: दैट. अगेन डिपेंड्स ऑन द पर्सन. ऋचा चड्ढा मे बी हैड दैट रिसोर्सेज अराउंड देम और मीडिया पीपल अराउंड देम हु वर देयर टू एडुकेट देम कि ये पीआर टैक्टिक्स है या दे आर जस्ट रैंडम बुलीज. बट नॉट एवरीवन इज इक्विप्ड विद दैट काइंड ऑफ सपोर्ट अराउंड देम. मे बी समवन इज सिटिंग इन सम रूरल एरिया बिकॉज नाउ इंटरनेट इज एवरीवेयर, स्क्रीन टच लाइक गुड क्वालिटी मोबाइल फोन इज एवरीवेयर. सो दे आर सिंपली प्रेजेंटिंग एवरीथिंग एंड दे डू नॉट नो दैट दीज आर सिंपली चैटबॉट्स हु आर डूइंग थिंग्स लाइक ओनली टू बुली समवन. सो दे डोंट अंडरस्टैंड एंड वहां पे उनको अगेन डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन एंड द काइंड ऑफ सपोर्ट दैट दे हैव देयर ओन कोपिंग मैकेनिज्म हाउ दे डील विद सिचुएशंस लाइक दिस.
2: With this related to one thing, I want to share one small experience. When we were doing, so Ismita and me, we were in same degree college. Yes. We did our same bachelor's together in psychology and we had this one professor. During our lectures, she was explaining something and this particular one thing that she mentioned that time, which influenced me and that I still use it. And I feel like if you are surrounded by such kind of people and you have such kind of awareness, it can help you to, you know, personally. And it was that she told me, never give a remote of your life to someone else to make you feel a certain way. And that I still use, that why will I let anyone else make me feel upset or happy or whatever I'm feeling right now. I have the control of myself right now. Whatever I'm feeling, whatever I'm saying, whatever I'm thinking, I have the control over my body, my thoughts and everything. I am not going to let anyone else make me or affect me about anything. Talking about this Instagram post, if someone is texting me, if I have that strong mindset, depends from person to person. If I have that strong mindset, it will not affect me. But if someone, if there's someone jinko ye choti choti baaton ka bahut farak padta hai, bahut bura lagta hai ki wo kya bolega, ye kya bolegi, उसने मेरे बारे में क्या सोचा, मैंने ये पोस्ट डाला तो क्या सबको अच्छा लगेगा, और उस पर अगर कोई कमेंट करे ऐसे नेगेटिव, तो उस इंसान को बहुत फर्क पड़ेगा. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि यू नीड टू हैव लाइक लिटिल दैट काइंड ऑफ सराउंडिंग, लिटिल अवेयरनेस, लिटिल स्ट्रांग माइंडसेट टू यू नो हैव दैट काइंड ऑफ एनर्जी कि हाँ ठीक है, अब कोई कुछ भी बोले मुझे इस चीज का फर्क नहीं पड़ेगा, आई एम गोइंग टू डू माई बेस्ट इन लाइफ.
0: Thank you for sharing that, Anjali. Actually, that is making me feel so grateful that we came from a background जहाँ पे हमारे आसपास लोग थे to remind us कि see that help is available. Yeah, you can take care of these things. That's a privilege that still India में बहुत सारे लोगों के पास नहीं है. That the privilege of having people like our professors who are there to tell you that, hey, I'm here to support you. Instead, like, again, मैंने जैसे कहा कि काफ़ी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो स्कूल को भी काम करना है, टीचर्स को भी आई फील की ट्रेनिंग लेनी चाहिए कि तुम कैसे हम कैसे एक माहौल क्रिएट कर पाए जहाँ पे बच्चा को ये ना फील हो क्लासरूम में आके कि मैं तो फेलियर ही हूँ. क्लास में जब रह के फेलियर फील हो रहा है, घर पर रह के फेलियर फील हो रहा है, तो इट इज़ इम्पोर्टेंट कि हम सिर्फ बच्चों के साथ, हम एक्टिवली सच में सब जगह ट्रेनिंग कर ही रहे हैं और बच्चे एक्टिवली कंज्यूम कर ही रहे हैं कॉन्टेंट अराउंड मेंटल हेल्थ, बट वी नीड टू वर्क विद अडल्ट एज वेल, विद टीचर्स, विद पेरेंट्स, जहाँ पे वी ऑल्सो ट्रेन देम कि कैसे हम वो क्रिएट कर पाए सिचुएशन, बिकॉज उनकी ट्रेनिंग भी इसलिए जरूरी है कि उन्होंने कभी वो एक्सपीरियंस नहीं किया है. अनफॉर्चुनेटली उनके पास वो रिसोर्सेज नहीं थे, तो इट इज इम्पोर्टेंट दैट वी गो अहेड एंड गिव देम दैट. नाउ दिस विल अगेन मोटिवेट मी टू स्टार्ट पोस्टिंग ऑनलाइन. थोड़े टाइम पहले मैं बात कर रही थी कि हो नहीं पाता है मुझसे कैमरे के सामने पोस्ट नहीं कर पाती हूँ या टाइम नहीं मिलता है, बट दिस इज वन ऑफ द रीजन कि हम मीडिया को जितना क्रिटिसाइज कर रहे हैं, मीडिया में राइट रिप्रेजेंटेशन करने का काम भी फिर कौन करेगा. इट इज अप टू पीपल लाइक अस हु हैव राइट नॉलेज.
2: One last question.
1: Yeah.
2: So, being a professional, what is something that you want to share out there? Anything that it can be personal or anything that everyone should know that anything about suicide prevention.
1: And also adding to that question, I would add ki parents is pe kaise kaam kar sakte mainly because bachcha parents ke saath rehta hai, wo bond create karna bahut important hai. Teachers rehte hai kuch ghanton ke liye hote hai, even that is important, but at the same time I feel, my personal opinion, that parents should actually be educated about the mental health.
0: Yes. Yes. पहले तो parents को accept करनी पड़ेगी चीज़ें कि real problems हैं, और काफ़ी problems ऐसी है जो बच्चा आपके साथ comfortable नहीं हो पा रहा है जो बोलने में, which is okay. We need to accept it कि आपके साथ comfortable नहीं है. As a parent ये आपकी responsibility है कि आप अपने बच्चे को ये बोलो कि नो मैटर वॉट आई एम योर फॉर यू. फिर अगर बच्चा, अगर आप ये कॉन्स्टेंटली रिमाइंडर दे रहे हो बच्चे को, तो हो सकता है कि वो पर्सनल ज़्यादा चीज़ें या डे टू डे चीज़ें आके ना भी शेयर करे, लेकिन अगर कोई एक्सट्रीम सिचुएशन होगा जहाँ पे बच्चा जेन्युइनली नीड्स हेल्प, उसको उस टाइम पे याद आएगा कि माय पेरेंट्स सेड टोल्ड मी दैट नो मैटर व्हाट आई एम देयर विथ यू. सो दिस कॉन्स्टेंट रिमाइंडर शुड बी देयर. एंड सिर्फ बोलना इम्पॉर्टेंट नहीं है, अगर आप चाहते हो कि आपका बच्चा आके आपके साथ कम्युनिकेट करे, इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि आप भी कम्युनिकेट करो. मैंने पहले मॉडलिंग के बारे में बोला था कि बच्चे को एक्सप्रेस करना नहीं आ रहा है क्योंकि उसने कभी देखा नहीं है किसी बड़े को उसके बारे में बात करते हुए. तो आप भी आके अपने, अगर आप अपने दिन के बारे में शेयर करो, अगर ऐसा है कि कुछ डिफिकल्ट चीज़ हुई है या कुछ अनकंफर्टेबल चीज़ें हैं जो आप बोलने में थोड़ा आपको अनकंफर्टेबल लग रहा है बच्चे के साथ, फॉर एग्जाम्पल टॉकिंग अबाउट पीरियड्स, आप वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं कि आपको काफ़ी अनकंफर्टेबल लग रहा है पीरियड्स के बारे में बात करके. एज अ फादर और अ डॉटर या एज अ मदर और अ डॉटर फॉर एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ विस्परिंग, मेक अ क्रिएट एन एनवायरमेंट जहाँ पे आप ओपनली उसके बारे में बात कर रहे हो. इससे क्या होगा, अगर आप डिस्कम्फर्ट के साथ भी बात करोगे ना, तो बच्चा विल पिकअप कि मेरे पेरेंट्स ने इतने डिस्कम्फर्ट के बाद भी, इतना हिचकिचाने के बाद भी ट्रस्ट किया और ये डिस्कशन उन्होंने किया मेरे साथ, तो मैं भी फिर एज अ चाइल्ड सीखूंगी कि मुझे भी कितना मुश्किल लग रहा है, बट आई कैन ट्रस्ट देम एंड आई कैन ट्राई. सो दैट इज वन. एंड सेकेंड, फॉर लाइक टू आंसर योर क्वेश्चन कि सुसाइड प्रिवेंशन के लिए एज अ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल मुझे क्या बोलना है, कि अगर मैं अभी बोलूँ कि यू आर नॉट अलोन, ये काफ़ी ज़्यादा आयरनी हो जाएगी बिकॉज यू जेन्युइनली आर फीलिंग अलोन. बट व्हाट आई वांट टू टेल यू इज, जो आप अभी एक्सपीरियंस कर रहे हो पेन, वो आपको कमज़ोर नहीं बना रहा है. दैट डज नॉट मीन कि आप कमज़ोर व्यक्ति हो क्योंकि आप वो फील कर रहे हो. नो, द रियलिटी इज कि आपके आसपास जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है, तो वो पेन के साथ कोप करने के लिए शायद इनफ रिसोर्सेज आपको नहीं दिख रहा है. सिर्फ ये एक ही तरीका आपको दिख रहा है, दैट इज़ टू एंड योर लाइफ. बट ट्रस्ट मी, रिसोर्सेज है, वी डोंट नीड टू आंसर एवरी थिंग ऑल टुगेदर. हमको सब चीज़ का आज ही आंसर नहीं चाहिए. ये एक पॉडकास्ट इज नॉट वन स्टॉप सोल्यूशन कि इसके बाद से सब ठीक हो जाएगा. नहीं, वी नीड जस्ट वन मोर नाइट, वन मोर डे, जहाँ पे वी टेक स्मॉल स्टेप्स एंड दिस will help us look at the resources that is available to us. So the first thing, if I would want my audience or anyone who is having suicidal ideation, is just to take one step at a time and talk to someone. Talk to anyone you feel comfortable with, your class teacher, your counselor, your friend, या any trusted adult that you have around you. And if वो भी नहीं आपको लग रहा है कि कोई नहीं समझ पाएगा, then I've also mentioned few helpline numbers that you can reach out to. जैसे टेलीमानस या आई कॉल, तो आप इन पे भी रीच आउट कर सकते हो. अगर आप डिस्क्रिप्शन पे, इफ यू कैन मेंशन दीज नंबर्स, दैट वुड बी रियली हेल्पफुल.
1: सो दैट वाज वेरी इंसाइटफुल कंटेंट, एंड आई थिंक इस कंटेंट से लेकर काफी बच्चों को हेल्प होगी, काफी अडल्ट लोगों को भी हेल्प होगी, एंड ऑल्सो आई वुड हाईलाइट कि पेरेंट्स को भी हेल्प होगी टू अंडरस्टैंड द चाइल्ड and understand their mental health. And बाकी जो भी सुन रहा है, मेंटल हेल्थ कितना इम्पोर्टेंट है ये आपको पता चल जाएगा इस एपिसोड से. सो यू आर लिसनिंग आचार्य 90 FM योर ओन रेडियो. हमारे साथ थे मिस स्मिता मिश्रा एंड आंचल सिंह. साइनिंग ऑफ टुडे. थैंक यू सो मच.

0: श्री से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए।
1: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, let's go.

0: नमस्ते दर्शकों, आज हम सेलिब्रिटी शो में हमने आमंत्रित किया है नीलम गोयल जी को। नीलम जी नमस्ते।
1: नमस्ते,
0: आपका स्टूडियो में भी स्वागत है और हमारे आचार्य 90 FM पे स्वागत है और सेलिब्रिटी शो में भी आपका स्वागत है। नीलम जी गोयल एक स्नातक, आगरा यूनिवर्सिटी की स्नातक रही है और कुकिंग क्लासेस, लिखना पढ़ना, समाज सेवा, सोशल वर्क इन स्लम एरिया इनका कार्य रहा है। काउंसलिंग फॉर कैंसर पेशेंट, लोगों से मिलना और मुक्त छंद की कविताएं लिखती है, कृष्ण के भजन गाती है और आखर मुक्ता साहित्यिक पत्रिका में स्वरचित कविताओं का उनका गीत का छपना हुआ है। कहे अनके शब्दों का कैनवास इस कहानी संग्रह में स्वयं रचित कहानी मुट्ठी भर सपने का भी छपना हुआ है। साहित्यिक प्रतियोगिताओं में रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित 21 सर्वश्रेष्ठ कहानियां पत्रिका को उन्होंने जीता है और पतंजलि योग पीठ से प्रमाणित योग शिक्षिका भी रह चुकी है। बहुत सारे ये सब आप वही पूछना चाहूंगी, इतना सारा आप व्यस्त रहती है, पूरा 24 घंटे भी आपको कम पढ़ते रहेंगे, तो ये सब आप मैनेज कैसे करती है वो शुरू में करना?
1: बस मेरे को ना कुछ है कि मुझे कुछ ना कुछ करते रहना है
0: जी।
1: और इन सब चीजों से मैं बचपन से थोड़ी प्रेरित रही हूँ, क्रिएटिव मैं शुरू से ही थी
0: जी।
1: और ये जो पढ़ने का शौक मुझे लगा वो मेरी मदर से लगा।
0: अच्छा,
1: क्योंकि वो उस समय भी ना ये कौन कौन सी पुस्तिकाएं होती थी, धर्मयोग,
0: हाँ,
1: और ये कादम्बिनी, इस तरह की मतलब हाई लेवल की बुक्स पढ़ती थी। वो 12th पास थी उस समय की,
0: हाँ,
1: लेकिन कोई जॉब नहीं किया था,
0: हाँ,
1: तो बस मुझे वो उनको पढ़ते देखती थी और धीरे धीरे धीरे धीरे मेरे को रीडिंग करने की जो मिल जाता था, धर्मयोग, कोई भी पत्रिका, अखबार, मतलब जो भी मिल गया, हाँ, वो मुझे उसको पढ़ना है।
0: वाह, वेरी नाइस। आपके साहित्य के बारे में हमें बहुत कुछ जानना है, लेकिन आप कविताएं, जैसे हमारी पहली मुलाकात में आप मैं जान गई थी, आप बहुत कथा सुंदर से प्रस्तुत करते हैं, कविताएं भी लिखती हैं, तो जाहिर सी बात है अभी आपने माँ का जिक्र किया तो हमारी सबकी शुरुआत तो माँ से ही होती है, तो माँ के ऊपर आपने जो कविता लिखी है वो हमें सुनाइए प्लीज।
1: सबका धन्यवाद, नमस्ते। माँ केवल एक शब्द ही नहीं है, माँ बल्कि असीम शक्ति, ममता और आस्था का स्वरूप है। जब जीवन में अंधेरा छा जाता है तो माँ का नाम ही एक दीपक बनकर हमारे जीवन में उजाला करता है और रास्ता दिखाता है। आज उसी जगत जननी शक्ति स्वरूपा माँ के चरणों में, श्री चरणों में अपनी भावनाओं का ये छोटा सा भजन अर्पित करने जा रही हूँ, श्रद्धा भक्ति के साथ आप सब जुड़िए
0: जी।
1: पधारो माँ पूजा को, पधारो

0: क्या बात है, वेरी नाइस। जय माता दी। मेरा मन तो गंगा मैया के यहाँ पहुंच गया वाराणसी में, क्योंकि कितनी सुंदर, मतलब हम वो गंगा मैया को माँ कहते, पुकार के बुलाते हैं, और जो गंगा आरती का जो विलोभनीय दृश्य हमें अभी आपकी ये कविता में, ये पद में साकार हुआ, वेरी नाइस, वेरी मतलब वेरी टचिंग। अभी शुरू करते हैं कि आपका जो साहित्य प्रवास है, आपने जैसे बोला कि माँ बहुत बुक्स घर में रहते थे, तो आप पढ़ते गए मतलब जो शैक्षणिक, जो भी हमारा स्कूल का पढ़ना रहता है वो अलग, और आपको हिंदी में ज्यादा रुचि है, तो आपने बीए इन हिंदी भी वैसे किया है, तो हिंदी के प्रति लगाव या फिर आस्था, आपको कौन से लेखक पसंद है हिंदी के, उसके बारे में और क्यों पसंद है?
1: मेरे को मुंशी प्रेमचंद की कहानियाँ बहुत पसंद हैं
0: जी,
1: और रविन्द्रनाथ टैगोर की कहानियाँ बहुत पसंद, क्योंकि ये ना हमारे आसपास जो दिखता है उन सब से जुड़ी हुई है, सामाजिक समस्याएं, स्त्री की समस्याएं, और समाज में जितनी भी व्यभिचार या जितना उत्पीड़न होता है, तो उन सबके ऊपर जो कहानियाँ लिखी है तो मुझे वो बहुत टचिंग
0: करती है,
1: भावपूर्ण होती है, और मेरे को ना कहीं गहरे तक, ऐसे ही ना क्या हुआ कभी मैंने कहीं किसी से कुछ सुना, मेरी बड़ी दीदी है तो वो भी साहित्यिक में बहुत
0: अच्छा रुचि
1: पहुंची हुई है, बहुत ज्यादा। हाँ
0: अच्छा,
1: तो फिर धीरे धीरे क्या हुआ मेरे को उसमें, मैं लिखने लगी, लिखते लिखते क्या हुआ, जुहू में रहते थे हम लोग, तो वहाँ कृष्ण मंदिर था
0: जी,
1: वॉकिंग डिस्टेंस पर, तो मैं सडनली मैंने सोच लिया था कि मैं वहाँ जाके पहले दर्शन करके फिर ही नाश्ता किया करूंगी। वहाँ जाके जब मैं पिंड ऑफ साइलेंस होकर शांति के साथ जब बैठती थी ना, तो बस भगवान का चेहरा देखती थी, तो उस चेहरे को देखकर मेरे को अभी भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं, तो मैं जब उनको देखती थी ना तो मेरे को रोना आता था।
0: अच्छा,
1: और रोते रोते धीरे धीरे धीरे धीरे वो भाव उत्पन्न होने लगा।
0: हाँ,
1: और पता लगा मैं तो वहाँ बैठे बैठे मोबाइल में ही उस समय जो आता था उस समय लिखती थी।
0: अच्छा,
1: फिर घर आकर जब उनको सुनाती थी तो सबको बहुत अच्छा लगता था, मुझे भी लगता था ये कैसे लिखा गया।
0: हाँ,
1: मतलब मुझे ऐसा लगता था जैसे किसी और ने लिखा है
0: जी।
1: फिर वो लिखने लगी, फिर धीरे धीरे मैं फिर उस स्पिरिचुअल ग्रुप से जुड़ी।
0: अच्छा,
1: फेसबुक पर अब उसमें जो था मैं अपनी ये रचनाएं डालने लगी, तो मोस्टली मैं तब कृष्णा के लिए ही लिखती थी।
0: अच्छा,
1: लिखते लिखते फिर धीरे धीरे कुछ और भी भाव होने लगा, जैसे मैं कभी गार्डन में गई तो दो तीन लेडीज जैसे बैठी हुई थी वहाँ, तो वो बहुत परेशान, उन्होंने अपनी कुछ स्टोरी बताई।
0: हाँ,
1: तो मतलब मैं भी सेंट्री हो जाती थी कुछ, मैं भी ना ऐसी हूँ कि जल्दी मेरे भाव को छू जाती है किसी भी बात में, तो उन्होंने जब वो सुनाती थी तो मैं, मुझे लगता था कि मुझे इनके लिए कुछ लिखना चाहिए, तो मैं उसी के ऊपर अपने शब्दों में स्टोरी लिखती थी, और वो जो स्टोरी सबको सुनाती थी ना तो सबको अच्छी लगती थी।
0: हाँ,
1: बस मेरा इंटरेस्ट वो धीरे धीरे बढ़ने लगा, फिर मैं साहित्यिक ग्रुप से जुड़ी, उसमें अपना आंगना करके मेरा साहित्यिक ग्रुप है।
0: अच्छा,
1: उसमें हम लोग सीखने सिखाने का रखते हैं, जैसे कि दोहा है, मैंने बहुत सारी चीजें सीखी उसमें, फिर जैसे दोहा है, छंद है, मुक्तक है, कविता तो मैं छंद मुक्ति लिखती हूँ।
0: अच्छा,
1: बस इस तरह से मेरा धीरे धीरे लिखने का शौक बढ़ता चला गया
0: जी। आपसे ऐसी बातचीत हम कंटिन्यू करेंगे, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, आप सुनते रहिएगा आचार्य 90 FM, और आज हमारे सेलिब्रिटी शो में हमारे साथ जुड़ी है नीलम गोयल जी, जो हिंदी की साहित्यिक है, हिंदी की स्नातक है, और आप सुनते रहिएगा आचार्य 90 FM ओनली।

0: ब्रेक के बाद आप सभी से जुड़ रहे हैं सेलिब्रिटी शो में। हमारे साथ आज के सेलिब्रिटी है नीलम गोयल मैडम, और जो हमें बहुत कुछ आज कथाएं सुनवाने वाली है, कविताएं सुनवाने वाली है। मैडम आप मतलब हम सब लेडीज हैं, तो हमारी हमें डेली परेशानियां होती है, घर का भी देखना पड़ता है और जो नौकरी व्यवसाय कर रहे हैं वो भी, वहां पे मतलब बच्चों का देखना, घर का देखना और ऑफिस का भी काम देखना, दोनों स्तर पर हम लोग काम करते हैं, लेकिन बेटियों को वो स्थान नहीं मिलता जो आज के समाज में मिलना चाहिए, उसकी जरूरत है। और उसके ऊपर जो आप मैंने आपकी सुनी है वो कविता मुझे बहुत पसंद है, तो मैं चाहती हूँ हमारे आचार्य 90 FM के दर्शकों को भी वो सुनवाए। तो जरूर आपने वो आप बेटी के दर्द दुख को समझती है और उसके बारे में आपने लिखा है, तो वो जरूर हमें सुनवाइए।
1: जी बिल्कुल, ये सच बात है कि हमारे समाज में आज भी बेटियां बहुत कुछ आगे कर रही हैं
0: जी,
1: लेकिन ना फिर भी कहीं ना कहीं उनको उनका दमन होता है
0: जी,
1: कहीं ना कहीं उनको रोका जाता है और वो अपनी इच्छाओं से हर कुछ नहीं कर पाती हैं
0: जी।
1: तो मैं यही कहना चाहूंगी कि बेटी केवल एक शब्द नहीं है,
0: हाँ।
1: ये एक एहसास है
0: वाह,
1: और एक ऐसा प्यारा रिश्ता है जो जन्म से पहले ही दिलों से जुड़ जाता है। आज मैं उसी अनमोल रिश्ते बेटी पर अपनी भावनाएं प्रस्तुत करती हूँ
0: जी।
1: बेटी ईश्वर की सबसे सुंदर रचना, जिसका जिसके हंसी से घर आंगन में बसंत उतर आता है।
0: क्या बात,
1: उसकी हंसी में ही संसार की रौनक बसती है और जिसकी आंखों में भविष्य के अनगिनत सपनों की किरणें झिलमिलाती हैं। वो केवल किसी घर की लाडली ही नहीं है केवल, बल्कि हर समाज की वो आत्मा है, हर संस्कृति की पहचान है। बेटी के रूप में ही संवेदना जन्म लेती है और ममता अपना अर्थ पाती है और भविष्य अपनी दिशा।
0: वाह क्या,
1: आज बेटी दिवस पर हमें ये स्मरण करना है कि बेटी का सम्मान केवल एक दिन का उत्सव नहीं है, बल्कि जीवन भर निभाया जाने वाला वो संस्कार है। हर बेटी को पढ़ने का, लिखने का, अपनी इच्छा से उड़ने का, स्वयं को पहचानने का अधिकार है
0: जी।
1: क्योंकि जब एक बेटी आगे बढ़ती है तो एक पूरा युग प्रकाशमान होता है
0: जी। बिल्कुल,
1: आज की बेटी हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है, विज्ञान में, साहित्य में, खेल में, राजनीति में, पाक कला में, मतलब कोई ऐसा स्थान नहीं है कि जहाँ वो पहुँची नहीं है
0: जी।
1: हर जगह उसने अपनी पहचान बनाई है, उसकी उड़ान आसमानों को छू रही है, परंतु विडम्बना ये है कि कुछ स्थानों पर आज भी बेटी के साथ भेदभाव, अत्याचार और शोषण का सामना उसको करना ही पड़ता है
0: जी।
1: ये सब हमें झकझोरता है, मन को परेशान कर देता है और सोचने के लिए विवश करता है और हमें सजग भी करता है
0: जी।
1: कि कोई भी बेटी अब भय और अन्याय की छाया में ना रहे, बेटी का सम्मान, सुरक्षा, उसकी देखभाल, स्वावलंबन और हमारा नैतिक, सामाजिक, मानवीय दायित्व तो है कि बेटी आस्था भी है, प्रेरणा भी है, उससे ही धरती की मुस्कान जीवित है
0: जी।
1: इसलिए बेटी केवल उत्सव नहीं, एक चेतना है, एक संकल्प है। बेटी पर कुछ पंक्तियां लिखने का प्रयास किया है जो आपसे साझा करती हूँ। नन्ही सी हंसी में उजियारा बसे
0: जी,
1: हर सपने में उसका सितारा बसे, न रोको उड़ाने, न रोको उड़ाने ये फलक छूले, न रोको उड़ाने ये फलक छूले, हर बेटी में ही तो सारा जहां बसे।
0: वाह,
1: बेटी मुस्कान है, बेटी अरमान है, जीवन की हर राह में वरदान है। आओ प्रण करें आज हम सभी, हर बालिका का सम्मान हमारा मान है।
0: वाह यस वेरी नाइस। अभी ये कविता है तो हम सुन रहे हैं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन आप कथाएं भी लिखती हैं, तो आपकी कथा कहाँ और कथा और कविता कहाँ कहाँ प्रस्तुत करती हैं?
1: कथाएं और कविता ये हमारा एक साहित्यिक ग्रुप है, उसमें हाँ, भेजती हूँ, कुछ किताबों में भी छपती हैं। और मैं बहुत पहले जब मैं शादी होकर ही आई थी
0: हाँ,
1: तो वहाँ हम लोग होली का
0: त्योहार
1: मनाते थे
0: जी।
1: होली के बाद हमारे यहाँ 8 दिन तक ये लेडीज को बुलाना और
0: अच्छा,
1: खिलाना पिलाना उस सब मनाते थे, जिसको जो रुचि होती थी वो आपस में
0: हाँ,
1: शेयर करता था
0: हाँ।
1: तो इसी तरह से एक बार हमने बुलाया हुआ था सबको
0: हाँ,
1: और मैंने उन्हीं लेडीज के ऊपर एक कुछ छोटी सी कहानी
0: अच्छा
1: सुनाई और वो मेरी फिर अमर उजाला अखबार में
0: क्या बात
1: निकली
0: है? हाँ।
1: निकली तो फिर लोगों को पता लगा कि आप लिखती भी हो। क्या होता है ना, हम लिखते तो हैं
0: हाँ।
1: लेकिन हमारी जो हमें उत्साह जो मिलता है वो औरों से मिलता है
0: जी,
1: जो पढ़ते हैं
0: हाँ।
1: जब हमारा उत्साह वर्धन होता है ना तो हमारा और इच्छा करती है हाँ शायद हमने कुछ अच्छा लिखा
0: है
1: कुछ और इससे भी अच्छा करके दे। तो बस इसी तरह से धीरे धीरे धीरे धीरे मेरा लिखने का शौक बना। फिर और मैं जिस परिवार में से दूसरे परिवार में गई थी तो वहाँ का माहौल बिल्कुल अपोजिट था। तो वहाँ क्या होता था मतलब बहुत सिंपल बहुत अच्छे लोग हैं हमारे
0: हाँ।
1: वो भी लेकिन जो रहन सहन और जो ख्याल थे वो थोड़े अलग थे
0: जी।
1: मतलब इतना डिफरेंस था कि मेरे को वो लोग विलायती बहू कहने लगे थे।
0: अच्छा।
1: पर एक समय ऐसा आया कि जब उन्होंने मेरे विचारों को सुनते थे
0: हाँ।
1: मेरी सेवा को देखते थे तो धीरे धीरे मेरी ये उन्होंने लिखी हुई चीजें भी पढ़ते थे तो उनको उन्होंने फिर मतलब इतना मान सम्मान दिया कि जो मेरे बड़े लोग थे ना
0: हाँ।
1: वो भी मेरे को ऐसे इनवाइट करते थे। मैं आपको वो किस्सों में बता नहीं सकती कि वो सबके बीच में मेरे को किस तरह से खड़ा करके फिर मेरा बताते थे लोगों को।
0: अच्छा अच्छा।
1: तो इस तरह से मेरा उत्साह वर्धन बहुत हुआ
0: हाँ।
1: फिर मैंने साहित्यिक ग्रुप से जुड़ी तो उसमें लिखना शुरू किया
0: जी।
1: तो एक बार मैंने अपनी फ्रेंड के ऊपर संस्मरण लिखा। जब संस्मरण लिखा तो उन लोगों को बहुत अच्छा लगा और बोले ये तो मतलब बिल्कुल ऐसा लग रहा है मैं पढ़ रही हूँ तो जैसे मैं सामने रेखा चित्र कर दिया हो ऐसा लग रहा है। तो उससे मैं बहुत प्रेरित हुई उत्साह वर्धन
0: हाँ।
1: हुआ। फिर उन्होंने एक बोले कि आपको कहानियां लिखनी है
0: जी।
1: मैंने कहा मैंने ऐसी कहानियां नहीं लिखी है
0: हाँ।
1: तो बोलते हैं कि नहीं नहीं आप कोशिश कीजिए आप लिखोगी आप लिख सकते हो
0: जी।
1: फिर मैंने दो कहानियां लिखी जिसमें से एक मेरी पास हुई और उन्होंने इस कहे अनकहे
0: हाँ।
1: शब्दों के कैनवास में
0: अच्छा,
1: छपी
0: हाँ।
1: इससे पहले क्या था ना छोटी छोटी बुक्स में छोटी छोटी उसमें निकल रही
0: हाँ,
1: थी
0: हाँ।
1: एक जैसे ये है
0: आखर लिखता हाँ।
1: इसमें ये वर्ष में तीन निकलती थी
0: अच्छा।
1: तो उसमें एक बार एक कविता निकली एक बार वो मेरी कहानी निकली
0: अच्छा।
1: बस उससे मैं प्रेरित हुई और फिर मैंने लिखना शुरू किया
0: जी। अभी आप सामाजिक कार्य से भी जुड़े हैं उसके बारे में भी जानना चाहेंगे कि आप कैंसर पेशेंट से ज्यादा मतलब उनसे ज्यादा मिलते हैं तो वो सामाजिक कार्य की रुचि आपने कैसे?
1: वो क्या था मेरे अंदर ना ये शुरू से सेवा का भाव था।
0: अच्छा।
1: जब मैंने ग्रेजुएशन करके चुकी तो एक महीने की छुट्टी थी
0: जी
1: और शायद मेरी को देखने वाले भी कुछ लोग आने वाले थे घर पर। तो उस बीच मैंने घर में कहा कि अभी तो मुझे शादी नहीं करनी है मेरे को जो है
0: पढ़ना
1: लॉ करना है।
0: अच्छा।
1: मुझे आगे लॉ करना है
0: हाँ।
1: तो सब लोग बोले कि हाँ हाँ हो गया लॉ सब हो गया
0: अच्छा।
1: बस अब क्या और क्या करना है? मैंने कहा मेरे को अच्छा स्कूल में टीचिंग करनी है।
0: अच्छा।
1: तो मैंने कहा ठीक है मैंने कहा विदाउट पे करनी है तो
0: हाँ।
1: पास में एक स्कूल था छोटा सा
0: हाँ।
1: और उसमें मैं जाने लगी वन
0: अच्छा।
1: मंथ मैंने पढ़ाया
0: हाँ।
1: अब उसमें जो था एक बच्चा भी था तो वो धीरे धीरे मुझसे बहुत अटैच हो गया और बोला दीदी मैं आपसे और भी पढ़ना चाहूँ। मैंने कहा ठीक है तुम घर आ जाए करो
0: अच्छा।
1: पढ़ना हाँ। वो घर आने लगा मैंने उसको पढ़ाया
0: हाँ।
1: उसका नंबर्स बहुत अच्छे आए कुछ नहीं वो हो गया मेरी शादी भी हो गई 25 साल बाद मेरे पास कॉल आती है उसकी
0: अच्छा
1: कि हेलो दीदी बोल रही है। मैंने कहा आप कौन बोल रहे हैं? मैं राजू बोल रहा हूँ। मैंने कौन राजू?
0: हाँ।
1: अरे दीदी आप भूल गई मैं वही राजू हूँ जिसको आपने घर में बैठ के पढ़ाती थी यार।
0: अच्छा।
1: आज मैं इस पोस्ट पर हूँ आया है नौकरी कर रहा हूँ बेंगलोर में हूँ।
0: क्या बात है
1: मतलब मैं वो पड़ी थी उस समय खुशी की वजह से
0: हाँ।
1: तो ये मेरे को ना शुरू से था
0: हाँ।
1: और इसके बाद फिर मेरी जब शादी हो गई तो एक पास में एक दूध जिनके यहाँ से आता था
0: हाँ।
1: जैन मंदिर के बराबर में उनकी दूध का गाय वगैरह रखते थे
0: हाँ।
1: तो वो जब लेते थे उसे
0: हाँ।
1: तो उसके एक भाई की ना डेथ हो गई थी उसके बच्चे थे तो वो परेशान थे और मुझे लगता था शायद अभी इनके घर वाले इन बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे तो मैंने उनको बोला मेरे बच्चे स्कूल चले जाते हैं मेरे दो बच्चे हो चुके थे तब तक कि वो चले जाते हैं तुम इस बीच आ जाए करो मैं काम निपटा के 11 बजे करी तुमको टाइम दूंगी।
0: अच्छा।
1: उसको इतना अच्छा पढ़ना आ गया
0: हाँ।
1: कि उसने 12th पास किया।
0: क्या बात है।
1: और मतलब वो अपनी लाइफ में
0: सेट
1: शादीवादी हो गई
0: हाँ।
1: सेट हो गई
0: जी।
1: तो

0: शुरू से कुछ आदत थी, अभी हाँ जब इन्होंने VRS लिया बैंक से, स्टेट बैंक में मेरे हस्बैंड
1: काम करते थे,
0: हाँ तो जब उन्होंने VRS लिया तो सब लोग बोले कि अरे इतने वो ले रहे हैं और आप परेशान हो जाओगी घर में रह के क्या करोगी, ये सारे दिन चाय बनवाएंगे और कॉफी बनवाएंगे, सारे दिन तुम बिजी रहोगी परेशान हो। मैंने कब जो होगा, मैंने उनको समझा लिया अगर वो इसमें खुश है VRS लेने में तो मुझे कोई हर्ज नहीं है
1: जी।
0: तो उन्होंने जब लिया तो यही लगा कि अब हम क्या करें, क्योंकि टाइम एक्सेस में रहता था, सुबह सुबह टिफिन बना के नहीं देना और
1: बराबर,
0: बच्चे भी बड़े हो गए, अपनी नौकरी में चले गए थे बच्चे। तो ये जो राम मंदिर का ये जब हुआ तो प्रसाद देने कुछ लोग घर पर आए, जब घर पर आए तो मैं हमने उनकी आरती उतारी,
1: अच्छा
0: आरती उतारी घर पे बिठा के उनको पानी वानी देने के लिए कहा, तो वो बहुत खुश हुए, RSS के लोग थे
1: जी।
0: जब वो उनसे कहा तो उन्होंने कहा कि कुछ दिन बाद उनका कॉल आया कि ऐसे ऐसे आप लोग उससे जुड़िए। मैंने कहा ठीक है जुड़ेंगे, आप लोग पहले घर पर आओ, ये हमको पता था कि RSS के लोगों को घर पे बुलाना चाहिए
1: जी।
0: तो वो लोग धीरे धीरे हमारे यहाँ आने लगे, कभी लंच पर कभी ब्रेकफास्ट पर
1: जी।
0: तो उन्होंने कहा, मैंने ऐसे बोला, मैंने कहा मेरे को ना कुछ करने का मन करता है अभी, मैं ऐसा लगता है मैं अभी कुछ कर नहीं रही, बेकार हूँ। तो वो बोले ठीक है आप ऐसे ऐसे करके आइए हनुमान टेकड़ी पर साइन कोलीबारा में, वहाँ कैंसर पेशेंट्स का है और आप आइए, वहाँ आइए आपको अच्छा लगेगा, फिर आपको जिम्मेदारी देंगे।
1: ठीक है
0: वहाँ गए, वहाँ गए तो क्या हुआ, वहाँ पेशेंट्स थे, मैं सबसे मिलने जाती थी, फिर उन्होंने एक रूम का मेरे को चार्ज दे दिया,
1: अच्छा
0: कि आप इन लोगों से कांटेक्ट में रहिए, देखिए इन पे क्या चीज है, इनको मेंटली सपोर्ट कीजिए। तो हम उनसे जाके कभी कभी उनको भजन सुनाती थी, कभी उनसे बात करती थी, क्योंकि क्या
1: बात करने से भी वो खुल जाते हैं, क्योंकि क्या है ना इमोशनली अच्छे रहते हैं।
0: क्या है ना पेशेंट्स जो है मुझे लगता है कि वो
1: डिप्रेशन
0: से नहीं जाता, वो सोच कर चला जाता
1: है जी।
0: फिर हम लोग की एनकोलॉजी को लेकर क्लासेस हुई, ट्रेनिंग हुई हमारी, तीन तीन दिन की क्लास लगती थी कि उनको साथ हम लोग को कैसे बिहेव करना है, कैसे नहीं करना है, क्या उनके सामने नहीं कहना है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। कुछ दिन तो क्या हुआ, जब हम घर आते थे ना तो मैं सो नहीं पाती थी,
1: उनका दुख दर्द देख
0: सो नहीं पाती थी। तो ये भी समझाते थे, उन लोगों ने समझाया देखो ऐसे सेवा नहीं हो सकती है, आपको यही छोड़कर जाना होगा, यही छोड़कर जाना होगा जो भी देखा है
1: जी।
0: उनके साथ आप अच्छा एटीट्यूड कीजिए, अच्छा व्यवहार कीजिए, लेकिन घर जाकर नहीं लेना है, फिर आप पढ़ जाओगे क्या फायदा है।
1: बराबर।
0: फिर बस वो धीरे धीरे वहाँ पता लगा हमको, स्लम एरिया में स्कूल्स खोल रखे थे उन लोगों ने, फ्री ये शाला फ्री चला रखी थी स्लम एरिया के बच्चों के लिए। तो वहाँ उन लोगों ने, मैं गई देखने, कभी मैं स्लम एरिया में नहीं गई थी,
1: राइट,
0: लेकिन मतलब मेरे को दिक्कत भी लगती थी, मुंह बंद करके जाती थी कई बार, और कई बार बहुत कीचड़ नीचे भी होती थी, तो शूज पहन के साड़ी पहनना बंद कर दिया था, टाइट कपड़े पहनना शुरू कर दिया था, गिरे ना कहीं
1: जी।
0: और वो बिल्कुल ऐसी रेलिंग होती थी कि देखकर लगता था कैसे
1: कैसे रहते हैं
0: हम लोग, इतने बड़े बड़ों में रह के लगते हैं हमको ये परेशानी, हमको ये परेशानी, वो लोग कैसे रह रहे हैं। तो धीरे धीरे करके मतलब मैं पर्सनली उन लोगों से इतनी अटैच हो गई, उन लोगों ने फिर मेरे को निरीक्षण बना दिया,
1: अच्छा
0: 35 शालाओं का निरीक्षण था। तो जो हम लोगों को हम, मैं और मेरे हस्बैंड दोनों जाते थे, बस इसी तरह से धीरे धीरे करके
1: वो समाज कार्य बढ़ता गया आपका।
0: किशोरी वर्ग शुरू किया फिर हम लोगों ने, जैसे किशोरी बच्चों के लिए 8 वर्ष से और 12 वर्ष तक के बच्चों के लिए, लड़कियों के लिए, जैसा कि आजकल माहौल चल रहा है तो उनको सेव करना, उनको गाइड करना है,
1: राइट,
0: तो वो भी
1: करते हैं।
0: तो बस सब काम होते थे घर के भी, और बहुत एक्टिव रहती थी, ऐसा नहीं था कि कोई काम छोड़ के जा रही हूँ, का भी सारा काम होता था
1: बराबर,
0: और आके बस आराम से सोते थे, मतलब बहुत रिलैक्स होता था कि हमने हमारे कुछ तो किया, कुछ तो हुआ।
1: तो अभी अंत में आपकी एक सुंदर सी कविता वापस सुनते हैं और ये जो शो का अंत करते हैं, ठीक है?
0: ठीक जी, थैंक यू।
1: आप कौन सी कविता पढ़ना चाहोगे? जिंदगी के बारे में, अभी हम जिंदगी के बारे में इतने
0: जिंदगी
1: के बारे में सुनते हैं,
0: ये कर लेती छोटा सा है
1: जी,
0: चलेगा
1: या
0: जिंदगी है तो सब कुछ है, कहते हैं ना
1: जी
0: जिंदगी। इसके लिए मैंने कुछ लाइंस लिखी हैं, बहुत छोटी सी, शायद आपको पसंद आए
1: जी। बिल्कुल।
0: जिंदगी तेरे लिए मैं प्यार लाई हूँ, जिंदगी तेरे लिए मैं प्यार लाई हूँ, ये घड़ी ये धूप ये दिन ये रात कल भी आई थी
1: आज भी आई है
0: कल भी आई थी और आज भी आई है। किसी को ये सिंहासन देगी और किसी के लिए बेबसी देगी। ये सूरज जो सिर पे चढ़ा है शाम को पाँव में उतर जाएगा। इसी तरह ये सांस का राही क्या पता किस पाँव पर रुक जाएगा।
1: क्या बात।
0: इसी तरह ये सांस का राही क्या पता किस तरह किस पाँव पर रुक जाएगा। गीत गाओ स्नेह का संसार लाई हूँ, जिंदगी मैं तेरे लिए
1: प्यार लाई हूँ। क्या बात।
0: नई आशा नए सपने नए संकल्प मैं बुलंदी का सघन विस्तार लाई हूँ। मैं बुलंदी का सघन विस्तार लाई हूँ, मुस्कराओ मुस्कराओ आज मैं उपहार लाई हूँ, जिंदगी तेरे लिए
1: मैं प्यार लाई हूँ। क्या बात है। कितना पॉजिटिव अप्रोच है टुवर्ड्स लाइफ, मतलब जिंदगी के ऊपर अपने बहुत अच्छा अच्छे से लिखा है। और आज हमारे आचार्य 90FM से आप जुड़े हैं इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आप ऐसे ही लिखते रहिए, मिलते रहिए और हमें हमेशा कुछ ना कुछ देते रहिए। थैंक यू सो मच जी।

0: नमस्ते दर्शकों, आज हम सेलिब्रिटी शो में हमने आमंत्रित किया है नीलम गोयल जी को। नीलम जी नमस्ते।
1: नमस्ते,
0: आपका स्टूडियो में भी स्वागत है और हमारे आचार्य 90 FM पर स्वागत है और सेलिब्रिटी शो में भी आपका स्वागत है। नीलम जी गोयल एक स्नातक, आगरा यूनिवर्सिटी की स्नातक रही हैं और कुकिंग क्लासेस, लिखना पढ़ना, समाज सेवा, सोशल वर्क, इन स्लम एरिया इनका कार्य रहा है। काउंसलिंग फॉर कैंसर पेशेंट्स, लोगों से मिलना और मुक्त छंद की कविताएं लिखती है, कृष्ण के भजन गाती है और आखर मुक्ता साहित्यिक पत्रिका में स्वरचित कविताओं का उनका गीत का छपना हुआ है। कहे अनकहे शब्दों का कैनवास इस कहानी संग्रह में, स्वयं रचित कहानी मुट्ठी भर सपने का भी छपना हुआ है। साहित्यिक प्रतियोगिताओं में रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित 21 सर्वश्रेष्ठ कहानियां पत्रिका को उन्होंने जीता है और पतंजलि योग पीठ से प्रमाणित योग शिक्षिका भी रह चुकी है। बहुत सारे ये सब आप वही पूछना चाहूंगी, इतना सारा आप व्यस्त रहती है, पूरा 24 घंटे भी आपको कम पढ़ते रहेंगे, तो ये सब आप मैनेज कैसे करती है वो शुरू में ही करना?
1: बस मेरे को ना कुछ है कि मुझे कुछ ना कुछ करते रहना है
0: जी।
1: और इन सब चीजों से मैं बचपन से थोड़ी प्रेरित रही हूँ, क्रिएटिव मैं शुरू से ही थी
0: जी।
1: और ये जो पढ़ने का शौक मुझे लगा वो मेरी मदर से लगा।
0: अच्छा।
1: क्योंकि वो उस समय भी ना ये कौन कौन सी पुस्तिकाएं होती थी, धर्मयोग,
0: हाँ,
1: और ये कादम्बिनी, इस तरह की मतलब हाई लेवल की बुक्स पढ़ती थी। वो 12th पास थी उस समय की,
0: हाँ,
1: लेकिन कोई जॉब नहीं किया था,
0: हाँ,
1: तो बस मुझे वो उनको पढ़ते देखती थी और धीरे धीरे धीरे धीरे मेरे को रीडिंग करने की जो मिल जाता था, धर्मयोग, कोई भी पत्रिका, अखबार, मतलब जो भी मिल गया, हाँ, वो मुझे उसको पढ़ना है।
0: वाह, वेरी नाइस। आपके साहित्य के बारे में हमें बहुत कुछ जानना है, लेकिन आप कविताएं, जैसे हमारी पहली मुलाकात में आप मैं जान गई थी, आप बहुत कथा सुंदर से प्रस्तुत करते हैं, कविताएं भी लिखती हैं, तो जाहिर सी बात है अभी आपने माँ का जिक्र किया तो हमारी सबकी शुरुआत तो माँ से ही होती है, तो माँ के ऊपर आपने जो कविता लिखी है वो हमें सुनाइए प्लीज।
1: सबका धन्यवाद, नमस्ते। माँ केवल एक शब्द ही नहीं है, माँ बल्कि असीम शक्ति, ममता और आस्था का स्वरूप है। जब जीवन में अंधेरा छा जाता है तो माँ का नाम ही एक दीपक बनकर हमारे जीवन में उजाला करता है और रास्ता दिखाता है। आज उसी जगत जननी शक्ति स्वरूपा माँ के चरणों में, श्री चरणों में अपनी भावनाओं का ये छोटा सा भजन अर्पित करने जा रही हूँ, श्रद्धा भक्ति के साथ आप सब जुड़िए
0: जी।
1: पधारो माँ पूजा को, पधारो

0: क्या बात है, वेरी नाइस। जय माता दी। मेरा मन तो गंगा मैया के यहाँ पहुंच गया वाराणसी में, क्योंकि कितनी सुंदर, मतलब हम वो गंगा मैया को माँ कहते पुकार के बुलाते हैं, और जो गंगा आरती का जो विलोभनीय दृश्य हमें अभी आपकी ये कविता में ये पद में साकार हुआ, वेरी नाइस, वेरी मतलब वेरी टचिंग। अभी शुरू करते हैं कि आपका जो साहित्य प्रवास है, आपने जैसे बोला कि माँ बहुत बुक्स घर में रहते थे, तो आप पढ़ते गए मतलब जो शैक्षणिक जो भी हमारा स्कूल का पढ़ना रहता है वो अलग, और आपको हिंदी में ज्यादा रुचि है, तो आपने बीए इन हिंदी भी वैसे किया है, तो हिंदी के प्रति लगाव या फिर आस्था, आपको कौन से लेखक पसंद है हिंदी के, उसके बारे में और क्यों पसंद है?
1: मेरे को मुंशी प्रेमचंद की कहानियाँ बहुत पसंद हैं
0: जी,
1: और रविन्द्रनाथ टैगोर की कहानियाँ बहुत पसंद, क्योंकि ये ना हमारे आसपास जो दिखता है उन सब से जुड़ी हुई है, सामाजिक समस्याएं, स्त्री की समस्याएं, और समाज में जितनी भी व्यभिचार या जितना उत्पीड़न होता है, तो उन सबके ऊपर जो कहानियाँ लिखी है तो मुझे वो बहुत टचिंग करती है, बहुत भावपूर्ण होती है, और मेरे को ना कहीं गहरे तक, ऐसे ही ना क्या हुआ कभी मैंने कहीं किसी से कुछ सुना, मेरी बड़ी दीदी है तो वो भी साहित्यिक में बहुत
0: अच्छा रुचि
1: रखती हुई है, बहुत ज्यादा हाँ
0: अच्छा।
1: तो फिर धीरे धीरे क्या हुआ मेरे को उसमें मैं लिखने लगी, लिखते लिखते क्या हुआ जुहू में रहते थे हम लोग, तो वहाँ कृष्ण मंदिर था
0: जी
1: वॉकिंग डिस्टेंस पे, तो मैं सडनली मैंने सोच लिया था कि मैं वहाँ जाके पहले दर्शन करके फिर ही नाश्ता किया करूंगी। वहाँ जाके जब मैं पिन ड्रॉप साइलेंस होकर शांति के साथ जब बैठती थी ना तो बस भगवान का चेहरा देखती थी, तो उस चेहरे को देखकर मेरे को अभी भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं, तो मैं जब उनको देखती थी ना तो मेरे को रोना आता था।
0: अच्छा।
1: और रोते रोते धीरे धीरे धीरे धीरे वो भाव उत्पन्न होने लगा, और पता लगा मैं तो वहाँ बैठे बैठे मोबाइल में ही उस समय जो आता था उस समय लिखती थी।
0: अच्छा।
1: फिर घर आकर जब उनको सुनाती थी तो सबको बहुत अच्छा लगता था, मुझे भी लगता था ये कैसे लिखा गया, मतलब मुझे ऐसा लगता था जैसे किसी और ने लिखा है।
0: जी।
1: फिर वो लिखने लगी, फिर धीरे धीरे मैं फिर उस स्पिरिचुअल ग्रुप से जुड़ी।
0: अच्छा।
1: फेसबुक पर अब उसमें जो था मैं अपनी ये रचनाएं डालने लगी, तो मोस्टली मैं तब कृष्णा के लिए ही लिखती थी।
0: अच्छा।
1: लिखते लिखते फिर धीरे धीरे कुछ और भी भाव होने लगा, जैसे मैं कभी गार्डन में गई तो दो तीन लेडीज जैसे बैठी हुई थी वहाँ, तो वो बहुत परेशान, उन्होंने अपनी कुछ स्टोरी बताई, तो मतलब मैं भी सेंट्री हो जाती थी कुछ, मैं भी ना ऐसी हूँ कि जल्दी मेरे भाव को छू जाती है किसी की बात में, तो उन्होंने जब वो सुनाती थी तो मैं मुझे लगता था कि मुझे इनके लिए कुछ लिखना चाहिए, तो मैं उसी के ऊपर अपने शब्दों में स्टोरी लिखती थी, और वो जो स्टोरी सबको सुनाती थी ना तो सबको अच्छी लगती थी।
0: हाँ।
1: बस मेरा इंटरेस्ट वो धीरे धीरे बढ़ने लगा, फिर मैं साहित्यिक ग्रुप से जुड़ी, उसमें अपना आंगना करके मेरा साहित्यिक ग्रुप है।
0: अच्छा।
1: उसमें हम लोग सीखने सिखाने का रखते हैं, जैसे कि दोहा है, मैंने बहुत सारी चीजें सीखी उसमें, फिर जैसे दोहा है, छंद है, मुक्तक है, कविता तो मैं छंद मुक्ति लिखती हूँ।
0: अच्छा।
1: बस इस तरह से मेरा धीरे धीरे लिखने का शौक बढ़ता चला गया
0: जी। आपसे ऐसी बातचीत हम कंटिन्यू करेंगे, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, आप सुनते रहिएगा आचार्य 90 FM, और आज हमारे सेलिब्रिटी शो में हमारे साथ जुड़ी है नीलम गोयल जी, जो हिंदी की साहित्यिक है, हिंदी की स्नातक है, और आप सुनते रहिएगा आचार्य 90 FM ओनली।

0: ब्रेक के बाद आप सभी से जुड़ रहे हैं सेलिब्रिटी शो में। हमारे साथ आज की सेलिब्रिटी है नीलम गोयल मैडम, और जो हमें बहुत कुछ आज कथाएं सुनवाने वाली है, कविताएं सुनवाने वाली है। मैडम आप मतलब हम सब लेडीज हैं, तो हमारी हमें डेली परेशानियां होती है, घर का भी देखना पड़ता है, और जो नौकरी व्यवसाय कर रहे हैं वो भी वहाँ पे मतलब बच्चों का देखना, घर का देखना और ऑफिस का भी काम देखना, दोनों स्तर पर हम लोग काम करते हैं, लेकिन बेटियों को वो स्थान नहीं मिलता जो आज के समाज में मिलना चाहिए, उसकी जरूरत है। और उसके ऊपर जो आप मैंने आपकी सुनी है वो कविता मुझे बहुत पसंद है, तो मैं चाहती हूँ हमारे आचार्य 90 FM के दर्शकों को भी वो सुनवाए। तो जरूर आपने वो आप बेटी के दर्द दुख को समझती है और उसके बारे में आपने लिखा है, तो वो जरूर हमें सुनवाइए।
1: जी बिल्कुल, ये सच बात है कि हमारे समाज में आज भी बेटियां बहुत कुछ आगे कर रही हैं, लेकिन ना फिर भी कहीं ना कहीं उनको उनका दमन होता है, कहीं ना कहीं उनको रोका जाता है और वो अपनी इच्छाओं से हर कुछ नहीं कर पाती हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि बेटी केवल एक शब्द नहीं है, ये एक एहसास है और एक ऐसा

0: प्यारा रिश्ता है जो जन्म से पहले ही दिलों से जुड़ जाता है। आज मैं उसी अनमोल रिश्ते बेटी पर अपनी भावनाएं प्रस्तुत करती हूँ।
1: जी
0: बेटी, ईश्वर की सबसे सुंदर रचना जिसका जिसकी हंसी से घर आंगन में बसंत उतर आता है।
1: क्या बात,
0: उसकी हंसी में ही संसार की रौनक बसती है और जिसकी आंखों में भविष्य के अनगिनत सपनों की किरणें झिलमिलाती हैं। वो केवल किसी घर की लाड़ली ही नहीं है केवल, बल्कि हर समाज की वो आत्मा है, हर संस्कृति की पहचान है। बेटी के रूप में ही संवेदना जन्म लेती है और ममता अपना अर्थ पाती है और भविष्य अपनी दिशा।
1: वाह क्या,
0: आज बेटी दिवस पर हमें ये स्मरण करना है कि बेटी का सम्मान केवल एक दिन का उत्सव नहीं है, बल्कि जीवन भर निभाया जाने वाला वो संस्कार है। हर बेटी को पढ़ने का, लिखने का, अपनी इच्छा से उड़ने का, स्वयं को पहचानने का अधिकार है
1: जी।
0: क्योंकि जब एक बेटी आगे बढ़ती है तो एक पूरा युग प्रकाशमान होता है
1: जी। बिल्कुल,
0: आज की बेटी हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है, विज्ञान में, साहित्य में, खेल में, राजनीति में, पाक कला में, मतलब कोई ऐसा स्थान नहीं है कि जहाँ वो पहुंची नहीं है
1: जी।
0: हर जगह उसने अपनी पहचान बनाई है, उसकी उड़ान आसमानों को छू रही है। परंतु विडम्बना ये है कि कुछ स्थानों पर आज भी बेटी के साथ भेदभाव, अत्याचार और शोषण का सामना उसको करना ही पड़ता है
1: जी।
0: ये सब हमें झकझोरता है, मन को परेशान कर देता है और सोचने के लिए विवश करता है और हमें सजग भी करता है
1: जी।
0: कि कोई भी बेटी अब भय और अन्याय की छाया में ना रहे। बेटी का सम्मान, सुरक्षा, उसकी देखभाल, स्वावलंबन और हमारा नैतिक, सामाजिक, मानवीय दायित्व है कि बेटी आस्था भी है, प्रेरणा भी है, उससे ही धरती की मुस्कान जीवित है
1: जी।
0: इसलिए बेटी केवल उत्सव नहीं, एक चेतना है, एक संकल्प है। बेटी पर कुछ पंक्तियां लिखने का प्रयास किया है जो आपसे साझा करती हूँ। नन्ही सी हंसी में उजियारा बसे
1: जी,
0: हर सपने में उसका सितारा बसे। न रोको उड़ाने ये फलक छूले, न रोको उड़ाने ये फलक छूले, हर बेटी में ही तो सारा जहां बसे।
1: वाह,
0: बेटी मुस्कान है, बेटी अरमान है, जीवन की हर राह में वरदान है। आओ प्रण करें आज हम सभी, हर बालिका का सम्मान हमारा मान है।
1: वाह, यस, वेरी नाइस। अभी ये कविता तो हम सुन रहे हैं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन आप कथाएं भी लिखती हैं, तो आपकी कथा कहाँ और कथा और कविता कहाँ कहाँ प्रस्तुत करती हैं?
0: कथाएं और कविता, ये हमारा एक साहित्यिक ग्रुप है, उसमें हाँ, भेजती हूँ, कुछ किताबों में भी छपती हैं। और मैं बहुत पहले जब मैं शादी होकर ही आई थी
1: हाँ,
0: तो वहाँ हम लोग होली का
1: त्योहार
0: मनाते थे
1: जी।
0: होली के बाद हमारे यहाँ 8 दिन तक ये लेडीज को बुलाना और
1: अच्छा,
0: खिलाना पिलाना उस सब मनाते थे, जिसको जो रुचि होती थी वो आपस में
1: हाँ,
0: शेयर करता था
1: हाँ।
0: तो इसी तरह से एक बार हमने बुलाया हुआ था सबको
1: हाँ,
0: और मैंने उन्हीं लेडीज के ऊपर एक कुछ छोटी सी कहानी
1: अच्छा,
0: सुनाई और वो मेरी फिर अमर उजाला अखबार में
1: क्या बात
0: निकली
1: है? हाँ।
0: निकली तो फिर लोगों को पता लगा कि आप लिखती भी हो। क्या होता है ना, हम लिखते तो हैं
1: हाँ,
0: लेकिन हमारी जो हमें उत्साह जो मिलता है वो और उसे मिलता है
1: जी,
0: जो पढ़ते हैं
1: हाँ।
0: जब हमारा उत्साह वर्धन होता है ना तो हमारा और इच्छा करती है, हाँ शायद हमने कुछ अच्छा लिखा,
1: अच्छा
0: है,
1: लिखा है,
0: कुछ और इससे भी अच्छा करके दे
1: हाँ।
0: तो बस इसी तरह से धीरे धीरे धीरे धीरे मेरा लिखने का शौक बना। फिर और मैं जिस परिवार में से दूसरे परिवार में गई थी तो वहाँ का माहौल बिल्कुल अपोजिट था। तो वहाँ क्या होता था, मतलब बहुत सिंपल, बहुत अच्छे लोग हैं हमारे
1: हाँ,
0: वो भी, लेकिन जो रहन सहन और जो ख्याल थे वो थोड़े अलग थे
1: जी।
0: मतलब इतना डिफरेंस था कि मेरे को वो लोग बिलायती बहू कहने लगे थे।
1: अच्छा।
0: पर एक समय ऐसा आया कि जब उन्होंने मेरे विचारों को सुनते थे
1: हाँ,
0: मेरी सेवा को देखते थे, तो धीरे धीरे मेरी ये उन्होंने लिखी हुई चीजें भी पढ़ते थे, तो उनको उन्होंने फिर मतलब इतना मान सम्मान दिया कि जो मेरे बड़े लोग थे ना वो भी मेरे को ऐसे इनवाइट करते थे, मैं आपको वो किस्सों में बता नहीं सकती कि वो सबके बीच में मेरे को किस तरह से खड़ा करके फिर मेरा बताते थे लोगों को।
1: अच्छा अच्छा।
0: तो इस तरह से मेरा उत्साह वर्धन बहुत हुआ। फिर मैंने साहित्यिक ग्रुप से जुड़ी तो उसमें लिखना शुरू किया। तो एक बार मैंने अपनी फ्रेंड के ऊपर संस्मरण लिखा, जब संस्मरण लिखा तो उन लोगों को बहुत अच्छा लगा और बोले ये तो मतलब बिल्कुल ऐसा लग रहा है मैं पढ़ रही हूँ तो जैसे मैं सामने रेखा चित्र कर दिया हो ऐसा लग रहा है। तो उससे मैं बहुत प्रेरित हुई, उत्साहवर्धन हुआ। फिर उन्होंने एक बोले कि आपको कहानियां लिखनी है। मैंने कहा मैंने ऐसी कहानियां नहीं लिखी है। तो बोलते हैं कि नहीं नहीं आप कोशिश कीजिए, आप लिखोगी, आप लिख सकते हो। फिर मैंने दो कहानियां लिखी जिसमें से एक मेरी पास हुई और उन्होंने इस कहे अनकहे शब्दों के कैनवास में छपी। इससे पहले क्या था ना, छोटी छोटी बुक्स में छोटी छोटी उसमें निकल रही थी। एक जैसे ये है आखर लुकता, इसमें ये वर्ष में तीन निकलती थी।
1: अच्छा।
0: तो उसमें एक बार एक कविता निकली, एक बार वो मेरी कहानी निकली।
1: अच्छा।
0: बस उससे मैं प्रेरित हुई और फिर मैंने लिखना शुरू किया।
1: जी। अभी आप सामाजिक कार्य से भी जुड़े हैं, उसके बारे में भी जानना चाहेंगे कि आप कैंसर पेशेंट से ज्यादा मतलब उनसे ज्यादा मिलते हैं, तो वो सामाजिक कार्य की रुचि आपने कैसे?
0: वो क्या था ना, मेरे अंदर ना ये शुरू से सेवा का भाव था।
1: अच्छा।
0: जब मैंने ग्रेजुएशन करके चुकी तो एक महीने की छुट्टी थी
1: जी,
0: और शायद मेरी को देखने वाले भी कुछ लोग आने वाले थे घर पर। तो उस बीच मैंने घर में कहा कि अभी तो मुझे शादी नहीं करनी है, मेरे को जो है
1: पढ़ना
0: लॉ करना है।
1: अच्छा।
0: मुझे आगे लॉ करना है।
1: हाँ।
0: तो सब लोग बोले कि हाँ हाँ हो गया लॉ, सब हो गया।
1: अच्छा।
0: बस अब क्या और क्या करना है? मैंने कहा मेरे को अच्छा स्कूल में टीचिंग करनी है।
1: अच्छा।
0: तो मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा विदाउट पे करनी है। तो
1: हाँ।
0: पास में एक स्कूल था छोटा सा।
1: हाँ।
0: और उसमें मैं जाने लगी, वन
1: अच्छा।
0: मंथ मैंने पढ़ाया।
1: हाँ।
0: अब उसमें जो था एक बच्चा भी था, तो वो धीरे धीरे मुझसे बहुत अटैच हो गया और बोला दीदी मैं आपसे और भी पढ़ना चाहता। मैंने कहा ठीक है तुम घर आ जाए करो।
1: अच्छा।
0: हाँ। वो घर आने लगा, मैंने उसको पढ़ाया।
1: हाँ।
0: उसका नंबर्स बहुत अच्छे आए। कुछ नहीं वो हो गया, मेरी शादी भी हो गई। 25 साल बाद मेरे पास कॉल आती है उसकी।
1: अच्छा।
0: कि हेलो दीदी बोल रही है। मैंने कहा आप कौन बोल रहे हैं? मैं राजू बोल रहा हूँ। मैंने कौन राजू? अरे दीदी आप भूल गई, मैं वही राजू हूँ जिसको आपने घर में बैठ के पढ़ाती थी।
1: अच्छा।
0: आप मैं इस पोस्ट पर हूँ, आया है, नौकरी कर रहा हूँ, बेंगलोर में हूँ।
1: क्या बात है,
0: मतलब मैं रो पड़ी थी उस समय खुशी की वजह से।
1: हाँ।
0: तो ये मेरे को ना शुरू से था।
1: हाँ।
0: और इसके बाद फिर मेरी जब शादी हो गई तो एक पास में एक दूध जिनके यहाँ से आता था।
1: हाँ।
0: जैन मंदिर के बराबर में वो उनकी दूध।
1: हाँ।
0: का गाय वगैरह रखते थे।
1: हाँ।
0: तो वो जब लेते थे उनसे।
1: हाँ।
0: तो उसके एक भाई की ना डेथ हो गई थी, उसके बच्चे थे।
1: हुँ।
0: तो वो परेशान थे और मुझे लगता था शायद अभी इनके घर वाले इन बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे। तो मैंने उनको बोला मेरे बच्चे स्कूल चले जाते हैं, मेरे दो बच्चे हो चुके थे तब तक। कि वो चले जाते हैं, तुम इस बीच आ जाए करो, मैं काम निपटा के 11 बजे करीब तुमको टाइम दूंगी।
1: अच्छा।
0: उसको इतना अच्छा पढ़ना आ गया।
1: हाँ।
0: कि उसने 12th पास किया।
1: क्या बात है।
0: और मतलब वो अपनी लाइफ में शादीवादी हो गई।
1: हाँ।
0: सेट हो गई
1: जी।
0: तो मुझे ये शुरू से कुछ आदत थी। अब यहाँ जब इन्होंने VRS लिया बैंक से।
1: हाँ।
0: स्टेट बैंक में मेरे हस्बैंड।
1: हाँ, काम करते थे।
0: हाँ, तो जब उन्होंने VRS लिया तो सब लोग बोले कि अरे इतने वो ले रहे हैं और आप परेशान हो जाओगी।
1: हाँ।
0: घर में रह के क्या करोगी, ये सारे दिन चाय बनवाएंगे और कॉफी बनवाएंगे, सारे दिन तुम बिजी रहोगी, परेशान हो जाओ। मैंने कब जो होगा, मैंने उनको समझा लिया अगर वो इसमें खुश है VRS लेने में तो मुझे कोई हर्ज नहीं है
1: जी।
0: तो उन्होंने जब लिया तो यही लगा कि अब हम क्या करें।
1: हाँ।
0: क्योंकि टाइम एक्सेस में रहता था, सुबह सुबह टिफिन बना के नहीं देना और
1: बराबर,
0: बच्चे भी बड़े हो गए, अपनी नौकरी में चले गए थे बच्चे। तो ये जो राम मंदिर का ये जब हुआ।
1: हाँ,
0: तो प्रसाद देने कुछ लोग घर पर आए। जब घर पर आए तो मैं हमने उनकी आरती उतारी।
1: अच्छा।
0: आरती उतारी, घर पे बिठा के उनको पानी वानी देने के लिए कहा, तो वो बहुत खुश हुए। RSS के लोग थे
1: जी।
0: जब वो उनसे कहा तो उन्होंने कहा कि कुछ दिन बाद उनका कॉल आया कि ऐसे ऐसे आप लोग उससे जुड़िए।
1: हाँ।
0: मैंने कहा ठीक है जुड़ेंगे, आप लोग पहले घर पर आओ। ये हमको पता था कि RSS के लोगों को घर पे बुलाना चाहिए
1: जी।
0: तो वो लोग धीरे धीरे हमारे यहाँ आने लगे, कभी लंच पर कभी ब्रेकफास्ट पर
1: जी।
0: तो उन्होंने कहा, मैंने ऐसे बोला, मैंने कहा मेरे को ना कुछ करने का मन करता है अभी।
1: हाँ।
0: ऐसा लगता है मैं अभी कुछ कर नहीं रही, बेकार हूँ। तो वो बोले ठीक है ना, आप ऐसे ऐसे करके आइए।
1: हाँ।
0: हनुमान टेकड़ी पर साइन कोलीवाला। हाँ। में वहाँ कैंसर पेशेंट्स का है और आप आइए वहाँ आइए, आपको अच्छा लगेगा, फिर आपको जिम्मेदारी देंगे।
1: ठीक है,
0: वहाँ गए, वहाँ गए तो क्या हुआ, वहाँ पेशेंट्स थे, मैं सबसे मिलने जाती थी, फिर उन्होंने एक रूम का मेरे को चार्ज दे दिया।
1: अच्छा,
0: कि आप इन लोगों से कांटेक्ट में रहिए, देखिए इन पे क्या चीज है, इनको मेंटली सपोर्ट कीजिए। तो हम उनसे जाके कभी कभी उनको भजन सुनाती थी, कभी उनसे बात करती थी, क्योंकि क्या
1: बात करने से भी वो खुल जाते हैं,
0: क्योंकि क्या है ना
1: इमोशनली अच्छे रहते हैं।
0: क्या है ना, पेशेंट्स जो है मुझे लगता है कि वो
1: डिप्रेशन में
0: से नहीं जाता, वो सोच कर चला जाता है।
1: जी,
0: फिर हम लोगों की एनकोलॉजी को लेकर क्लासेस हुई, ट्रेनिंग हुई हमारी, तीन तीन दिन की क्लास चलती थी कि उनको साथ हम लोग को कैसे बिहेव करना है, कैसे नहीं करना है, क्या उनके सामने नहीं कहना है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता। कुछ दिन तो क्या हुआ, जब हम घर आते थे ना तो मैं सो नहीं पाती थी,
1: उनका दुख दर्द देख के
0: नहीं पाती थी। तो ये भी समझाते थे, उन लोगों ने समझाया, देखो ऐसे सेवा नहीं हो सकती है, आपको यही छोड़कर जाना होगा, यही छोड़कर जाना होगा जो भी देखा है
1: जी।
0: उनके साथ आप अच्छा एटीट्यूड कीजिए, अच्छा व्यवहार कीजिए, लेकिन घर जाकर नहीं लेना है, पर आप पढ़ जाओगे क्या फायदा है।
1: बराबर।
0: फिर बस वो धीरे धीरे वहाँ पता लगा हमको, स्लम एरिया में स्कूल्स खोल रखे थे उन लोगों ने, फ्री ये शाला फ्री चला रखी थी स्लम एरिया के बच्चों के लिए। तो वहाँ उन लोगों ने, मैं गई देखने, कभी मैं स्लम एरिया में नहीं गई थी,
1: राइट,
0: लेकिन मतलब मेरे को दिक्कत भी लगती थी, मुंह बंद करके जाती थी कई बार, और कई बार बहुत कीचड़ नीचे भी होती थी, तो शूज पहन के साड़ी पहनना बंद कर दिया था, टाइट कपड़े पहनना शुरू कर दिया था, गिरे ना कहीं, और वो बिल्कुल ऐसी रेलिंग होती थी कि देखकर लगता था कैसे
1: रहते हैं
0: हम, इतने बड़े बड़ों में रह के लगते हैं, हमको ये परेशानी, वो लोग कैसे रह रहे हैं। तो धीरे धीरे करके मतलब मैं पर्सनली उन लोगों से इतनी अटैच हो गई, उन लोगों ने फिर मेरे को निरीक्षण बना दिया।
1: अच्छा,
0: 35 शालाओं का निरीक्षण था, तो जो हम लोगों को, हम मैं और मेरे हस्बैंड दोनों जाते थे। बस इसी तरह से धीरे धीरे करके
1: वो समाज कार्य बढ़ता गया आपका।
0: किशोरी वर्ग शुरू किया फिर हम लोगों ने, जैसे किशोरी बच्चों के लिए 8 वर्ष से और 12 वर्ष तक के बच्चों के लिए, लड़कियों के लिए, जैसा कि आजकल माहौल चल रहा है तो उनको सेव करना, उनको गाइड करना है,
1: राइट,
0: तो वो भी
1: करते हैं।
0: तो बस सब काम होते थे घर के भी, और बहुत एक्टिव रहती थी, ऐसा नहीं था कि कोई काम छोड़ के जा रही हूँ, का भी सारा काम होता था।
1: बराबर।
0: और आके बस आराम से सोते थे, मतलब बहुत रिलैक्स होता था कि हमने, हमारे हाथ से कुछ तो हुआ।
1: तो अभी अंत में आपकी एक सुंदर सी कविता वापस सुनते हैं और ये जो शो का अंत करते हैं। ठीक है,
0: ठीक, थैंक यू।
1: आप कौन सी कविता पढ़ना चाहोगे?
0: आप बताओ।
1: जिंदगी के बारे में, अभी हम जिंदगी के बारे में इतने
0: जिंदगी
1: के बारे में सुनते हैं,
0: ये कर लेगी छोटा सा है
1: जी,
0: चलेगा
1: या
0: जिंदगी है तो सब कुछ है, कहते हैं ना
1: जी
0: जिंदगी, इसके लिए मैंने कुछ लाइंस लिखी हैं, बहुत छोटी सी, शायद आपको पसंद आए
1: जी। बिल्कुल।
0: जिंदगी तेरे लिए मैं प्यार लाई हूँ, जिंदगी तेरे लिए मैं प्यार लाई हूँ, ये घड़ी, ये धूप, ये दिन, ये रात, कल भी आई थी,
1: आज भी आई है,
0: कल भी आई थी और आज भी आई है, किसी को ये सिंहासन देगी और किसी के लिए बेबसी देगी, ये सूरज जो सिर पे चढ़ा है शाम को पाँव में उतर जाएगा, इसी तरह ये सांस का राही क्या पता किस पाँव पर रुक जाएगा।
1: क्या बात है।
0: इसी तरह ये सांस का राही क्या पता किस तरह किस पाँव पर रुक जाएगा, गीत गाओ स्नेह का संसार लाई, जिंदगी मैं तेरे लिए
1: प्यार लाई। क्या बात।
0: नई आशा, नए सपने, नए संकल्प, मैं बुलंदी का सघन विस्तार लाई हूँ, मैं बुलंदी का सघन विस्तार लाई हूँ, मुस्कराओ आज मैं उपहार लाई हूँ, जिंदगी तेरे लिए मैं प्यार लाई हूँ।
1: क्या बात है। कितना पॉजिटिव अप्रोच है टुवर्ड्स लाइफ, मतलब जिंदगी के ऊपर अपने बहुत अच्छा अच्छे से लिखा है. और आज हमारे आचार्य 90FM से आप जुड़े हैं, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू. आप ऐसे ही लिखते रहिए, मिलते रहिए और हमें हमेशा कुछ ना कुछ देते रहिए. थैंक यू सो मच जी.

0: हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं आपका होस्ट एंड दोस्त आरजे शब्बे स्वागत करता हूँ आपका क से कवि। जैसे कि आपने पहले एपिसोड में सुना कि किस तरीके से हमारे मित्र अभिजीत अयंग और राहुल सफर जी ने अपने कविता की जर्नी को, अपनी कवि की जर्नी को इस क से कवि के माध्यम से सुनाया, हमें बताया, तो आज हमारे साथ एक और इस हार में जुड़ने एक और मोती आ गए हैं। नाम है मोनिश वारसी। मोनिश जी अपने उम्र से बहुत ज्यादा गहरी बातें कह देते हैं, बहुत आसान और बहुत सहज सहज तरीके से। लहजा बहुत सिंपल सा पर बातें इतनी डीप और इतनी मीनिंगफुल कि शायद ये बातें करें तो हमें सोचने में इतना वक्त लग जाए कि क्या बात कही थी और क्या मतलब निकला, और वो प्रोसेस होने में और वो प्रोसेस होके रिजल्ट आने में इतना समय बीत जाता है कि दूसरी बात कैच करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आज का जो इंटरव्यू होगा ये बहुत ज्यादा उन सारी बातों को उजागर करेगा जिसमें शायद हम जिस बारे में शायद हम सोचते नहीं है या जिस पहलू तक हमने जाने की कभी कोशिश नहीं की। तो मोनिश जी स्वागत है आपका कैसे कभी में। मोनिश जी आपसे सबसे पहला सवाल ये है कि आपने लिखना कब शुरू किया?
1: लिखना एज इन एकदम से लिखता तो मैं शुरू से ही था। कभी नज़्में लिख दी, कभी एक लाइन लिख दिया, कभी कोई वर्ड लिख दिया। जैसे जो सीड है वो तो हमेशा पड़ा ही रहता है ना इंसान के अंदर।
0: करेक्ट।
1: जिस चीज का उसे पेड़ बनने में टाइम लगता है। तो मैंने प्रॉपर लिखना 2019 में शुरू किया। 2019 में कुछ ऐसा हुआ जिंदगी में जिसने मुझे लिखने के लिए उत्साहित किया कि लिखा जाए। और हर चीज के लिए कहते हैं ना कि स्पार्क की जरूरत होती है किसी चीज को स्टार्ट करने के लिए, तो वो स्पार्क मेरी जिंदगी में आया किसी इंसान के तौर पर और मैं लिखना चालू किया। फिर रुका नहीं, कलम लिखते गया।
0: तो जब आपकी जिंदगी में वो स्पार्क आया तो उस वक्त क्या महसूस हुआ जिसने आपको किसी और मोड़ पर या किसी और मोड़ को चूज ना करते हुए सिर्फ लिखने की ओर मोड़ा?
1: लोग शब्द हम कलम का सहारा लेते ही इसीलिए कि उसे डिफाइन नहीं किया जा सकता।
0: करेक्ट।
1: कि हम क्या फील कर रहे हैं, वो आदमी हमें मिला है, वो इंसान हमें मिला तो हम कैसा फील कर रहे हैं।
0: करेक्ट।
1: उस चीज को बायकॉट करने के लिए या बाईपास करने के लिए हम कलम उठाते हैं।
0: हाँ।
1: शायरों में यही होता है कि हम जो फील कर रहे होते हैं वो नहीं बता सकते, तो जो पॉसिबल चीज है, जो एक उस फीलिंग को टच कर सकती है, उस चीज को आपको ये बहुत अच्छे से मालूम है क्योंकि आप भी लोगों को शायद ना पता हो, मुझे मालूम है कि आप भी लिखते हैं, तो उस फीलिंग को टच करने की जो सबसे इजी या उसके सबसे प्रॉक्सिमिटी में जो चीज जा सकती है वो शेरो शायरी मेरे हिसाब से। तो इसलिए मैंने ट्राई किया कि जो फील कर रहा हूँ वो तो शायद कोई ना जान पाए, शायद मुझे भी वो चीज एक्सप्लोर करने में टाइम लगे या हो सकता है मैं भी कभी ना जाना, मगर हाँ जितना हो सकता है उतना लिखते हैं तो निकलते ही अब। और आपको मालूम है कि प्रेम बहुत ही पाक और बहुत ही पवित्र चीज है, तो उसकी कोई
0: तुलना नहीं है।
1: हाँ, तुलना नहीं है, कोई उसका वर्बल कोई डेफिनेशन नहीं है मेरे हिसाब से। जो हम कर पाते हैं बस लिख देते हैं कुछ।
0: तो जैसे कि आपने कहा कि कभी एक कविता लिख दी, कभी एक पैराग्राफ लिख दिया या कभी एक शब्द लिख दिया, तो कभी कोई एक ऐसा शब्द लिखा है जो आज तक वो शब्द ही रहा है, मतलब फिर उसके आगे कभी कुछ लिखा ही नहीं?
1: मेरा मैंने लिखा था एक मेरा।
0: हाँ।
1: अब वो मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा ही पसंद है, जो उनकी मतलब डिवोशन है, जो उनका पूरा आत्मसमर्पण है, जो वो मुझे बहुत ही प्रभावित करता है बहुत ही ज्यादा। एक होता है कि किसी को पसंद करना, एक होता है किसी को हर दर्जे तक पसंद करना। तो मैंने एक ही सबसे पहला ही मैंने लिखा था मीरा। एक शब्द मेरी डायरी में अभी तक लिखा पड़ा हुआ मीरा, तो वही मुझे अभी तक फिलहाल तो वही याद आ रहा है कि एक ही शब्द से अगर काम चल जाए, क्योंकि वो एक शब्द है उसको खोलेंगे तो कम से कम 1000 किताबें आप लिख सकते हैं मीरा। जो उनकी मोहब्बत है, जो उनका इश्क है कृष्ण को लेके, उस मोहब्बत को अगर टटोलने जाएंगे तो बहुत ही ज्यादा ऐसा लगेगा कि किसी और डायमेंशन में आ गए हैं।
0: करेक्ट।
1: अगर डायमेंशन शायद इश्क का ही है।
0: और तो शायद वो डायमेंशन खुली आंखों से देखा भी नहीं जाएगा।
1: वो तो भाई आशिक के लिए आशिक की बात है।
0: तो फिर मीरा को बाद में आपने पढ़ा, आपने वो एक वर्ड लिख कर छोड़ दिया, फिर उस शख्स को जानने की आपने कोशिश की कि क्या था क्या नहीं, क्या पढ़ा फिर मीरा के बारे में?
1: मीरा के बारे में मैंने ज्यादा नहीं पढ़ा क्योंकि मुझे कुछ इतना ये इस चीज को मैं जानता हूँ कि उनकी जो उनका जो इश्क है वो जिस घर से आती थी उसमें क्या हुआ, फिर कृष्ण के जो प्रति उनका जो प्रेम था वो कितना किस दर्जे तक गया ये मुझे मालूम है, खत्म कर दिया उन्होंने अपने आप को ये मुझे मालूम है, और काशी के लिए जाना इतना ही काफी मुझे अच्छा लगा ये चीज, और वो मुझे हमेशा से पसंद है। जब मैंने क्लास 8 में उनके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा तभी से वो मेरे मन को मिला।
0: कितना खूबसूरत एहसास रहा होगा अगर जब हम मीरा को पढ़ते हम जानते हैं कि मीरा का सिर्फ श्री कृष्ण के लिए समर्पण था, उनकी कोई इच्छाएं नहीं थी कि इन रिटर्न मुझे उनसे कुछ चाहिए, उनका सिर्फ यही था कि बस मैं जो कर रही हूँ उससे मेरे भगवान मेरे प्रीतम मैं जिनसे प्रेम करती हूँ या मैं जिनके लिए पूरी समर्पित हूँ वो बस खाली इस चीज को जान ले। लेकिन आजकल ऐसा है कि दुनिया पूरी शो ऑफ के इस चक्कर गई है, मतलब प्रेम हाँ प्रेम प्रेम को समझती है कि शो ऑफ है, मतलब जब तक आप गिफ्ट्स ना दे दे जब तक आप कुछ भेंट ना दे दे कुछ दे ना दे इसको लोग प्यार समझते हैं, इस पे आप क्या कहेंगे?
1: मैंने इसी को मद्देनजर मतलब इसी को नजर में रखते हुए एक शेर लिखा था कि तेरे इश्क के शहर को जिस्म का सहारा जरूरी है क्या,
0: तेरे इश्क के शहर को जिस्म का सहारा जरूरी है क्या,
1: अगर ये बात है असरार तो तेरा शहर कभी महफूज है।
0: वाह वाह वाह वाह वाह वाह।
1: तो मैंने मीरा को नजर में रखके ये शेर लिखा था मैंने कि जब सेल्फलेस चीजें हैं ये किसी भी सेंचुरी की बात नहीं, ये आज से 1000 साल भी कोई इश्क करेगा तो इसी फेज में, वो दरवाजा सेम है, इश्क का दरवाजा उतना ही बड़ा है उतना ही सेम है, उसी जगह पर वो शिफ्ट नहीं होता है यूजुअली, वो वहीं पर जो भी आदमी इश्क करेगा चाहे वो मीरा हो चाहे सतीन हो चाहे मनीष हो उसको जाना उसी दरवाजे से तो वो फील कर सकता है। तो मैंने ये लिखा मीरा जी को
0: मद्देनजर रखते हुए कि
1: किसी चीज की जरूरत नहीं।
0: मैं भी मीरा इस कैरेक्टर से मैं भी बहुत ज्यादा इंस्पायर हूँ, ये कैरेक्टर मुझे इतना इंस्पायर करता है कि मैंने लिखा कि सब प्यार मोहब्बत मीरा है, रब की भी चाहत मीरा है, आशिक ने लिखा हर प्रेम का खत मीरा है, सब पंछी तारे मीरा है, सब पंछी सारे मीरा है, गगन में तारे मीरा है, जो जीत गए वो कृष्ण हुए जो हार गए वो मीरा है। लेकिन इश्क में यही है जो हार जाता है वही जीत जाता है, तो इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि मीरा ने हार कर जो पा लिया वो शायद लोग जीत कर भी नहीं पा सकते अपनी जिंदगी में। एक उनका डिवोशन एक उनका समर्पण इतना गहरा लगता है मुझे कि अगर आप मीरा के पैरेलल कुछ वर्ड कहना चाहे तो क्या कहेंगे प्रेम को छोड़कर?
1: मैं कहूंगा कि जो मुझे सबसे बेहतर उनका ये लगता है जैसे आपने कहा कि सब हार गए
0: जो जीत गए वो कृष्ण हुए जो हार गए वो मीरा,
1: इसी मतलब आपने जो लिखा शायद मैं मतलब बता दूं लोगों को कि हार गए का मतलब ये थोड़ी है कि कोई जंग चल रही थी हार गए,
0: करेक्ट,
1: उन्होंने अपने सेल्फ को हरा दिया,
0: हाँ।
1: बोले तू कुछ है ही नहीं,
0: करेक्ट,
1: तितर बितर,
0: करेक्ट,
1: कोई मतलब नहीं है तेरा, क्या है मीरा बोनस कैश और बिल क्या कुछ नहीं, तो ये हार वो जीत से बेहतर है।
0: सही बात है, सही,
1: तो ये हार बहुत ही मतलब बहुत ही पवित्र है ये हार कि किसी के लिए हम हार जाए, प्रेम उसी में है जहाँ पे सेटिस्फेक्शन हो हारने के बाद भी, तो मेरा को सेटिस्फेक्शन है जब कृष्ण के दर्शन हो गए तो क्या है?
0: वही एक दर्शन में सारी दुनिया छुपी है।

0: एक्सपेक्टेशन नहीं है किसी को कि कोई दो लोग बैठ के आज के दौर में मीरा की बात करेंगे, तो ये तो बहुत ही ज्यादा संभव है। और हमारे यहाँ तो कहा जाता है कि मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट किसी ना किसी वर्ल्ड में, तो कृष्ण भी मीरा के आशिक होंगे।
1: हाँ ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है।
0: अब उसके बारे में हमें नॉलेज
1: वो तो जब जब इश्क बढ़कर डिवोशन के लेवल पे चले जाए तभी ये सब पॉसिबल।
0: इश्क का रियल शब्दुल भाई ऐसा है कि वहाँ पे वो खुद ही मल्टीवर्स है, वो उसमें कभी आदमी बहुत दुख से भर जाता है, कभी बहुत सुख से भर जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, हर पल ऐसे कभी बहुत ऊपर तो कभी बहुत नीचे, कभी बहुत ऊपर तो कभी बहुत नीचे चलते रहता है। ये लोगों को लगेगा कि आप अरे ये तो महबूब की पहले से तो तारीफ कर
1: रहा था,
0: तो ये तो चलते रहेगा। ये मतलब ऐसी चीज है कि ये जैसे कुछ भी हो, कुछ अब जैसे मैंने लिखा कि तेरे इश्क के शहर को जिस्म का सहारा जरूरी है, फिर मैंने एक चीज और लिखी, अब तो मुड़ के देखने में भी तकलीफ है तुझे, तो बता तेरे वादों का एतबार करूं या रहने दूं, हजार बात है दिल में तेरी उल्फत की कसम, समझ में ये नहीं आता क्या करूं क्या रहने दूं।
1: हां हां हां हां वाह वाह वाह, फिर से मुकर्रर इरशाद, बहुत अच्छा शेर, वाह वाह वाह।
0: अब तो मुड़ के देखने में भी तकलीफ है
1: तुझे,
0: तो बता तेरे वादों का एतबार करूं या रहने दूं, हजार बात है दिल में तेरी उल्फत की कसम, समझ में ये नहीं आता कि क्या करूं क्या रहने दूं।
1: वाह वाह वाह,
0: ये भी एक रेंज है।
1: वाह,
0: मैं ये कहता हूँ कि इश्क कोई किसी पेडेस्टल पे हमें तौलना नहीं,
1: करेक्ट,
0: आज कभी ऊपर भी रहेगा कभी
1: नीचे भी रहेगा,
0: वो मिजाज की बात है।
1: करेक्ट,
0: ऐसे ऐसे अशारा भी देता है, लगेगा कि ये तो नफरत करता है, मगर महबूब से कोई नफरत नहीं कर सकता,
1: महबूब बनाएंगे प्यार को,
0: महबूब को गाली नहीं दे सकता।
1: सही सही,
0: जब आशिक होगा तो किसी भी हाल में रखे वो ठीक है, फिर वो वहाँ पे जो सेटिस्फेक्शन लेवल है, वो वहाँ पे जो सरेंडर जो लेवल है वो अलग होता है। तो इसलिए मैंने मीरा से ही आप पहले अवगत कराया भी,
1: लेकिन यही एक चीज है। आज से अगर आप 30-40 साल पहले चले जाओ और अभी आ जाओ, पहले लोग एक्सेप्टेंस में ज्यादा बिलीव करते थे, अब फोर्सफुली एक्सेप्टेंस में बिलीव करने लोग लगे हैं। कि पहले एक्सेप्टेंस ये होता कि अगर कोई कह देता कि नहीं है मुझे आपके प्रति प्रेम नहीं है, या मैं उस नजरिए से आपको नहीं देखता हूं, तो लोग समझ जाते कि ठीक है आप नहीं देखते हो मैं देखता हूं, तो वो मेरा एक तरफा मामला है आपके प्रति। लेकिन अभी लोग वैसे नहीं करते, अब ऐसा हो गया कि नहीं मुझे चाहिए तो चाहिए, तो इस पर आपकी क्या राय है?
0: दुनिया में 90% शायरों का एक तरफा ही मामला होता है और ये हमेशा चलता रहेगा। एक तरफा प्यार की सबसे बड़ी खूबसूरती है ये कि उसको उस इंसान को, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। कि पहली बात तो मैं ये क्लियर कर दूं कि जेंडर इश्क का है
1: नहीं, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, एब्सोल्युटली
0: इश्क का कोई जेंडर नहीं है, मोहब्बत का कोई जेंडर नहीं है, वो किसी से भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। तो हम लोग जो बात करते हैं कि शायद जितने भी हुए हैं उनका कहीं ना कहीं एक कांटा फंसा होता है जो गले से नहीं उतरता है किसी और के। तो ये जो आप कह रहे हैं कि तो मैं मतलब इसका जवाब ऐसे ही देना चाहूंगा कि एक तरफा जो होता है यही सबसे मुझे सबसे मतलब प्योरेस्ट फॉर्म में जो आदमी कर सकता है कि भाई मुझे नहीं जरूरत तेरी, फिर जस्टिफाई कई सारी चीजें हो जाती है, कई सारी चीजें कि भाई तेरे हंसने से भी अगर मुझे तकलीफ थी, तेरे रोने से भी तकलीफ थी, या तेरे ये बात कहने से मुझे तकलीफ थी, चल वो भी हटा दिए, मैं अकेले कमरे में पड़ा हूँ तेरे से इश्क कर रहा हूँ।
1: वाह,
0: और वो इश्क पहुंचता है। मतलब हम सुनते आते हैं कि आप किसी को याद कर रहे हैं तो सामने वाला भी ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि वो भी आपको याद कर रहा हो, तो ऐसे ही आदमी कर लेता है, इश्क कर लेता है, और इसमें कोई मतलब बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं है। मगर आज पर जो है आज हम देखते हैं कि सिर्फ और सिर्फ जो चीजें मतलब जिस्मों तक ही सीमित है, वो चीज थोड़ा मुझे अटपटा लगता है कि पता नहीं।
1: जैसे अभी आपने कहा कि चलो ये हटा दिया, वो हटा दिया, खुद को कमरे में बंद कर लिया, सब
0: फिर
1: कुछ
0: भी फिर भी।
1: ऐसे ही एक शायर थे मुझे बहुत पसंद है, जॉन एलिया। जॉन एलिया ने खुद को इतना तबाह कर लिया कि पढ़ते हैं तो पता चलता है उनको, या कुछ शायरों से सुना भी है कि कई सालों तक खुद को एक कमरे में बंद कर लिया था उन्होंने, ना किसी मुशायरे में जाते थे, ना किसी से मिलते थे, ना कुछ मिलना जुलना होता था। फिर उनके दोस्त थे सलीम जाफरी, वो आए, कमरा खुला, देखे तो जॉन साहब के बाल बहुत बड़े, लंबे लंबे, दांत गंदे हो चुके, बदन से बदबू आ रही है, इतना खुद को तबाह कर लिया। तो शायर इस वक्त क्या सोचता होगा, मतलब

0: खुद को जब बंद कर लेता है सारी दुनिया से, सब मतलब रिश्ते नाते तोड़ दिया, नहीं मुझे दुनिया ही नहीं देखनी, और वो आके खाली कमरा बंद कर दिए है, 8-10 किताबें है, 4 दीवार है जिसको 24 घंटा देख रहा है आदमी,
1: जो साहब ने इसका जवाब खुद ही दिया है, एक अपने शेर में दिया इसका जवाब कि कहते हैं क्या कहा मुझसे मिलने आए हो, क्या कहा मुझसे मिलने आए हो, बैठो बुला कर
0: लाता हूँ। वाह वाह वाह वाह वाह वाह।
1: तो ये उन्होंने खुद कह दिया, ये अब इसको मैं इलैबोरेट करूं या कोई भी दुनिया का आदमी इलैबोरेट करेगा बहुत ही ज्यादा समय जाएगा इसमें, कि एक शख्स है जो अपने आप को इस हद तक तबाह कर चुका है कि सिर्फ और सिर्फ महबूब है उसके,
0: वही उनका शेर है ना, मैंने खुद को इतना तबाह कर लिया और मलाल भी नहीं है।
1: और मलाल इसीलिए इसको आदमी दूसरे, मतलब आज के लोग शायद दूसरे तरीके से समझे, मगर मेरा ग्लास सिर्फ इश्क है मेरा, मैं इश्क के चश्मे से ही चीजों को देखता हूँ, तो जो मिर्जा साहब हो या कोई भी हो, तो ये जो इन्होंने कहा है कि क्या कहा मुझसे मिलने आया बैठो बुला के लाता, तो ये वही बात है कि मैं तो हूँ ही नहीं खत्म। जैसे हम लोग एक वाक्य एक थोड़ा फोकलोर हम लोग सुनते हैं कि लैला से मिलने मजनू गए, तो मजनू ने दरवाजा खटखटाया तो लैला ने पूछा कौन, तो बोले कैस, तो बोले जा। फिर दोबारा आए कुछ दिन के बाद, कुछ महीनों के बाद, फिर उन्होंने दरवाजा खटखटाया, फिर लैला ने पूछा कि कौन, बोले कैस, बोले वापस जाओ। फिर तीसरी बार जब आए वो तो पूछे कौन, तो बोले पता नहीं। तब लैला ने दरवाजा खोला और गले मिली कि ये मैं ये चाह रही थी, तुम कौन, मैं कौन हूँ, दो रूहों का मिलन है, दो मतलब आत्माओं का मिलन, ये हल्की बात नहीं, ये हमें मतलब हमें बचपन से हिंट दिए जाते हैं कि इश्क ऐसा होता है, चाहे वो मुस्लिम कल्चर हो चाहे हिंदू कल्चर हो कुछ भी हो, हमें बचपन से हिंट दिए जाते हैं कि इसका ये इसका ये इसका वो, तो एक हो जाना, मीरा और कृष्ण में कुछ फर्क नहीं बचा। एक वाक्य और बताता हूँ आपको कि एक हो जाना क्या क्या होता है। कृष्ण भगवान जा रहे थे जंग पे महाभारत से लड़ने के लिए, बात है, तो राधा ने कहा कि कम से कम आप मुझे अपना लीजिए, पता नहीं क्या हो जाए जंग में, मैंने ऐसा सुना है और मेरे एक टीचर है वो बताया करते थे। तो कृष्ण ने कहा आप अपनी आंख बंद करिए राधा से, और कृष्ण पलटे और बोले कि अब खोलो, तो राधा ने देखा कि सामने एक और राधा
0: खड़ी है। हाँ,
1: किससे करूं, तू ही तो है, मैं ही तो हूँ, तो इस लेवल का अगर यूनियन है जो कि मतलब अभी तो
0: इसके बारे में सोचना भी
1: उम्मीद नहीं कर सकते, और जो कि गलत नहीं है, जिसको जितना देखो, मैंने बहुत ही अच्छे एक इंसान सुना था कि जिसका जितनी फोकस है, जितनी लाइट है, उसको उतना ही दिखेगा।
0: करेक्ट।
1: फोकस अगर 10 mm का है तो उसके 10 mm का एरिया ही दिखेगा। एक एलईडी का फोकस अगर 1 km तक है तो उसको 1 किलोमीटर का ही रेडियस उसको दिखेगा। तो इसमें उनकी गलती नहीं, उनको बताया दूसरे तरीके से गया, उनको समझाया दूसरे तरीके से गया।
0: करेक्ट। और ये ऐसा भी है ना कि युग युग की बात है कि ऐसा युग आना ही था जो अब हम देख रहे हैं, ऐसा युग आना है और शायद इसके बाद और एक युग आएगा जो शायद इससे बुरा हो, है ना, तो ये सब युग आने ही वाले हैं, तो ये युग में ये होना था। तो चलो हम खुश नसीब है कि जो पिछले युग में या उससे पिछले युग में जो हुआ है वो हम डिस्कस कर रहे हैं और वो हमारे रूट्स में अभी भी है, और हम जो युग देख रहे हैं और हम आगे का भी सोच सकते हैं कि ऐसा भी युग आ सकता है। अब एक सवाल कि कोई एक ऐसी कविता जो लिखनी शुरू की, पूरी भी हुई, फिर उसे काट दिया, फिर उसे लिखा, फिर काट दिया, ऐसा कितने बार हुआ है?
1: मैं मतलब लिख के काटने वाली तो बात जो है बहुत सही है। हाँ। आदमी कभी कभी मैं जैसे मैं लखनऊ से हूँ तो मेरी उर्दू थोड़ी अच्छी ग्रिप है उर्दू पे, मगर उतनी भी अच्छी नहीं, तो कम से कम सैकड़ों बार ये होता है कि लाइन लिखेगा जो फील कर रहे थे वो पोर्ट्रे नहीं कर पाए पेज पे, काट दिए, फिर एक दिन बैठे कि यार वो लिख देता हूँ, काट दिए। कई बार हुआ, कम से कम 100-200 शेर तो आधे मतलब एक एक लाइन के पड़े,
0: सिर्फ एक मिसरा लिखा है, उला लिखा, सानी नहीं मिला, सानी लिख दिया, उला नहीं मिला,
1: क्योंकि मैं मतलब यही सोच के, ये नहीं कि मेरे पास लफ्ज नहीं, मेरे पास वाकई में मतलब लफ्ज नहीं है कि मैं जो फील कर रहा हूँ वो क्या जस्टिफाई हो पाएंगे, मैं बहुत ही केयरफुल होकर कोई भी चीज लिखता हूँ, ऐसे मतलब ये नहीं कि कुछ भी लिख दूं लिखने के लिए, तो बहुत बार हुआ
0: ऐसा। राइटर्स ब्लॉक ऐसा कितना टाइम चलता है, मतलब बहुत महीने हो गए, दिन गुजर गए, साल हो गया, कुछ लिखाएंगे, ऐसा हुआ है?
1: बहुत बार होता है, बहुत ऐसा होता है जब जैसे, और इसमें किसी की गलती नहीं है कि इसमें मतलब ये ऐसे ही है कि जैसे पानी बह रहा है, किसी ने नलका रोक दिया, फिर अगर तुम कॉन्शियस हो नलका खोल दिया पानी गिरेगा, तो कुछ ऐसा ही है। मतलब मैं इसको ऐसा एकदम पर्टिकुलरली वर्ड में शायद मैं डिफाइन ना कर पाऊंगा, आपका सवाल बहुत प्यारा है, मगर शायद ऐसे ही है कुछ कि ब्लॉग तो चलता है मेरा, तो ऐसा है कि किसी का भी है 15-15, 20-20 दिन कुछ नहीं लिखता।
0: हाँ, दो, तीन, छह महीने मैंने नहीं लिखा,
1: नहीं लिखा है। हाँ। तो ऐसे ही होता है, हम लोग के साथ होता है, ये इसलिए नहीं होता कि हमारा कुछ कंटेंट खत्म हो गया, हम मतलब भूल गए लिखना, ऐसा कुछ नहीं होता, बस नहीं मन करता है। और लिखना तभी मजा आता है कि भाई वो जब दिल से निकले चीजें, तो वो शूटिंग भी दिल से,
0: जब कुछ आप पे तारी हो रहा हो, जब आप पे कुछ नाजिल हो रहा हो, जब आपने कुछ मांगा नहीं और ऊपर वाले ने आपने देना भर भर भर भर भर भर देना शुरू किया, और आप बैठे आपने यार ये आ रही है, आ रही है, आ रही है, और हो गई पूरी कविता हो गई एक मिनट के भीतर पूरी।
1: हाँ,
0: फिर करेक्शन, फिर सोचते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि एक लिखी गई बस उसमें करेक्शन भी नहीं करना, लेकिन फिर वो कविता का ऐसा भी मतलब होता है कि वो सुना भी नहीं पाते, फिर वो इंसान अपने एकांत में उसको पढ़ता है। जब एक कविता ऐसी लिखी जाती है हमसे कई बार कि वो हम सिर्फ एकांत में पढ़ते हैं, उसे दुनिया के लिए नहीं लिखते हैं, मतलब वो एक ब्रह्मास्त्र दिया होता है ऊपर वाले ने आपको, हाँ, कि आप परेशान है तो पढ़ रहे हो, खुश हो तो पढ़ रहे हो, कुछ मिला है तो पढ़ रहे हो, कुछ होया है तो पढ़ रहे हो। तो ऐसा कभी कुछ हुआ है?
1: ऐसा होता है, और ऐसा होना भी चाहिए, और ऐसा होता है। जैसे एक जैसे जिस्म की एक खुराक है, हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, वैसे जो आपका इश्क है, जो आपका आपकी जो रूह है, तो उसकी भी एक गिजा है, तो आप उसे वो बस पूरा करने की कोशिश करते हैं कि मैं किसी तरीके से, जब वो भूख लगती है कि यार आज इश्क बहुत मजा रहा है, तो वो पढ़ लिए, या वो लिख दिए कुछ ऐसा लिख दिए कि पढ़ लिए, तो होता है ऐसा। और वो चीज इतनी प्राइवेट होती है कि कुछ शेयर होते हैं,
0: कुछ शेयर बहुत, हाँ, वो मतलब आप सुना ही नहीं सकते किसी को,
1: तो वो होते हैं, वो फिर उसमें कई बाउंड्रीज भी टूटती हैं, कई चीजें भी टूटती हैं, शायद जो नियम है कानून है वो भी टूटते हैं, तो इसलिए वो जहाँ है वहीं रहे ज्यादा बेहतर।
0: कभी कभी ऐसा कुछ लिखा और बाद में खुद की पीठ थपथपाई जाती है, अरे क्या लिख दिया
1: मैंने, एक शेयर लिखा था और शायद उर्दू में है, लोगों को पता नहीं कैसे लगे, मगर मैं पढ़ दूंगा, आपको मालूम है वो वाला शेर मैंने आपको सुनाया था,
0: इरशाद,
1: कई चराग है रोशन, कई चराग
0: है रोशन,
1: बस उनकी जस्तजू से है इसरार, तेरी ही जात थी अबतर जो दरख्शां,
0: वाह वाह वाह,
1: तेरी ही जात थी अबतर, मैं इसका थोड़ा सा ट्रांसलेशन बता दूं लोगों को, ताकि कई चराग है रोशन तेरी जस्तजू से, मतलब ये है कि उनकी प्रेजेंस से कई लोग मुनव्वर हो गए, कई लोग उनकी प्रेजेंस से एकदम नहा लिए इश्क से, हर चीज से, बहुत खुशी से, हर चीज से, मगर असरार, मेरा पेन नेम है असरार, तेरे में ही वो कमी थी जो तू कुछ नहीं फायदा उठा पाए उनकी उनकी प्रेजेंस से, उनके इश्क से, तो वो उतना लबरेज, उतना मतलब डूब नहीं पाया उस चीज में जितना तुझे डूबना चाहिए था। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि बहुत लोग सिर्फ उनकी परछाई से,
0: हाँ, यही मैं आपकी बातों से ये समझ रहा हूँ कि समझो एक नदी बह रही है, लेकिन सब हाथ धो रहे, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं वो बस ऐसे बैठ के ना नदी को देखते हैं,
1: नदी की धारा देख रहा
0: हूँ, हाँ बस मैं देख रहा हूँ, लेकिन देखते देखते में भी कुछ लोग वो पा लेते हैं जो शायद नदी का पानी पी के ना पाए,
1: बिल्कुल ऑब्जर्वेशन बहुत बड़ी चीज है।
0: हाँ, तो मैं आप जब ये शेयर कह रहे थे और जब आप इसका प्रीफेस बता रहे थे, चीजें बता रहे थे, तो मैंने ये महसूस किया कि अगर मैं यहाँ बैठा हूँ, एक नदी बह रही है और पूरा गांव उमड़ा है उसका पानी पीने के लिए, लेकिन मैं हूँ, मैं बैठा हूँ, मैं देख रहा हूँ,
1: कोई तो है कि नदी सोचती है कि कोई
0: मतलब क्या पानी पानी ऐसा बह रहा है, लोग पानी पी रहे हैं, अगर पीने से इन लोग इतने खुश है, तो मैं इस चीज को देख रहा हूँ, तो मुझे अंदर क्या खुशी महसूस हो रही है।
1: और सबसे बड़ी बात तो ये कि जैसे सब लोग ने समझ लिए, सब लोग ने इश्क बटाया आपके महबूब ने, आपके महबूब ने सबको इश्क बांटा, उसके पास भी इतना इश्क है कि उसने सबको बांटा, फिर भी कम नहीं पड़ा, मगर आप सोचते थे कि मैं जाकर डिस्टर्ब तो नहीं कर
0: रहा,
1: ये एक अलग लेवल की खुशी होती है, कभी कभी गम भी होता है कि नहीं मुझे डिस्टर्ब करना चाहिए, फिर आप सोचते हैं कि नहीं नहीं उस वक्त जो मैं सोच रहा था वो बहुत ही प्योर था, अब शायद थोड़ा मटेरियलिस्टिक बात है नहीं मुझे मुझे बात करनी चाहिए थी, मुझे जाना चाहिए था, मगर आप
0: तो, लेकिन यही तो प्रेम है कि एक एक आशिक जो है, एक आशिक जो परेशान कि यार मैं क्या करूं,
1: आंख से आंख मिल गई उनको,
0: बस बस एक बार वो देख ले उसमें खुश है, बस उसमें खुश है।
1: जैसे मैंने इस पे भी एक शेर लिखा था, निगाह यार का हाल कोई तुझसे पूछे असरार, निगाह यार का हाल कोई तुझसे पूछे असरार, जब से देखी हमने होश में,
0: वाह वाह वाह,
1: जब से देखा हमने होश में आया।
0: मैंने भी एक शेर लिखा था, मैं ऐसा ऐसा बैठा हुआ था तो मुझे मेरे गुरुजी ने देखा, उस टाइम पे देखे और मुस्कुराया, तो मैंने देखा और देख के बोला कि ये तुम्हारा देखना मेरी तरफ, ये तुम्हारा देखना मेरी तरफ है, खुदा का देखना मेरी तरफ। तो बस मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरे गुरुजी मुझे देखने लगे, मुझे ऐसा लगा कि यार मेरा रब मुझे देख रहा है।
1: इश्क तो प्योरेस्ट फॉर्म में,
0: हाँ, तो ऐसे उतर गया मेरे अंदर, मैं बोला हाँ, वो मोमेंट था मेरे लिए कि हाँ क्या क्या हो गया, मतलब इंसान इसी कोशिश में लगा रहता है ना कि एक बार ऊपर वाला देख ले उसे, है ना,
1: बिल्कुल
0: है ना। तो वही, तो आगे बढ़ते हैं, कुछ ऐसी चीजें कि आपने लिखा रात में, उसको बहुत मतलब पढ़ा पढ़ा पढ़ा पढ़ा पढ़ा और सुबह उठ के वो पेज को फाड़ के फेंक दिया,
1: खराब हो
0: गया। तो वो जर्नी जो है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, मतलब रात में बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है, मतलब अरे यार क्या लिख दिया मैं, और मन ही मन सोच रहे कि सुबह इसको सुनाना है लोगों को, और मतलब सिर्फ तारीफें लूटनी है, और सुबह हुई तो वो पन्ने को फाड़ के फेंक दिया।
1: ऐसा होता है जरूर,
0: हाँ,
1: और इसलिए भी होता है क्योंकि मैं मेरे गुरु जी बताया करते थे कि इश्क में इंसान इवॉल्व करता है, पर सेकंड उसकी जो वेवलेंथ है, फ्रीक्वेंसी है, जो उसके जो इमिट हो रही है उसकी बॉडी से, उसके फीलिंग से, उसके इमोशन से, वो चेंज होते हैं। अगर आशिक का मिजाज चेंज ना हो तो वो आशिक नहीं।
0: वाह वाह वाह वाह वाह,
1: क्योंकि इश्क जो है, हमें लगता है कि इश्क कंट्रोल देता है, नहीं, इश्क फ्रीडम देता है। इश्क, अब वो इश्क है ही नहीं जो एक दूसरे को ग्रो ना करवा पाए, वो इश्क नहीं कि जो एक दूसरे को कब्जा रखे, एक दूसरे को टोके, एक दूसरे को ये करे, नहीं, इश्क जिस चीज में आप बेटर हैं आप ग्रो करें, जिस चीज में मैं बेटर हूँ मैं ग्रो करूँ, ये प्रॉपर मेरे हिसाब से इश्क की डेफिनेशन नहीं है। तो हम जो लिखते हैं वो उस स्टेज पे लिखते हैं, रात भर में या दो दिन बाद या तीन दिन बाद हम उस चीज से निकल कर दूसरी स्टेज में दाखिल होते हैं, तो हमें लगता है कि ये पुराना हो गया, नहीं, वो पुराना नहीं, वो किसी बंदे की जो बहुत ही प्यारा है आज भी, जो तुम्हारी स्टेज पे जो तुम कल
0: है ना, करेक्ट करेक्ट,
1: वहाँ पे कोई और इंसान रह के जब वो पढ़ेगा तो उसको बहुत मजा आएगा,
0: हाँ, क्योंकि जिस फेज से तुम गुजरे हो उस फेज पे बाकी के लोगों को आना है।
1: मैंने बोला ना कि रास्ता दरवाजा वही है, इश्क का दरवाजा एक ही, उसको सब वहाँ से सबको गुजरना है। तो जहाँ जैसे आप फलाने पिलर पे थे, आप दो किलोमीटर पहले आपने वो शेयर लिखा निर्वाणा से पहले, फिर एक किलोमीटर बचा वहाँ पे आपने कुछ शेयर लिखा, फिर आपने दरवाजे पे जाकर कुछ शेयर लिखा, तो इसका मतलब ये नहीं कि 5 किलोमीटर जो शेयर आपने लिखा था पहले वो खराब
0: है, नहीं, करेक्ट,
1: वो जो लोग 5 किलोमीटर पहले से जो आ रहे होंगे उनको शेयर पढ़ेंगे तो अच्छा लगेगा। तो सबकी एक रेंज होती है, आप दरवाजे के उस पार जब निकल जाएंगे इश्क के पार, तब आप कुछ लिखेंगे तो और मजा आएगा लोगों को।
0: यही दुनिया को यही तो टटोलना कि दीवार के उस पार क्या है,
1: वो दरवाजे पार हो जाए, इश्क का दरवाजा पार हो जाए।
0: तो यही इश्क और शेरो शायरी और नज्मों से याद आया बुल्ले शाह साहब। बुल्ले शाह साहब का कोई ऐसा किस्सा बताइए जिसमें इश्क की इंतहा पूरी तरीके से मतलब टूट चुकी हो।
1: बुल्ले शाह साहब का मुझे एक किस्सा याद आता है उनका, कि जो उनके गुरु जी थे वो थोड़ी समझ लीजिए कि आज के दौर में अगर जात बिरादरी वाला देखें, जात और बिरादरी वाली, तो उस तरीके से अगर मैं लोगों को मतलब अपने पास पहुंचा पाऊँ तो इस तरीके से कहूंगा कि समझ लीजिए
0: सब्जी बेचने वाले थे, हाँ, मेरे हिसाब से इनायत शाह कादरी साहब,
1: इनायत शाह कादरी साहब उनके जो गुरु जी थे, और भुल्ले शाह जो मुसलमानों में सैयद होती है टॉप मोस्ट कैटेगरी, तो वो थे। तो एक दिन खाना खा रहे तो भुल्ले शाह के घर वालों ने कह दिया कि क्या सब्जी बेचने वाले से कचेला बन गया था, उसके पास क्या रखा है। तो बुल्ले शाह की मतलब जबान से बात निकल गई कि अरे उन्होंने अपने घर से थोड़ी कुछ दिया है, सब अपना ही तो है। तो उनका ये कहना था कि उनकी सारी जो इश्क था, जो उनका सेक्रीफाइस था, जो भी था उनका, जो सरेंडर की जो होने की जो एबिलिटी थी, सब जो उनका रिवॉर्ड था सारा खत्म हो गया। अब वो परेशान हो गए। तो इतना परेशान हो गए कि वो निकलते थे अपने गुरुजी की गलियों से, निकलते थे, सब चीज करते थे। यहाँ तक कि एक कोठा था उस रास्ते में जहाँ से उनके गुरुजी कभी कदार निकलते थे, तो वहां पे कोठे पे चले गए वो। तो वहां पे जो तवायफ थी तो उनसे उन्होंने कहा कि आज मैं नाचूंगा। तो बोले पागल वागल कैसे सब, आप नाचेंगे, आप मतलब इतने बड़े मौलवी, आप आलिम है, मौलाना, आप नाचेंगे? बोले नहीं, आज मेरा महबूब यहाँ से निकलेगा, तो मैं नाचूंगा। पूरा दिन वो नाचे जब तक निकल नहीं गए, और इत्तेफाक से वो निकले भी नहीं। इतना इश्क में वो कि जहाँ पे नहाते थे, जो गुस्ल खाना होता है, जो वॉशरूम होता है आज, आज, आज, जो जहाँ पे आदमी
0: नहाता
1: है, तो जहाँ से पानी पहले इतना सिस्टम नहीं था ना पाइप वाइप का, तो जहाँ पे नहा रहे थे उनके गुरुजी, वो जहाँ वो नहाने का पानी निकल रहा था वहां पे जाके बुल्ले शाह अपना सर लगा दिए, तो पानी वॉशरूम में भरने लगा। तो उनके गुरुजी बांस लिए, बांबू, और बांबू से पाइप को साफ करने लगे, तो इतना सर पे घाव हो गया कि खून आने लगा वापस से, पूरा सब फट गया उनका। जब देखे खून आने लगा तो गुरुजी, और ये इम्तिहान लेने वाला मालिक थे, और तो तब वो गए और दोबारा देखते हैं कि अरे हुल्ला, ये तो तू है। तब उन्होंने उनको गले, ऐसे बहुत सारे वाक्य थे जब उतना वो कुछ वक्फा, कुछ सालों परेशान थे, बहुत ज्यादा परेशान थे मनाने के लिए। मैंने आपको मतलब मुख्तसर दो दो, दो वाक्य।
0: हाँ, वो तो उनकी गुरुजी के चौखट पर सर फोड़ दिए खुद का, क्या क्या नहीं किया।
1: आप सोचिए जब उनके हाथ से ही उनका खून निकला कि हाँ बांबू लेके पूरा फोड़ डाले उनका, तब उन्होंने मतलब एक्सेप्ट किया कि हाँ अब मेरी जो है प्राशिक, अब प्राशिक मेरा पूरा हुआ। वो तो चाहते थे कि मैं, मुझे मर, मैं मतलब किसी बहाने मर जाऊं, बुल्ले शाह चाहते थे मैं किसी बहाने मर जाऊं इसी रास्ते में।
0: क्या इस तरह की क्या समर्पण होगा, मतलब ऐसे ऐसे मतलब शिष्य और गुरु की कहानी जैसे एकलव्य की कहानी है, उनसे बड़ा धनुष अच्छे से कोई चला नहीं सकता था, धनुर्धर कोई नहीं था, लेकिन अपने गुरु के प्यार में अपना दे दिया अंगूठा भाई।
1: आमिर खुसरो निजामुद्दीन की मोहब्बत में,
0: हाँ,
1: राधा कृष्ण, मीरा कृष्ण, सब कितने सारे लोग हैं। लक्ष्मण का राम के प्रति
0: प्रेम, समर्पण था, जो प्रेम था,
1: बहुत सारे ऐसे बहुत सारे बॉन्ड है जिसके बारे में बात कर सकते हैं। कुछ कुछ किस लेवल पे हैं, कुछ किसी लेवल पे हैं, कुछ किसी लेवल पे हैं।
0: हाँ, मतलब चीजें इतनी सारी है, लेकिन मेन मसला, मेन जो मामला जहाँ बिगड़ता है कि आजकल के यूथ को ये चीजें, इन चीजों का अभाव हो गया, ये चीजें मिल नहीं रही है। ये चीजें बहुत इजीली एक्सेसिबल, जिसे आप चले गए, आपने पढ़ लिया, आपको समझ में आ गया, लेकिन आजकल की जो यूथ है वो किसी और चीज से इंस्पायर है, जिन चीजों को शायद वो इंस्पायर होने जाते हैं और गलत रास्ते पे चले जाते। आज भी अगर वो अपने रूट्स को सुने, अपने रूट्स को पढ़े, अपने रूट्स को जाने, तो मुझे यकीन है कि चीजें फिर वो पुरानी युग में ले जाएंगी। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ अब कि जैसे प्यार मोहब्बत की बात हो गई, हमने जाना मीरा का समर्पण, बुल्ले शाह साहब का समर्पण, सबका समर्पण, आपको कभी किसी ने अपने प्रेम का इजहार किया और आपने उसको मना किया, उस वक्त दिल में जो एक टीस पैदा होती है, जैसे हमको पता है कि ये शख्स हमको आके पूछेगा और हम उसको मना करेंगे, लेकिन वो मना करने में भी ऐसा दिल दुखता है, जो जो पीड़ा उठती है दिल के अंदर, जो दर्द उठता है, उस वक्त कुछ कभी लिखा है आपने कि आपने किसी को मना कर दिया? कि मैंने
1: लिखा नहीं, मैंने पैर छुए और ये इतनी बेहतरीन फीलिंग है कि इतने सारे लोग, अप्रोक्सीमेटली 8 बिलियन के अराउंड लोग हैं दुनिया में, और कोई एक इंसान, मर्द हो या औरत हो, कोई भी हो, एक इंसान आपको पसंद करता है दुनिया में, तो कितनी ये सौभाग्य की बात है कि इतना इतना प्रेम वो आपके न्योछावर कर रही है या कर रहा है या कर रहे हैं, जो भी है, ये कितनी बड़ी बात है, ये कितने आप कितने खुशकिस्मत हैं, कितने ही ज्यादा आप, आपका सौभाग्य है कि आपको एक इंसान जिसके पास पूरा ब्रह्मांड चक्कर लगाने के लिए हर चीज उसके पास है, कितना मटेरियलिस्टिक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मगर उसने आपको चुना। तो ये अगर मुझसे कोई पूछे तो ये पैर छूने के काम, कि ऐ इंसान तूने मुझे प्यार किया, तूने मुझे पसंद किया, मगर मैं कहीं और,
0: मतलब
1: अपना, मेरा ध्यान कहीं और, तो ये पैर छूने वाली बात है।

0: मैंने कुछ लिखा नहीं, मैंने जो आपका सवाल था भी आपने कुछ लिखा।
1: अगर आप कुछ गा के इसको बयां कर सके तो कौन सा गाना आप गाएंगे इस चीज को बयां करने?
0: एक गाना समझ में आता है मुझे, वो आपकी नजरों में समझ
1: आता है। तो थोड़ा गा के सुनाइए, क्योंकि मुझे पता है आप अच्छा गाते हो, तो आज आप मौजूद हो तो सब निकाला जाए थोड़ा थोड़ा करके।
0: इसका धुन कैसे गाने का मैं भूल गया।
1: आपकी नजरों ने समझा
0: प्यार के काबिल मुझे, दिल की धड़कन ठहर जा।

0: वाह वाह वाह, क्या बात है क्या बात है। आप एक गाना गुनगुनाया करते थे, मैं अभी वो गाना भूल रहा हूँ, मेरे को याद नहीं आ रहा, लेकिन बहुत अच्छा लगता था वो। लेकिन अभी एक और गाना आप गुनगुनाते हैं, कलंक।
1: हाँ बहुत
0: बहुत ही वो अगर आप सुना दे तो वो गाने की जो कशिश है, मतलब अगर आज के रेट में कोई सॉन्ग अगर कुछ डिफाइन कर सके तो मुझे लगता है इस गाने में जो कुछ लाइनें लिखी है, कुछ पंक्तियां लिखी है, कुछ चीजें लिखी है, अगर उसको इंसान सोच विचार कर तवज्जो दे थोड़ी उन चीजों पे, तो शायद उसके प्रेम को देखने के प्रेम को देखने का नजरिया बदल सकता है। तो अगर आप गुनगुनाएं तो
1: बीच की हैं कुछ लाइनें, जैसे

0: मैं तेरा
1: है।
2: क्या मतलब, देखो ऊपर वाले की महिमा भी देखो, एक आदमी को हाइट दे दी, हाँ एक आदमी को चेहरा दे दिया, पर्सनालिटी दे दी, लिखना दे दिया, गाना दे दिया, और मतलब क्या अलग अलग महिमा है ऊपर वाले की। हाँ काश हमारा गला ऐसा होता, हम गले से ना बिना है। तो आगे बढ़ते हैं कि अब आते हैं मतलब शो के आखिरी पड़ाव पर हम पहुंच चुके हैं, तो कुछ एक दो सवाल और फिर इजाजत आपसे। तो अब ये जानेंगे हम कि बहुत कुछ लिखा, बहुत कुछ मिटाया, बहुत कुछ लिखकर अपने लिए रखा, कुछ शायद किसी को सुनाया, कोई इम्प्रेस भी हुआ होगा, लेकिन कभी एक ऐसा दौर आया जिंदगी में जब सोचा कि अब नहीं लिखना है, अब सब खत्म करना है, ये क्या कुछ नहीं,
1: मतलब ऐसा जो ब्लॉक आता है उसके अलावा की बात ही कर रहा हूँ। मैंने क्लैरिफिकेशन दिया कि ये ब्लॉक की बात नहीं कर रहे शब्बीर भाई कि नहीं नहीं लिखने का मन नहीं करना ये अलग बात है, नहीं लिखूंगा ये अलग बात है, या कुछ नहीं लिखना हो रहा है वो अलग बात है। मतलब कई कई सारी चीजें, नहीं लिखने का मन तभी करता है इंसान, जैसे मैंने बताया कि शिकायतें ज्यादा हो जाती है, महबूब से शिकायतें ज्यादा हो जाती है और कुछ मन नहीं करता कि हटाओ, तो ये ज्यादा दिन नहीं चलता, ये भी ज्यादा दिन नहीं चलता, ये इत्तेफाक ये भी ज्यादा दिन नहीं चलता। ये होता नहीं कि महबूब क्या बुराई नहीं कर सकते, आप या तो इश्क करें या तो फिर बुराई कर लें,
2: दोनों नहीं कर सकते।
1: अरे तो एक जगह पे दो चीज रहेगी तो कॉन्फ्लिक्ट है ना।
2: हाँ, एक मैदान में दो तलवार नहीं हो सकती, सही बात,
1: कॉन्फ्लिक्ट नहीं, इश्क है तो इश्क है, नफरत है तो नफरत है, एक एक दिल में दो चीज कैसे रहेंगे शब्द।
2: नहीं लेकिन एक मोड़ आता है ऐसा कि मतलब जब नफरत है और वो ऑटोमेटिकली टर्न हो जाती है प्यार में,
1: बिल्कुल।
2: तो वो क्या मतलब मामला होता है कि मतलब एक आप चल रहे एक अलग डायमेंशन पे चल रहे हैं, है ना, मतलब नफरत यानी आदमी मरा हुआ पड़ा है,
1: सही।
2: फिर उससे प्यार हो गया यानी वो जिंदा हो गया, मतलब एक मुरझाए हुए फूल को फिर से उसकी खूबसूरती में लाना, तो ये प्रोसेस कैसे होता होगा प्यार में एक शायर के नजरिए से।
1: एक शायर की नजर जैसे, मैंने एक बहुत ही अच्छा शेर तो नहीं है, मुझे उतना नहीं है शेर, मगर मेरे सब बच्चे हैं, मैंने लिखा तेरे दिल की दीवारों का भी भला हो असरार, तेरे दिल की दीवारों
2: का भी भला हो असरार,
1: ये बड़ी बात है जो उनको संभाले रखा है।
2: वाह वाह,
1: कि मैंने इतनी ऊंची ऊंची दीवारें इश्क में खड़ी कर दी कि आप इससे बाहर नहीं निकल सकते इस मिजाज में। बाकी फ्रीडम की बात तो अलग है, मगर ये भी होता है कि भाई कितनी भी नफरत कर ले मगर हम जाके लड़ेंगे उसी दीवार से, इधर उधर वो एक एक एक एक मंजिला घर है इश्क, हमें रहना उसी में,
2: चार दीवारें एक छत है लेकिन उसमें सर इधर जा रहे तो इधर लगेगा, इधर
1: कभी गुस्सा कभी नफरत होगी तो कभी ये होगा, कभी बहुत प्यार आ रहा है
2: तो वही, मतलब चार दीवारें बना रही है, गुस्सा है तो सर फोड़ रहे और प्यार है तो उसको ही चूम रहे,
1: बहुत अच्छी तरीके से।
2: वाह वाह वाह,
1: वही है
2: क्या एक राइटर, मतलब राइटर्स को ऐसे देखा गया अक्सर कि इनकी मोहब्बत अधूरी रह जाती है, जैसे एक शायर थे मजाज साहब की, जब मैंने कहानी सुनी कि बहुत बड़े एक यूनिवर्सिटी है नॉर्थ साइड में, नाम नहीं लूंगा मैं उस यूनिवर्सिटी का, उसमें वो प्रोफेसर थे, बहुत बड़े प्रोफेसर, उर्दू के प्रोफेसर, उनको उसी कॉलेज में किसी प्रोफेसर से प्यार हो गया और अब वो प्रोफेसर माने नहीं, तो मजाज साहब नौकरी छोड़ के शायरी करने लगे, लेकिन कैसी शायरी, ऐसी शायरी नहीं कि चलो जाके मुशायरा पढ़ते लोगों से पैसा, वो इतने टूट गए प्रेम में, इतने पागल हो गए कि बस कोई थोड़ी शराब पिला दे तो उसको पूरी रात बैठ के शायरी सुना, तो उनका हाल ऐसा हो गया कि ऐसा करते रहे मुशायरे गए नहीं, पैसे खत्म हो गए, पैसे ही नहीं, अब कोई आदमी क्या कर रहा है कि चलो लाइफ में एंटरटेनमेंट नहीं है, मजाज मिल गया, मजाज को बुला लिया, बिठा दिया, थोड़ी चाय पिला दी, चलो सुनाओ, अब उनको एक एक दो घंटा सुना रहे। एक दिन ऐसा आया कि लोगों ने पकड़ा उनको दिल्ली में, एकदम कड़ाके की सर्दी, एकदम खतरनाक ठंड, जहां पे मतलब बिना शॉल विल के आप निकलो तो कप कपा जाओ, एकदम ऐसे कड़क हो जाओ, पूरी रात लोगों ने उनको शराब पिलाई, शायरी सुनी और रात के लगभग 2-2.5 बजे उनको छोड़ के रस्ते पे चले गए। वो शराब के नशे में इतने धुत हो गए कि सुबह पता चला कि मजाज नहीं रहे दुनिया में, ऐसा वक्त आया। तो क्या शायर किसी से प्यार करते करते मर जाता है. हाँ, ये शायद हमारे मतलब आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ क्या मरने के बाद भी शायद उसी शख्स को दूसरी दुनिया से भी चाहता होगा.
1: जो मतलब जो इस दुनिया में किसी को नहीं पा सकता वो वहां पर नहीं पा सकता. और पाने की जो बात है ये बहुत ही, मैंने आपको बताया ना कि यूनियन यही होना है इस, हमें मतलब अगर ये जरूरी ना होता, ये फेज जरूरी ना होता तो हमें पैदा नहीं किया जाता.
2: ओके,
1: वही हमको मिला दिया था ना जब वहां पे दो आत्माएं थी, वही मिलने पे क्या दिक्कत थी. मगर यहाँ यहाँ करके मिलने में और यहाँ मेहनत करके मिलने में और वहाँ मिलने में फर्क है. तो इश्क पहली बात तो अधूरा नहीं है, अगर आप इश्क कह देते हैं तो वो अधूरा बचा ही. मैं एक तरफा इश्क को अधूरा नहीं मानता, ये तो आदमी पूरा टूट गया, बर्बाद हो गया हमारे. तो इश्क वो ऊपर वाला उनको नवाज देता है, यहीं पे वो इतना देर दे देता है. इश्क जैसे इश्क भी कई कैटेगरीज है. जैसे आदमी करते करते करते करते करते करते फिर इंसान को, मैंने बोला ना इंसान को इंसान की जरूरत रही नहीं जाती. मीरा को कृष्ण के बिना जिस्म से मोहब्बत इसीलिए हो पाई क्योंकि उनको इश्क के माने बहुत कायदे से पता थे कि मुझे जिस्म नहीं चाहिए. तो इसमें मतलब जिस्म की जरूरत नहीं है. और इसी दुनिया में आदमी पा लिए, मीरा ने इस दुनिया में कृष्ण को पाया और इस तरह से पाया कि वो मतलब ईश्वर के रूप में उनको मिले. ऐसा नहीं मिला कि कोई उनको कोई बॉयफ्रेंड है कैसे कहे.
2: हाँ, उनका मतलब प्रेम के प्रति निराकार वाली भावना थी, कोई आकार में नहीं.
1: अल्टीमेट गोल जो है वो मैं मतलब एट द एंड ऑफ द टाइम यही है कि भाई आपको सुकून कहाँ मिलता है. सबसे ज्यादा सुकून ईश्वर की बाहों में, मतलब हमारे मालिक की बाहों में. अगर मैं मतलब एकदम एंड रिजल्ट बता दूं इश्क का, अगर मेरे से कोई पूछे कि इश्क का एंड रिजल्ट क्या है, तो मैं ये बोलूंगा कि भाई दुनिया बनी है शब्बीर भाई मोहब्बत से. दुनिया बनी ही मोहब्बत के लिए है, मोहब्बत करने के लिए बनी है. जितना हो सके लोगों से मैं कहता हूँ प्यार करिए, आप लोगों से अपने पेड़ पौधों को प्यार करिए, अपने छत को प्यार करिए, अपने एसी को प्यार करिए, अपने बॉस को प्यार कीजिए, सबको प्यार करें. इस इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होता है भाई, तब एटम बना है. इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन सब अट्रैक्ट हुए आके, सब अलग अलग. जब दुनिया बनी, बिग बैंग हुआ तो सारी चीजें अलग थी, सब इधर उधर घूम रहे थे. फिर इन लोगों ने सोचा कि अट्रैक्ट होते हैं, अट्रैक्ट हुए तो एटम बने. फिर कई सारे एटम मिले तो मॉलिक्यूल बना, कुछ मॉलिक्यूल मिले तो कंपाउंड बना, बनते बनते हम बन गए.
2: हम बन गए, करेक्ट करेक्ट करेक्ट करेक्ट.
1: तो ये यूनियन का ही जो दुनिया है वो यूनियन का ही एक समझिए स्वरूप है. अगर हम आज दो मैग्नेट रखते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि दो मैग्नेट, पूरी दुनिया ही ऐसे काम करती है. हमें मिलना ही है, हमें यूनियन ही है. तो जो मरने के बाद जो अपनी करेगी वो यही मिल जाते हैं, चाहे आखिरी सांस में मिला है मालिक. मगर आदमी जिससे बहुत ज्यादा प्यार करता है, मेरा ऐसा मानना है कि जिससे बहुत ज्यादा प्यार करता है उससे एक ना एक बार चाहे आखिरी सांस में मिले, मिलता ही जरूर. वो मालिक बहुत ही बहुत रहम वाला है. वो तुम जिससे मोहब्बत करोगे, तुम एक अगर मुझे लगता है एक लाइट से अगर तुम उस लेवल की मोहब्बत कर दोगे तो जब तुम्हारी आखिरी सांस होगी तो लाइट तुम्हारे सामने खड़ी होगी.
2: हाँ, वो तो सही बात है, वो तो सही बात
1: है. तो यही जवाब है मेरा. और
2: वही मुझे भी यही लगता है कि प्रेम का कोई आकार नहीं होता, वो निराकार होता है. उसको किसी भी फॉर्म, आप प्रेम को किसी भी फॉर्म में पा सकते हैं. एक इंसान अपने पेट से प्यार कर सकता है, कोई अपने घर से बहुत ज्यादा प्यार करता है तो वो उसको इतना क्लीन रखेगा घर को कि यार इतना भी कचरा नहीं दिखना चाहिए, है ना. तो ये उसका प्यार ही तो है उसके घर के प्रति. तो अभी जाते जाते एक आखिरी सवाल, अगर जिंदगी में आप राइटर नहीं बनते, कुछ लिखते नहीं, तो क्या करते
1: यार? लिखते नहीं तो मतलब बहुत कुछ कर सकते थे, कहीं कहीं मजदूरी कर लेते. मगर ये कुछ चीजें, जैसे मैं गाता भी अच्छा हूँ, मतलब ऑनेस्टी अगर दिखाऊं मैं इस जवाब को देने के प्रति, तो मैं बहुत कुछ कर सकता था. मगर नहीं, मैं खुश हूँ कि मैं लिखता हूँ. मैं बहुत खुश हूँ कि मैं गा लेता हूँ. तो मेरे सारे काम मेरे इश्क से ही रिलेटेड है. मैं कुछ ना करता तो इश्क, वो एक
2: कुछ नहीं करता तो इश्क करता है ना.
1: करता तो कुछ नहीं करता तो शायद फिर इश्क करता, और कुछ नहीं करता. मुझे इश्क ही सूट करता है, मैं वही करता हूँ, मैं उसमें ज्यादा माहिर हूँ.
2: अच्छा,
1: और सबको मतलब सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी इश्क करें, लोगों से मोहब्बत करें, अपने चारों तरफ अपने सराउंडिंग से मोहब्बत करें, अपने इन्वायरमेंट से मोहब्बत करें, अपने इकोसिस्टम से मोहब्बत करें, अपने बिल्डिंग वाले से मोहब्बत करें, अपने वॉचमैन से मोहब्बत करें, अपने गार्ड से मोहब्बत करें, सबसे मोहब्बत करें. प्यार बांटो यार,
2: इश्क करें, प्यार करें. इसका मतलब यह नहीं जाके जस्ट दैट यू नीड टू बी मोर ह्यूमन more gets bent towards the humanity
1: than anything
2: gets bent towards humanity, just get closer to just be the pure soul who can help, be kind, be positive. आपका पॉजिटिव होना भी शायद किसी को एक ऐसे नेगेटिव जोन से बाहर निकाले जिससे वो सालों से जूझ रहा हो, मतलब बहुत ज्यादा नेगेटिव।
1: मैं ये बताता हूँ कि जब जो हम जो वी हैव बीन क्रिएटेड फॉर लव, हमें मतलब ये बनाया ही इसीलिए गया कि आप प्यार करें, हमें प्यार से बनाया गया शब्बीर भाई। आप एक जब एक बच्चा माँ के पेट में रहता है आप उसको देखिए प्लासेंटा से क्या क्या आता है, कितना न्यूट्रिशन आता है, प्यार नहीं तो क्या है। मैं तो हर चीज को इश्क से देखता हूँ यार, इश्क ही मेरा चश्मा है, मैंने बताया पहले आपको, मैं उसी नजर से देखता हूँ चीजों को, तो मुझे बड़ी खूबसूरत लगती है। मुझे अंधा आदमी भी खूबसूरत लगता है, मुझे किसी के हाथ पैर ना हो फिर भी खूबसूरत लगता है, मुझे बहुत खूबसूरती है इस दुनिया में, ये दुनिया में खूबसूरती के अलावा कुछ है ही नहीं।
2: वाह,
1: बहुत खूबसूरत।
2: इससे अच्छी क्या ही एंड हो सकता था हमारे पॉडकास्ट का कि हम आए इश्क पे, हमने दुनिया को खूबसूरत कहा और न जाने कितने अलग अलग इश्क के पहलू बताए, कितने अलग अलग उसके स्टेजेस बताए, उसकी कैटेगरीज बताई, कैसे हमने अलग अलग एग्जांपल बताए कि किस तरीके से मीरा का डिवोशन, बुल्ले शाह साहब का डिवोशन और अलग अलग डिवोशन, इन सारे डिवोशंस ने मिलकर एक ही सीख दी है लोगों को कि यू शुड बी वेरी काइंडफुल एंड वेरी मच लवेबल, दैट योर लव शुड गेट स्प्रेड इन एंटायर वर्ल्ड, इट शुड नॉट गेट बाउंडेड, ये बाउंड नहीं रहना चाहिए या आप इसको क्लोज फॉर्म में ना रखें। इफ यू हैव समथिंग टू गिव प्लीज गिव इट बैक, आप दो, क्योंकि आपने थोड़ा दिया तो वो बहुत ज्यादा फॉर्म में बन के आपके पास ही लौटेगा। लेकिन जब आप एक इंसान तभी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ता है जब वो अपने अंदर की चीजों को खाली करता है, जब तक आप अपने आप को खाली नहीं करोगे तब तक आपके अंदर फिर से आप कुछ भर नहीं सकते।
1: बर्तन उतना ही बड़ा है, उसको खाली करते रहिए, नई चीजें एब्जॉर्ब करिए, नई चीजें, प्यार ऐसी चीज है कि आपको नए नए एक्सपीरियंस होते रहेंगे। ठहरा हुआ पानी सड़ जाता है
2: ठहरे हुए पानी में, कीड़े मकोड़े सब आने लगते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, कल या फिर या परसों या जब कभी समय मिले हम फिर आएंगे एक नए कवि को लेकर, एक नई प्रतिभा को लेकर, एक नए कॉन्फिडेंस को लेकर आपके समक्ष। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं, मैं आपका होस्ट एंड दोस्त आरजे एंड करता हूँ इस शो को। मुझे उम्मीद है कि आपको ये शो पसंद आया होगा। टाटा बाय बाय,
1: थैंक यू।

आचार्य 90 FM की ऑडियंस को मेरा प्यार भरा नमस्कार और जय हिंद। स्वाद का जायका इस शो पर मैं आरजे भारतीय सीमा आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? ऑल गुड ना भाई? दोस्तों का हालचाल पूछना मींस अपनापन जताना होता है, और अपनापन जताना मतलब स्वाद का जायका निभाने वाली बात है, है कि नहीं? तो चलिए, अपनापन जताने के लिए हमें एक बहाना मिल गया।

है। गणेश चतुर्थी के अगले दिन हम सेलिब्रेट करते हैं ऋषि पंचमी, और इस ऋषि पंचमी के दिन हमारे महाराष्ट्र में बनती है एक पौष्टिक भाजी। इसमें सीजनल वेजिटेबल्स और कंदमूलों का उपयोग किया जाता है, और खास बात ये है कि इसमें सिर्फ वही सब्जियों का इस्तेमाल होता है जिन्हें उगाने में बैल या किसी जानवर की मेहनत का प्रयोग नहीं हुआ है। ये पूरी तरह से सात्विक, स्वास्थ्यवर्धक और बिना कांदा लहसुन वाली एक ट्रेडिशनल महाराष्ट्रियन रेसिपी है। कद्दू मींस लाल भोपला, तुरई मींस दोड़का, खीरा, भिंडी, ताजा मक्का मींस भुट्टा और मूंगफली, ऐसी चीजों को बिना कांदा लहसुन का तड़का लगाकर इस ऋषि भाजी को बनाया जाता है। चलिए अब हम ऋषि भाजी की रेसिपी को सुनते हैं। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए इंग्रेडिएंट्स: कसा हुआ नारियल पाव कटोरी, हरी मिर्च दो, आलू मींस अरबी के पत्ते बारीक काटकर आधा कटोरी, मटर के दाने आधा कटोरी, कटी हुई वाल पापड़ी आधा कटोरी, कद्दू मींस लाल भोपड़ा आधा कटोरी, बॉइल्ड मकई के दाने आधा कटोरी, तोरई मींस दोड़का आधा कटोरी, खीरा मींस ककड़ी के टुकड़े पाव कटोरी, देसी घी एक बड़ा चम्मच, जीरा आधा चम्मच, इमली का पल्प दो बड़े चम्मच, नमक स्वाद के अनुसार, यहाँ पर मैं लगभग एक चम्मच नमक ले रही हूँ, पानी आवश्यकता के अनुसार, और हमें चाहिए ढेर सारा प्यार, क्योंकि आपके मन की भावनाएं इस रेसिपी में उतरने वाली हैं। सबसे पहले हम इस ऋषि जी भाजी का मसाला बना लेते हैं। इसके लिए हम मिक्सर के जार में ताजा नारियल और हरी मिर्ची को डालकर पीस लेंगे। इसे अच्छे से ब्लेंड करके हम भाजी के लिए मसाला बना लेंगे। फिर हम लेंगे मोटे बेस वाली एक कढ़ाई, उसमें हम गरम करेंगे देसी घी। घी गरम होने के बाद हम उसमें तड़का लगाएंगे। इसके लिए हम यूज कर रहे हैं जीरा। जीरा को चटकने दीजिए। फिर हम उसमें डालेंगे आलूची पाने। इसे लगभग एक मिनट तक भून लेना है। उसके बाद हम डालेंगे वाल पापड़ी। इसे भी अच्छे से मिक्स कीजिए। फिर हम उसमें ऐड करेंगे कद्दू, तोरी, मकई के दाने, खीरा और हरी मटर के दाने। इन्हें अच्छे से भूनकर लगभग दो मिनट तक चलाना है। अब हम इसमें ऐड करेंगे हरी मिर्च और नारियल वाला मसाला, उसके साथ नमक और इमली का पल्प। इसे भी अच्छे से मिक्स करना है। आप चाहे तो इसे बनाते समय प्रेशर कुकर का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर थोड़ा सा पानी मींस लगभग आधा ग्लास पानी डालकर हमें इसे पका लेना है। यहाँ पर मैं आपको एक टिप देना चाहती हूँ। इस रेसिपी में इस्तेमाल की गई सब्जियाँ मॉइस्चर वाली हैं, इसलिए इसे पकाते समय ज्यादा पानी मत डालिए, और इमली का पल्प यूज करने से आलूची पाने मींस अरबी के पत्ते आपके गले को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। इसे प्रेशर कुकर में सिर्फ एक सीटी आने तक पका लेना है। इतना सारा काम करके मैं तो थक गई भाई साहब। आई नीड अ ब्रेक।

आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। ब्रेक पर जाने से पहले रुशीची भाजी को हमने पूरी तरह से पका लिया था। यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, स्वीट कॉर्न के दाने की बजाय आप साबुत स्वीट कॉर्न को उबालकर 2-3 टुकड़ों में काटकर इस रुशी की भाजी में डाल सकते हैं। अब हम इसे सर्व करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए एक सुंदर सी कटोरी। उस कटोरी में हम डालेंगे तैयार रुशीची भाजी। उसके ऊपर हम थोड़ा सा ताजा नारियल कद्दूकस करके डाल लेंगे। भाई वाह, ये तो एकदम टेम्पटिंग दिख रहा है। फिर उसके साथ हम परोसेंगे गर्मा गर्म रोटी या फूली हुई गर्मा गर्म रोटी। उसके बाद हम भगवान को इसका भोग लगाएंगे। इस रुशीची भाजी की सात्विकता को बढ़ाने के लिए हम इस पर तुलसी पत्र रख देंगे। ऐसा करने से भोग लगाने की मेथड बिल्कुल सही होगी। भगवान को भोग लगाने के बाद हम अपनों के साथ मिल बांट कर इस रुशीची भाजी का लुफ्त एकदम सात्विकता से उठाएंगे। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ, इसे खाकर आपको हमारी भारतीय संस्कृति पर गर्व महसूस होगा। इसलिए इस रुशीची भाजी को आप जरूर बनाइए। अपनी संस्कृति और परंपरा से जुड़े रहने का ये तरीका आप अपना ही लीजिए और अपनों के साथ मिल बांटकर अपनी खुशी को दोगुना कीजिए। इस रुशीची भाजी के लिए पेश है एक कविता। कविता का नाम है सात्विक भाजी। आरती के समय हो गए धार्मिक, रुशीची भाजी एकदम सात्विक। कद्दू मटर और भिंडी संग आ गई मकई, इसमें कांदा लहसुन नहीं है कतई। अरबी के साथ डाली थोड़ी सी इमली, रुक गई बारिश और आ गई तितली। मिर्ची के साथ डाला नारियल सफेद, अपनापन जताने से दूर होंगे मतभेद। गणेश चतुर्थी के बाद सेलिब्रेट होगी ऋषि पंचमी, ऋषि भाजी का टेस्ट एकदम मखमली। यूं ही देते रहिए अपनों का साथ आचार्य 90 FM पर अपनेपन की बात। भाई त्योहार का मतलब होता है खुशियां, और आस पड़ोस में खुशियां बांटने का ये मौका आचार्य 90 FM के हमारे प्यारे ऑडियंस के साथ हमने सेलिब्रेट किया। ऑडियंस जी, किया के नहीं जी, बिल्कुल किया। इस बात पर हम ले रहे हैं एक क्विक ब्रेक। ब्रेक के उस पार आपसे और बातें होंगी। स्टे ट्यून्ड।

वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं आचार्य नेडी एफएम और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। भाई ऋषि पंचमी स्पेशल ऋषि जी भाजी तो हमने बना ली, अब हम बढ़ते हैं अगली रेसिपी की ओर। श्री गणेश जी के आगमन के साथ महालक्ष्मी मींस गौरी जी का भी आगमन होता है। गणेश चतुर्थी के तीसरे या चौथे दिन गौरी जी आ जाती है। 3 दिनों तक महालक्ष्मी मींस गौरी पूजन बड़ी धूमधाम से सेलिब्रेट होता है। इस समय घर की बेटियों को बड़े प्यार से भोजन कराने की प्रथा है। पहले दिन गौरी आवाहन होता है, तब महाराष्ट्रियन लोग भाजी भाकरी मींस रोटी और सब्जी का भोग लगाते हैं। दूसरे दिन मुख्य पूजा होती है, तब महाराष्ट्रियन किचन में तरह तरह के पकवान बनने लगते हैं, जैसे कि पूरणपोड़ी, खीर, पंचामृत, 5 प्रकार की सब्जियां, कचुम्बर के प्रकार, दाल चावल और दिवाली पर बनने वाली मिठाइयां वगैरह वगैरह। इस दिन का सेलिब्रेशन एकदम खास होता है, क्योंकि गौरी भोजन का शुभ अवसर इसी दिन होता है। फिर तीसरे दिन आरती करके गौरी विसर्जन किया जाता है, तब दही भात का भोग लगाया जाता है। आचार्य 90 एफएम के हमारे प्यारे ऑडियंस के लिए हम बनाने जा रहे हैं सबकी फेवरेट पूरण पोड़ी। 11वीं शताब्दी के महाराष्ट्रीयन ग्रंथ चक्रदत्त में दाल और गुड़ के मीठे मिश्रण पूरण पाक का जिक्र किया है। पूरण मींस मीठी दाल और पोली मींस रोटी। मीठी दाल वाली रोटी इज इक्वल टू पूरण पोली। इसे गौरी पूजन, होली और गुड़ी पाड़वा जैसे शुभ अवसरों पर विशेष भोग के रूप में बनाया जाता है। वैसे हमारे गुजरात और दक्षिण भारत में भी पूरण पोली बनती है। चलिए अब हम पूरण पोली की रेसिपी को सुनते हैं। पूरण पोली बनाने के लिए हमें चाहिए इंग्रेडिएंट्स। पूरण के लिए मींस स्टफिंग के लिए चना दाल 1 बड़ी कटोरी, हल्दी पाउडर 1/2 चम्मच, नमक 1/2 चम्मच, पानी 3 कटोरी, तेल 1 चम्मच, ब्राउन गुड़ 1 कटोरी। ब्राउन गुड़ येलो के हिसाब से ज्यादा हेल्दी है। जायफल पाउडर 1/2 चम्मच, इलायची पाउडर 1/2 चम्मच, बादाम का पाउडर 2 चम्मच। अब आटा गूंथने के लिए हमें चाहिए गेहूं का आटा 2 कटोरी, मैदा 4 चम्मच अप्रोक्सीमेटली, हल्दी पाउडर 1/2 चम्मच, नमक स्वाद के अनुसार। यहाँ पर मैं लगभग 1/2 चम्मच भर के नमक ले रही हूँ। फिर हमें चाहिए पानी आटा गूंथने के लिए, देसी घी जरूरत के मुताबिक। चलिए अब हम थोड़ी तैयारी कर लेते हैं। पूरण मींस स्टफिंग बनाने के लिए हम एक बड़ी कटोरी में चना दाल को पानी डालकर भिगोकर रखेंगे। इसे लगभग 2-3 घंटे तक भिगोकर साइड में रखना है। 2-3 घंटे के बाद उसमें थोड़ा पानी, हल्दी, नमक और थोड़ा सा तेल डालकर प्रेशर कुकर में पकाना है। लगभग 5 सीटी होने तक हमें इसे पका लेना है। फिर हम गैस को बंद कर देंगे। अप्रोक्सीमेटली 1/2 घंटे के बाद हम दाल को बाहर निकालेंगे। उस पकी हुई चना दाल से हम सारा पानी हटा देंगे। इस हटाए हुए पानी को आप चाहे तो कटाची आमटी इस रेसिपी में यूज कर सकते हैं। फिर हम उस पकी हुई दाल में थोड़ा सा गुड़ मिलाएंगे। इस मिश्रण को मोटे बेस वाली एक कढ़ाई में डालकर उसे धीमी आंच पर पका लेना है। थोड़ी देर में मींस लगभग 15 मिनट के बाद ये मिश्रण गाढ़ा हो जाएगा। इस दौरान आप इसे चलाते रहिए, फिर ये कढ़ाई को छोड़ने लगेगा। जब ये मिश्रण गोला टाइप बने तब हम गैस को बंद कर देंगे। हमें इसे ठंडा कर लेना है। तब तक हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।
आप कहीं भी मत जाइए, मैं यूं गई और यूं आई।

वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। अब इस स्टफिंग को हम एक प्लेट में निकालेंगे, फिर हम इसमें ऐड करेंगे जायफल पाउडर, इलायची पाउडर और थोड़ी सी बादाम की पाउडर। यहाँ पर मैं आपको एक टिप देना चाहती हूँ, साबुत इलायची को 2-4 चम्मच शक्कर के साथ मिक्सर में डालिए। ऐसा करने से इलायची पाउडर एकदम आसानी से बनती है। जायफल का पाउडर यूज करने के बदले हम कद्दूकस किया हुआ जायफल इस्तेमाल कर सकते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बादाम का पाउडर ऐड करने से पूरन पोली का स्वाद और ज्यादा निखर जाता है ना इंटरेस्टिंग जानकारी। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूँ आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। अब इस स्टफिंग वाले मिश्रण को हम पूरन यंत्र में डालकर इसको स्मूथ बनाएंगे। आप चाहे तो इसे मिक्सर में भी पीस सकते हैं। इस दौरान हम पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे। यहाँ पर आप छलनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा करने से उस स्टफिंग वाले मिश्रण से चना दाल का दाना निकल जाएगा। इस तरह से हमारा पूरन मींस स्टफिंग अब हो गया है तैयार। अब इस पूरन के हम नींबू के साइज के गोले बना देंगे। उसके बाद पूरन पोली का बाहरी हिस्सा मींस कोटिंग को बनाते हैं। एक मिक्सिंग बोल में हम डालेंगे गेहूं का आटा और मैदा, फिर उसमें हम ऐड करेंगे हल्दी और नमक, फिर आवश्यकता के अनुसार थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हमें इसे गूथना है, मींस रेगुलर वाली रोटी जैसा आटा बनाना है। इसमें थोड़ा तेल मिलाकर हम फिर से गूथेंगे। उसके बाद लगभग आधे घंटे तक इसे ढककर रखना है। ऐसा करने से रोटी का टेक्सचर अच्छा बन जाता है। उसके बाद सेम आलू पराठा की मेथड से हम पूरन पोली को बनाएंगे, मतलब थोड़ा सा गूथा हुआ आटा लीजिए, उसे कटोरी का आकार दीजिए, उसके अंदर चना दाल वाली स्टफिंग को भर दीजिए, फिर उसे बड़ी सावधानी से हम बंद करेंगे, फिर चकला और बेलन